0: मेहमान का मुझ पे एहसान क्या, लाखों ही जुल्फों वाले आते हैं घेरा डाले, मेरी क्या बात है।
1: RM2 Radio Musti, feel the musti.

बादलों के बार तो हम बाद में जाएंगे, लेकिन आपके साथ आपके और करीब आ चुके हैं। बस सुबह के 5 बज चुके हैं यहाँ पर, मंडे मॉर्निंग 15th ऑफ जून। नीतू का प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें।

0: बस इस सुबह ये मॉर्निंग आप सबके लिए एकदम शुभ एकदम माने कि खुशगवार हो यही कामना करते हैं। 5:02 वंस अगेन आप सबका प्यार भरा नमस्कार, विशिंग यू ऑल अ लवली मंडे मॉर्निंग। बस ये दिन आपके लिए एकदम खुशगवार हो जाए, जो बीत गया सो बीत गया, अब नया पन्ना खुल चुका है, इसमें कुछ नया लिखने का वक्त आ गया है। वैसे आपके मैसेजेस ऑन 5499-1294 पर सुबह के 7 तक। इट्स योर
1: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
2: Radio

0: shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: गाना तो है मौसम है आशिकाना, लेकिन आपादू फैमिली कह रहे हैं कि गोशनुआ में इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है, सो प्लीज बी वेरी केयरफुल, कहीं पर मौसम सुहाना, कहीं पर तेज हवाएं, बारिश भी हो रही है, सो अपना ख्याल रखिएगा। कैसी है ज्योति? शातु बिनागत से अगला गाना पूरे माधव परिवार के नाम, खास आशनी रेखा और सुरेखा के लिए। अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको सर्वेश ऊंचा माँ, हैप्पी बर्थडे टू यू फ्रॉम माँ सारिका, पापा विश्वामित, दानिश, जानी, पूनम, रिवा और सब परिवार की तरफ से आपको ढेर सारा प्यार। अ वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार आपको रेडियो मस्ती टीम एंड फैमिली, थैंक यू। आपको छाया सुकोई फ्रॉम पेलग्रेन सेबास्टोपोल एंड बस सपति सुबिराज के नाम, बेटा है श्रेयस, बेटी शेवी, सभी सुकोई परिवार, ओसो गुजार टू नीस मीनू, दामाद रूबीन एंड ऑन हिज वे टू वर्क, सो बॉन कुराज। हर हर महादेव आपको, शीला जी फ्रॉम लेस्पेरांस ट्रिब्यूशे और सभी लिसनर्स।

के नाम। नमस्कार जी, अगला गाना गुजार टू मी सरोजनी, साथ में नएगी ओजुल नाइदू आपादू फैमिली एंड आपके लिए खास तौर से एनी एंड हैव अ नाइस वीकेंड। आहेड वीकेंड तो नहीं लेकिन वीक डेज तो है, मंडे टू फ्राइडे। एंड धीरज आयुष विदिशा, साथ में अश्विन ज्योति हरक परिवार मौदालबिया से गुड मॉर्निंग आपको जी, प्रणाम। आप है भाई सूरज सजादा एंड आपके पूरे परिवार त्रियोली से। एंड बस प्रेमिला भूला, साथ देने के लिए थैंक यू सो मच। सो कीप ऑन सेंडिंग मी योर मैसेजेस, आपके नाम अपनों के नाम पैगाम ऑन 9599294।

वैसे ही हम भी आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे. थैंक यू सो मच. एंड अगला गाना आपके नाम है जानवी साथ मिश्रिया प्रवेश और विपिन गंगाराम नायको प्रयाग सभी परिवार के नाम खास आपके लिए कमलदीप. चलिए मुकेश वाला गाना आप सुनना चाहते हैं माला आत्मानंद सोदे परिवार काहोलिन से. एंड यही अगला गाना आपके नाम सुंदरम अंजलि उदयम जयो मुटुसामी मोतालोंग से पूरे परिवार के लिए. अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको. आप है कौन यहाँ पर? नमस्कार जी. त्वाला हिदा हिबा रोज ननलोल फैमिली और आपो फ्रॉम क्यूपीप हर हर महादेव आपको अ वेरी गुड मॉर्निंग. भाई संजीव उनकी प्यारी सी दो बेटियां हैं किटी एंड किमी. और बस आपके लिए भी सुया बिहारी कंगुमा से आपके पूरे परिवार.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: बस आप ही अपने सपनों का महल बनाते चलिए और उनको आप साकार करते रहे। 5:30 बोकोहाज टोल्ड अस गोइंग टू वर्क। थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे आपका हॉरोस्कोप एंड प्रेमिला जी है प्रेंदी पापा से सभी परिवार के लिए खास पति रंजीत एंड आपके सभी डियर वंस। गुड मॉर्निंग आपको मुकेश साधना लालमाची से है, साथ ही साथ इंदिरा रेशमा विमल अंजू कृषा मोताई ब्लॉश से आपके पूरे परिवार के नाम।

0: Avec MBC Play, tout ban 104 matchs Coupe du Monde FIFA 2026, avec ou pas tout. Et oui, l'intégralité compétition là pour en direct l'Oban Sen Premium New World TV qui peut disponible au MBC Play à partir des 16 hein, pour 10 300 roupies et coupé pour sa package là 6 cents c'est le fort. Ou pour capable suivre tout ban match directement l'eau mobile, tablette, ordinateur ou soit télévision. Download MBC Play, l'eau App Store, Google Play, Huawei App Gallery et Android TV. MBC Play avec ou partout.
1: आइए जानते हैं MBC Play पर New World Sports Pack में सब्सक्राइब करने का तरीका। स्टेप वन, सब्सक्राइबर को पहले MBC Play ऐप खोलना होगा और जाना होगा टीवी सेक्शन में। अब जब किसी भी न्यू वर्ल्ड चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टू अ सिक्योर MIPS पेमेंट पोर्टल। स्टेप टू, अब आपके सामने होंगी दो पेमेंट ऑप्शंस। एक तरीका मोबाइल बैंकिंग एप्स के जरिए पेमेंट करने का, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। सो आपको सिलेक्ट करना होगा अपना प्रेफर्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। अब इन पेमेंट एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर आपको एंटर करना होगा। ऐसा करने के बाद उस बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा एक सिक्योर पुश नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर दिखेगी। यूजर को उस नोटिफिकेशन को खोलना है, ट्रांजैक्शन और उसकी डिटेल्स को रिव्यू करना है और सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट एंड पे। और वहीं पर अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुनते हैं तो पहले मांगी हुई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपको भरनी होंगी और उसके बाद आपके बैंक के द्वारा आपको मिलेगा एक सिक्योर्ड वन टाइम पासवर्ड, यानी कि OTP SMS या ईमेल द्वारा। ये OTP आपको अपने स्क्रीन पर एंटर करना होगा टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शन। तीसरा और अंतिम स्टेप, एक बार यूजर ने पेमेंट को ऑथराइज कर दिया अपने बैंकिंग ऐप या OTP के द्वारा, तो उनको अपना स्क्रीन नहीं बंद करना बल्कि इंतजार करना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए ऑन द MBC Play एप्लीकेशन। अब बस सक्सेसफुल पेमेंट कंफर्मेशन होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर देगा MBC Play होम पेज पर और अनलॉक कर देगा इमीडिएट एक्सेस टू द प्रीमियम स्पोर्ट्स स्ट्रीम्स। ज्यादा जानकारी या मदद के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच में फोन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन सपोर्ट को 433-3135 या 433-2871 या 433-3145 या 433-2905 या 5251-6363 या फिर ऑन 5944-6800।
2: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2
3: Radio.

नमस्कार, आपको मिला राम जी कल मोता ब्लॉन्स से पूरे परिवार के नाम गुड मॉर्निंग नीलम बोनावाली। आपको फ्रॉम मेलरोस पति है मनोज, साथ में आपके पूरे परिवार, खास आपके बेटे यशील एंड यादेश।

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: आप ही ऐसे ही मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें और आपका दिन कैसा रहेगा?
2: एरीज मेष राशि,
1: आज हर कदम सोच समझ कर बढ़ाने की जरूरत है, खासकर कारोबार और पैसों से जुड़े मामलों में। जल्दबाजी में लिया गया फैसला बाद में पछतावा दे सकता है। जीवन साथी की भावनाओं को समझना और उनकी सेहत का ध्यान रखना रिश्तों में और मिठास खोलेगा।
2: टॉरस वृषभ राशि,
1: आज मेहनत का फल आपको मिलने से मन संतुष्ट रहेगा, साथ ही साथ आर्थिक स्थिति भी मजबूत महसूस होगी। घर में पूजा पाठ या धार्मिक माहौल बनाने का मन हो सकता है। बच्चों की संगति पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि छोटी लापरवाही आगे परेशानी बन सकती है। बस बेवजह की बहस से दूरी बनाए रखें, वरना मानसिक तनाव बढ़ सकता है।
2: जेमिनी मिथुन राशि,
1: मन थोड़ा सा उलझा हुआ रह सकता है और किसी पुरानी कानूनी या जरूरी मामले को लेकर चिंता भी बनी रह सकती है। अच्छी बात ये है कि अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, उनके काम की तारीफ आपके काम की तारीफ होगी। कोशिश करें कि अपने महत्वपूर्ण काम खुद संभालें, क्योंकि दूसरों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा नुकसान दे सकता है।
2: कैंसर कर्क राशि,
1: आज दूसरों की मदद और अच्छे व्यवहार से समाज में आपकी पहचान मजबूत होगी। लंबे समय से रुकी हुई चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ती नजर आएंगी। नौकरी और कार्यक्षेत्र में बोलचाल पर संयम रखना इज वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपके शब्द ही रिश्तों को बना या बिगाड़ सकते हैं।
2: लियो सिंह राशि,
1: आज का दिन ऊर्जा और उत्साह से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में कुछ नया करने का विचार मन में आएगा और यही बदलाव आगे सफलता का कारण भी बन सकता है। स्टूडेंट्स पढ़ाई और प्रतियोगिता में पूरी मेहनत से जुटे रहेंगे। वैसे मौसम का असर सेहत पर पड़ सकता है, दैट्स व्हाई लापरवाही बिल्कुल ना करें।
2: वर्गो कन्या राशि,
1: आज मेहनत और लगन आपका सबसे बड़ा सहारा बनेंगी और अच्छे परिणाम भी दिलाएंगी। जरूरतों और आराम की चीजों पर खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन इससे मन को संतोष मिलेगा। लव रिलेशनशिप्स में मिठास बनी रहेगी, साथ ही साथ अच्छे समय बिताने का मौका मिलेगा।
2: लिब्रा तुला राशि,
1: आज प्रगति और समृद्धि के अच्छे संकेत मिल रहे हैं। धन और सुविधाओं में बढ़ोतरी से मन खुश रहेगा। प्रभावशाली लोगों से मुलाकात भविष्य के लिए नए रास्ते खोल सकती है। आपकी सकारात्मक सोच आपको हर परिस्थिति में आगे बढ़ाएंगी। प्रॉपर्टी खरीदने या निवेश भी योजना भी आप बना सकती हैं, और परिवार से किया गया कोई वादा निभाना बहुत ही जरूरी होगा।
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
1: आज धैर्य और समझदारी से काम लेना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि जल्दबाजी नुकसान करा सकती है। आपका आत्मविश्वास और प्रभाव दोनों बढ़ेंगे। संतान के प्रति आपका सहयोग सहारा जाएगा। जीवन साथी के साथ समय बिताने या फिर छोटी सी यात्रा का मौका आपको मिल सकता है, जिससे रिश्तों में ताजगी आएगी।
2: सजिटेरियस धनुराशि,
1: आज समझदारी और संतुलन के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। व्यापार में फंसा हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है, जिससे राहत महसूस होगी। संतान के करियर को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है, लेकिन सही सलाह से रास्ता निकल आएगा और परिवार के बड़े सदस्य से कोई शुभ समाचार या उपहार भी मिल सकता है।
2: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
1: धैर्य और शांति बनाए रखना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी रहेगा। आज जीवन साथी का सहयोग भावनात्मक मजबूती देगा। वाहन चलाते समय प्लीज विशेष सावधानी रखें, कुछ अचानक खर्च सामने आ सकते हैं, इसलिए बजट संभाल कर चलना बेहतर रहेगा।
2: एक्वेरियस कुंभ राशि,
1: आज लाभ के कई अवसर सामने आ सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी से बचना जरूरी होगा। नौकरी या रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। योजनाबद्ध तरीके से किया गया काम सफलता दिलाएगा और किसी नए काम की शुरुआत का विचार मजबूत होगा, लेकिन निवेश सोच समझ कर ही करें।
2: पाइसेस मीन राशि,
1: आज कुछ चुनौतियां सामने आ सकती है, लेकिन आपकी आस्था और पॉजिटिव सोच आपको संभालेंगी। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में मन लगेगा, जिससे मानसिक शांति मिलेगी। सेहत को नजरअंदाज करना परेशानी बढ़ा सकती है। यदि कर्ज लेने की योजना बना

0: रहे थे तो परिस्थितियां आपके पक्ष में बन सकती है और किसी भी काम में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें क्योंकि धैर्य से ही किया गया प्रयास आपको सफलता देंगे। तो आप मेहनत करते रहें और मेहनत का फल डेफिनेटली आपको मिलेगा। विश यू गुड लक एंड हैव अ नाइस डे अहेड।
1: योर डेली हॉरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती।

कुछ मैसेजेस आपके नाम। गुड मॉर्निंग प्रेमा पुद्रुदो से, कैसे हैं? ठीक ठाक। नमस्कार जी, अगला गाना आपके लिए। वैसे आप हैं कौन यहाँ पर? ओके, जगमनी जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग। सुप्रभात संगीता, पूरे परिवार मोता ब्लॉश से। एंड यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत सारे प्यारे प्यारे दोस्त। दूतिका एंड रघुजाना परिवार, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू माय डियर। अब्दुल सारा बानू, कैसे हैं? ठीक ठाक। एंड नेक्स्ट गाना आपके लिए है कविता जी।

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 5:56 अच्छी बजे आप सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार. वेरी गुड मॉर्निंग, प्यार भरा नमस्कार आपको भाई माहेंद, आपके पूरे परिवार कैथोबोन से बस ऐसे ही प्यार से साथ निभाते चलिएगा. सुनीता जी फ्रॉम शुमेगोनी एंड बस जितने भी लोग हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं लाइक हेमलता भजन फ्रॉम पोएतुपीमा, नमस्कार आपको भाई विक्रम के लिए और पूरे परिवार के नाम.

0: RM2 Radio Masti.
1: The time is brought to you by McDonald's.
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
0: Radio Masti.
3: North. South.
0: 103.5.
3: East. West.
0: 96.4.
3: Center.
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Shivaji hai. सुनते हैं देश विदेश की खबरें आपसे आदिति नमस्कार आपको
6: नमस्कार नीतुषा श्रोताओं को भी नमस्कार सोशल इंटीग्रेशन मंत्रालय ने बजट 2026-2027 के लिए केयरर्स अलाउंस में वृद्धि घरों और रेजिडेंशियल केयर होम्स की केयरर्स की पेशेवर प्रशिक्षण के लिए एक प्रारंभिक फंड की स्थापना और 85 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए घर पर चिकित्सा सेवाओं के विस्तार जैसे प्रस्ताव दिए हैं ये घोषणा आज 15 जून को बुजुर्गों पर दुर्व्यवहार के खिलाफ जागरूकता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के संदर्भ में सोशल इंटीग्रेशन मंत्री अशोक सुभो ने अपने संदेश में की उन्होंने बुजुर्गों की बेहतर सुरक्षा के लिए बदलते सामाजिक परिप्रेक्ष्य में मौजूदा सहायता मेकानिजम्स पर फिर से गौर करने और नए कानूनी ढांचे स्थापित करने की बात कही उन्होंने मॉरिशन समाज के विकास में बुजुर्गों के महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनका आभार प्रकट किया कल 14 जून को मनाए गए विश्व रक्तदान दिवस के संदर्भ में ब्लड डोनर्स एसोसिएशन ने आज दिन की 11 बजे से क्यूबिक नगर पालिका में रक्तदान का आयोजन किया है इससे पूर्व एक पदयात्रा भी निकाली जाएगी इस आयोजन के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रालयों का सहयोग प्राप्त हो रहा है ब्लड डोनर्स एसोसिएशन युवाओं से कम उम्र से ही रक्तदान करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है जो न सिर्फ अन्यों की जान बचाने में मदद दे सकता है बल्कि खुद के स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है अंतर्राष्ट्रीय खबरों में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि लेबनान सहित पूरे मध्य पूर्व में सभी सैन्य कार्रवाइयां समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच एक शांति समझौता कायम हुआ है जानकारियों के अनुसार इस शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में इस संधि पर हस्ताक्षर होंगे इस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि जल्द ही तेल सप्लाई सामान्य पर लौटेगा उनके इस बयान के तुरंत बाद वैश्विक मंडी में तेल के दाम में

0: भारी गिरावट दर्ज की गई। आखिर में स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत, दक्षिण पूर्व से आ रहे बादलों का असर रह रहकर हमारे इलाके पर पड़ेगा। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान। आज सुबह आमतौर पर मौसम सुहाना रहेगा। दोपहर बाद दक्षिण पूर्व और ऊंचाइयों पर बादल घिरा सकते हैं और रह रहकर बारिश होगी। रात के दौरान भी पूर्व, दक्षिण और सेंट्रल प्लेटू वाले इलाकों पर बादल घिरे रहेंगे। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। प्रवाल रेखा के परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण पश्चिमी समंदर में 2.50 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी, इसलिए आज रात से दूर समंदर में न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम 18 से 20, अधिकतम 24 से 26 डिग्री सेल्सियस। साहली इलाकों पर न्यूनतम 22 से 24, अधिकतम 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 6:43 पर सूर्योदय, शाम को 5:37 पर सूर्यास्त होगा। तो ये थी अब तक की खबरें। हम आपसे मुलाकात करेंगे 6:30 के मुख्य समाचार बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
2: RM2
1: Radio Musty.

0: जब तक आप सपने देखेंगे नहीं तब तक उनको आप सच कैसे कर पाएंगे। 6:10 वेलकम बैक, ए वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन, प्यार भरा नमस्कार प्रणाम। इट्स योर राइज एंड शाइन ऑन रेडियो मस्ती एंड व्हाटएवर यू माइट बी, थैंक यू सो मच। हां जी, आपको ले चले हैं बैक टू द 90s एंड बंसक फैमिली, खास आपको आकाश जो 90s के गाने जो है बहुत ही पसंद करती है, पारुषि, परिधि, प्रीतमि, प्रिया, सबको वेरी गुड मॉर्निंग।
1: रेडियो मस्ती।
2: Allez!
3: Coach, trop beaucoup pression.
2: Pression, c'est quand on fight ou dans l'équipe qualifiée. Des man mané, c'est mieux ça là.
4: The pressure can wait. Watch all 104 games live on Supersport FIFA World Cup Central and FIFA World Cup Extra in the DStv English Plus add-on with Canal Plus. Until the 21st of June, subscribe to Canal Plus Sport Pack and DStv English Plus add-on at only 500 rupees per month for 6 months, then 900 rupees per month. Contractual period for 24 months plus current month. Offer subject to conditions, valid in Mauritius, VAT included. More info on Canal Plus stores and till shops and canalplus.com.
1: RM2
5: Radio Musti.

बस इस मोहब्बत को कभी कम होने मत दीजिएगा. वाट्स सोनम बोला, रेडी टू वर्क. सो बोकुराज टू यू, हैप्पी 15th बर्थडे टू प्रिंसेस लक्षिता रामाव अगालिगा. देव, आशा, रविश, प्रीशा, लवशा, डियर वंस की तरफ से ढेर सारा प्यार आपको. मिस्टर सिद्धोहल, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप? एंड गुड मॉर्निंग जी, आई विश माई

बाबू हैप्पी बर्थडे और साथ में ओके भाई बाबू एंड भाभी पल्लवी हैप्पी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी. तो चलिए मिनिमो इयर्स ऑफ टुगेदरनेस आप दोनों को ढेर सारा प्यार ब्लेसिंग्स एंड बेस्ट विशेस. रीना आरव दिस इज आवर फैमिली बेलेरिविया सेश से.

0: Votre salon avec Mighty. Abonnez-vous au DSTV Stream ou New World Spot selon votre préférence et profitez d'un mois gratuit et recevez un cadeau Panini. Appelez le 8902. Termes et conditions applicables.
1: Mighty? Mighty, c'est ça!
2: RM2
3: Radio Musty.
4: साढ़े छह बजे आप सुन पाएंगे पूरा समाचार बुलेटिन, उसके बाद वेदिता के साथ मॉर्निंग बीट। इधर लेट मी विश अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको लीना फ्रॉम प्लान दे रोश, आपके लिटिल प्रिंसेस जिया एंड पति राजीव परिवार के नाम। हेलो जी नमस्कार, बॉम्बू से धनेश्वर जी, सुनीता आपकी पत्नी, रेखा, संजीव, निशा, मीना, ऋषि, तहान, हंस, विदा, विदु, सनसनीचर परिवार के लिए बस सबको बों को आज विश कर रही है एंड इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू साधना एंड आपके डियर वंस।

0: नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत। शुरुआत आज की सुर्खियों के साथ। सोशल इंटीग्रेशन मंत्रालय ने बजट 2026-2027 के लिए केयरर्स अलाउंस में वृद्धि, केयरर्स के पेशेवर प्रशिक्षण जैसे कई प्रस्ताव दिए हैं। ये घोषणा आज 15 जून को बुजुर्गों पर दुर्व्यवहार के खिलाफ जागरूकता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के संदर्भ में मंत्री अशोक सुबो ने की। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अफसर आज फिर से लातूकुनी का दौरा करेंगे। पिछले 4 दिनों से वे इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इलाके में गंदे पानी की पंपिंग जारी रहे और GECC लिमिटेड प्रभावित क्षेत्र से मृत मछलियां हटाए। नेशनल यूथ पार्लियामेंट के 5वें संस्करण के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चलाई जा रही है। 14 से 23 साल की उम्र के नौजवानों को आवेदन भेजने के लिए अगले 22 जून तक का समय। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि लेबनान सहित पूरे मध्य पूर्व में सैन्य कार्रवाइयां समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच एक शांति समझौता कायम हुआ। नमस्कार, इस बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत। सोशल इंटीग्रेशन मंत्रालय ने बजट 2026-2027 के लिए केयरर्स अलाउंस में वृद्धि, घरों और रेजिडेंशियल केयर होम्स के केयरर्स के पेशेवर प्रशिक्षण के लिए एक प्रारंभिक फंड की स्थापना और 85 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए घर पर चिकित्सा सेवाओं के विस्तार जैसे प्रस्ताव दिए हैं। ये घोषणा आज 15 जून को बुजुर्गों पर दुर्व्यवहार के खिलाफ जागरूकता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के संदर्भ में सोशल इंटीग्रेशन मंत्री अशोक सुबो ने अपने संदेश में की। उन्होंने बुजुर्गों की बेहतर सुरक्षा के लिए बदलते सामाजिक परिप्रेक्ष्य में मौजूदा सहायता मैकेनिज्म्स पर फिर से गौर करने और नए कानूनी ढांचे स्थापित करने की बात कही। उन्होंने मॉरिशन समाज के विकास में बुजुर्गों के महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनका आभार प्रकट किया। उनको सुनते हैं, उनसे बात की राजमिला सीतामणि ने।
1: Ne prévoit pas aussi un changement fondamental lui-même à la loi Protection of Elderly Persons Act. C'est quelque chose d'important. Elle pourrait définir toute la notion de maltraitance lui-même.
0: ये बात मंत्री अशोक सुबो ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित और वृद्ध जनों के शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और वित्तीय शोषण तथा उपेक्षा से लड़ने के लिए समर्पित इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर प्रसारित एक संदेश में कही। इस दिन का उद्देश्य मॉरिशस और विश्व भर में वृद्धजनों के अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना भी है। मंत्री अशोक सुबो के अनुसार देश को चल रहे सामाजिक

0: परिवर्तनों का सामना करने के लिए गहन संस्थागत सुधार करने होंगे, साथ ही राष्ट्रीय वित्तीय संसाधनों का बेहतर पुनर्वितरण भी करना होगा। उन्होंने प्रोटेक्शन ऑफ एल्डरली पर्सन्स एक्ट 2005 के तहत संशोधित किए जाने वाले नियमों को अंतिम रूप देने की भी घोषणा की, ताकि बुजुर्गों को सभी प्रकार के दुर्व्यवहार से मजबूती से बचाया जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कानून की धारा 9 को पिछली सरकारों द्वारा कभी लागू नहीं किया गया था जो ऐसे विशिष्ट नियमों को अपनाने की अनुमति देती है। अब से देश के सभी बुजुर्ग प्रोटेक्शन ऑर्डर्स से लाभ उठा सकेंगे, चाहे वे घर पर रहते हों या किसी रेजिडेंशियल केयर होम में। प्रस्तावित संशोधनों में दुर्व्यवहार की एक नई परिभाषा शामिल है, जिसमें शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और वित्तीय शोषण, दुर्व्यवहार, परित्याग और उपेक्षा शामिल हैं। मंत्रालय दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने को एक नागरिक कर्तव्य बनाने की भी योजना बना रहा है। इसके अलावा वृद्धजनों के लिए ओम्बुड्समैन फॉर द एल्डरली बिल नामक एक नया कानून तैयार किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य बुजुर्गों की सुरक्षा को और मजबूत करना है। आखिर में दुर्व्यवहार के कई मामलों की रिपोर्ट के बाद रेजिडेंस के नियंत्रण, उनकी निगरानी और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए रेजिडेंशियल केयर होम्स रेगुलेशंस 2005 में संशोधन किया जा रहा है। इस तत्काल उपाय के बाद मॉरिशस में वृद्धजनों के लिए सुविधाओं से संबंधित कानूनी ढांचे और सार्वजनिक नीतियों में व्यापक सुधार किया जाएगा।
1: Une plus supervision et protection d'un résident dans un residential care home.
0: कल 14 जून को मनाए गए विश्व रक्तदान दिवस के संदर्भ में ब्लड डोनर्स एसोसिएशन ने आज दिन के 11 बजे से क्यूपिप नगर पालिका में रक्तदान का आयोजन किया है। इससे पूर्व एक पदयात्रा भी निकाली जाएगी। इस आयोजन के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रालयों का सहयोग प्राप्त हो रहा है। ब्लड डोनर्स एसोसिएशन युवाओं को कम उम्र से ही रक्तदान करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, जो न सिर्फ अन्यों की जान बचाने में मदद दे सकता है बल्कि खुद के स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है। ज्यादा जानकारियां ब्लड डोनर्स एसोसिएशन से शोभानंद सिंह गुलाम जी के साथ।
2: दुनिया भर में वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनावल जला 14 जून को। जैसे कि जाने लजा 2004 से ब्लड डोनर्स एसोसिएशन ई वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनावत हुआ जा, और हाई बरिस हमनी के वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ब्लड डोनर्स एसोसिएशन इन कोलाबोरेशन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के मिलजुल के और म्यूनिसपालिटी ऑफ क्यूपिप के साथ मनावब जा हमनी टाउन हॉल क्यूपिप में मंडे 15 जून को 11 बजे। तो एकर से आगे हमनी एगो मार्च करत है जा, एगो सेंसिटाइजेशन मार्च शुरू होई फॉरेस्टसाइड विनर्स से, वो 10 बजे शुरू होई। हमनी के साथ पुलिस बैंड रही, प्रिजन बैंड रही और माजोरेट लोग भी रही, और कितने कॉलेज के चीजा लोग बात जो कैपिप के रेजों में हवन जा, वो लोग सब मिलजुल के हमनी के एगो मार्च करब जा, 10 बजे शुरू करब जा विनर्स फॉरेस्टसाइड से और समाप्त हो टाउन हॉल कैपिप लगे।
0: राष्ट्रीय बजट प्रस्तुति के लिए और कुछ ही दिन रह गए हैं। शुक्रवार 19 जून को वित्त मंत्री बजट 2026-2027 प्रस्तुत करेंगे। इस बीच देश के कई आर्थिक ऑपरेटर अपने प्रस्ताव और सुझाव सामने रख रहे हैं। इनमें डेलॉइट मॉरिशस भी शामिल हैं। कंपनी ने वित्तीय क्षेत्र, छोटे एवं मध्यम उद्योगों, डिजिटाइजेशन, व्यापारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण और ऊर्जा परिवर्तन से संबंधित कई सिफारिशें तैयार की हैं। हमारे सहयोगी शैली नियबन ने डेलॉइट मॉरिशस की कानूनी और नियामक मामलों की निदेशिका स्मिता सिबरन के साथ बात की। विस्तार भी उड़ोई।
3: डेलॉइट के लिए प्राथमिकता स्पष्ट है, विकास को नई गति देना, प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करना और एक अधिक लचीली अर्थव्यवस्था का निर्माण करना। कंपनी का मानना है कि वित्तीय क्षेत्र को ऐसे उपायों के माध्यम से एक केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए जो मॉरिशस में अधिक निवेश को आकर्षित करने में सक्षम हो।
4: Il est impératif pour offrir des incitations attractives aux investisseurs.
3: जितना हो सके निवेश की संभावनाओं को बढ़ाना बहुत जरूरी है। इससे

0: उद्योगों के लिए रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। एक और प्रमुख क्षेत्र डिजिटलाइजेशन है। डिलॉइट एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय रणनीति का समर्थन करता है जिसे लक्षित निवेश यानी कि टारगेटेड इन्वेस्टमेंट्स का बल मिले। इसके साथ ही कार्यक्षमता से जुड़े कौशलों का विकास और प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग को भी पहचान की गई प्राथमिकताओं में शामिल किया गया है।
1: La digitalisation de notre économie doit être soutenue avec des investissements ciblés et une stratégie nationale claire.
0: हमारी अर्थव्यवस्था का डिजिटलाइजेशन लक्षित निवेशों के समर्थन पर संभव होगा, इसीलिए राष्ट्रीय रणनीति अपनानी होगी, जैसे कि ट्रेनिंग, व्यावसायिकता पर ज्यादा बल तथा मानवीय संसाधन हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। कंपनी ने छोटे एवं मध्यम उद्योगों को भी अधिक सहायता देने की मांग की, जिन्हें रोजगार सृजन और विकास का एक आवश्यक माध्यम माना जाता है।
1: Nous plaidons pour des mesures de soutien aux petites et moyennes entreprises afin de renforcer.
0: देश के आर्थिक क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में SMEs की मदद चाहिए। निर्यात के प्रति हमारी निर्भरता को कम करनी चाहिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर हो सकें। स्मिता सिबरन ने इस बात पर ज्यादा जोर दिया कि अधिक टिकाऊ ऊर्जा की ओर ट्रांजिशन अब एक व्यापक विषय बन चुका है जो पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है।
2: वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अफसर आज फिर से लातूकोनी का दौरा करेंगे। पिछले चार दिनों से वे इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इलाके से गंदे पानी की पंपिंग जारी रहे और GECC लिमिटेड प्रभावित क्षेत्र से मृत मछलियां हटाए। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जनरल मैनेजर नवीन जवाहिर के अनुसार 6000 लीटर की क्षमता वाले 3 सैनिटेशन ट्रकों ने 50 से ज़्यादा चक्कर लगाए हैं और इसके अतिरिक्त GECC लिमिटेड की लोरियों के भी 106 चक्कर हुए हैं। असल में एक सोलर फार्म परियोजना के सिलसिले में पिछले 11 जून को GECC लिमिटेड द्वारा चलाए जा रहे खुदाई कार्यों के दौरान वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी की एक पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हुई। इस पाइपलाइन के जरिए मुख्य रूप से इंडस्ट्रियल जोन से गंदा पानी निकलता है। पाइपलाइन की मरम्मत गुरुवार शाम तक ही कर दी गई थी। GECC लिमिटेड को इस क्षेत्र में काम करने के लिए अपने सभी परमिट सब प्रस्तुत करने होंगे। नवीन जवाहिर के अनुसार वहां के वेस्ट वाटर को मोतांजरा को ट्रीटमेंट केंद्र पहुंचाया जाता है जहां एनवायरनमेंट एक्ट के मानकों के अनुसार उसका ट्रीटमेंट होता है। जलवायु परिवर्तन का असर स्थानीय कृषि उत्पादन पर लगातार पड़ रहा है। सूखा, भारी बारिश और मौसम की अनिश्चितताएं पैदावार के लिए चुनौतियां खड़ी कर रही हैं। विशेषज्ञों के अनुसार टिकाऊ कृषि पद्धतियां अपनाना और किसानों को सहायता प्रदान करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। इन उपायों से स्थानीय उत्पादन की रक्षा करने के साथ साथ देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी। लगभग एक महीने में एल नीनो वैश्विक जलवायु को प्रभावित करना शुरू कर देगा जो 8 महीने तक चल सकता है और इसका असर मॉरिशस पर भी पड़ेगा। समुद्री वैज्ञानिकों और पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार इस अवधि के दौरान स्थानीय मौसम अप्रत्याशित हो सकता है जिसमें लंबे समय तक सूखा, अत्यधिक भारी बारिश और कृषि, समुद्री व खाद्य सुरक्षा पर इसके गंभीर प्रभाव शामिल हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस घटना का सामना करने के लिए संसाधनों को तैयार करना महत्वपूर्ण है क्योंकि भले ही ये दूर की घटना लगे लेकिन ये हमारे दैनिक जीवन को अस्त व्यस्त कर सकती है। माधवी जागवनाथ, यशना मिश्रा।
3: प्रशांत महासागर में होने वाले उतार चढ़ाव का मॉरिशस की जलवायु पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में हमारा द्वीप एलनीनो घटना से प्रभावित हो सकता है। समुद्र वैज्ञानिक वासेन कुपायमुटु के अनुसार प्रशांत महासागर के जल के असामान्य रूप से गर्म होने की इस घटना का प्रभाव जुलाई से शुरू होकर लगभग 8 महीनों तक बना रह सकता है। तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हो चुकी है। जुलाई अगस्त तक इसका प्रभाव हिंद महासागर पर पड़ेगा। संभव है कि गर्मी के पूरे सीजन में बारिश ही न हो। मॉरिशस में इस जलवायु परिवर्तन के दौर का पर्यावरण, कृषि और

0: समग्र अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।
1: Avec cette masse de chaud qui arrive,
0: गर्मी के कारण कोरल्स प्रभावित होंगे, तापमान ज्यादा होगा, सूखा होगा, जिससे खाद्य सुरक्षा प्रभावित हो सकता है।
1: Et la sécheresse importante qui va être là va créer beaucoup d'impact sur notre sécurité alimentaire.
0: समुद्र वैज्ञानिक का कहना है कि इसका असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। गर्मी और नमी एक साथ होगी तो हमारा देश इससे बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है।
1: 45-50 degrés, donc l'effet ce qu'on appelle wet bulb. Donc notre pays sera grandement affecté.
0: वसंत कोपाईमुतु के अनुसार एल नीनो कोई असाधारण या नई घटना नहीं है, लेकिन इसकी गंभीरता और तीव्रता में लगातार वृद्धि होती दिखाई दे रही है। यही कारण है कि इस पर पहले से कहीं अधिक सतर्कता और निगरानी की आवश्यकता है।
1: Tous les services météorologiques internationaux sont en train de mettre en garde.
0: अंतर्राष्ट्रीय मौसम विभाग द्वारा हर जगह इसकी चेतावनी दी जा चुकी है। इस बार एल नीनो के कारण एक ही समय पर कई प्राकृतिक प्रकोप एक साथ होंगे, व्यवस्था करनी चाहिए। एल नीनो हमें याद दिलाता है कि हमारा छोटा टापू देश भी वैश्विक जलवायु परिवर्तनों के बड़े प्रभावों से अछूता नहीं। इसकी अवधि लगभग 8 महीने तक रह सकती है, इसलिए इसके संभावित प्रभावों का समय रहते आकलन करने और उससे निपटने के लिए निरंतर निगरानी बेहद आवश्यक है।
2: नेशनल यूथ पार्लियामेंट के 5वें संस्करण के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चलाई जा रही है। राष्ट्रीय सभा द्वारा आयोजित इस पहल के तहत 14 से 23 साल की उम्र के नौजवानों को संसदीय कार्य प्रणाली समझने, समसामयिक मुद्दों पर बहस करने तथा लीडरशिप और कम्युनिकेशन क्षेत्रों में अपनी क्षमताएं विकसित करने का मौका मिलेगा। आवेदन भेजने के लिए अगले 22 जून तक का समय है। राजमीला सीतामणि, अभ्युदय।
3: नेशनल यूथ पार्लियामेंट यानी राष्ट्रीय युवा संसद का 5वां संस्करण आगामी 13 और 14 अगस्त को पोटली स्थित राष्ट्रीय सभा में आयोजित किया जाएगा। 8 जून से उन युवाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है जो संसद की कार्य प्रणाली को समझना चाहते हैं और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। इस पहल का उद्देश्य लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति युवाओं की रुचि विकसित करना और साथ ही उनके संचार यानी कि कम्युनिकेशन, नेतृत्व तथा निर्णय लेने के कौशलों को मजबूत करना है। भाग लेने के लिए आवेदकों का मॉरिशस का नागरिक होना अनिवार्य है। 22 जून 2026 तक उनकी आयु 14 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उन्हें फ्रेंच तथा अंग्रेजी जैसी भाषाओं का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। जो लोग पहले के किसी संस्करण में भाग ले चुके हैं वे इसके पात्र नहीं हो पाएंगे। पंजीकरण केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है और इसके साथ जन्म पत्र की एक प्रति संलग्न करना आवश्यक है। चयनित प्रतिभागियों को 3 दिवसीय अनिवार्य ट्रेनिंग में भी भाग लेना होगा। आवेदन भेजने की अंतिम तारीख सोमवार 22 जून को शाम के 4 बजे तक निर्धारित की गई है। सभी तरह के संचार केवल ईमेल के माध्यम से किए जाएंगे। इच्छुक युवा अधिक जानकारी के लिए नेशनल असेंबली की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।
2: रुख करते अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है कि लेबनान सहित पूरे मध्य पूर्व में सभी सैन्य कार्रवाइयां समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच एक शांति समझौता कायम हुआ है। जानकारियों के अनुसार इस शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में इस संधि पर हस्ताक्षर होंगे। इस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि जल्द ही तेल सप्लाई सामान्य पर लौटेगा। उनके इस बयान के तुरंत बाद वैश्विक मंडी में तेल के दाम में भारी गिरावट दर्ज की गई। आज से जिनेवा में शुरू हो रहे G7 शिखर सम्मेलन के विरोध में कल वहां वृहद प्रदर्शन हुए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच मुठभेड़ हुई, दुकानों के शीशे तोड़े गए और एक गाड़ी में आग लगाई गई। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सुरक्षा बलों को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। लोगों का कहना है कि ये बड़े देश पैसे और ताकत के बल पर छोटे देशों और उनकी जनता पर दबाव डालते हैं।

जानते हैं मौसम का हाल। आम हालत दक्षिण पूर्व से आ रहे बादलों का असर रह रहकर हमारे इलाके पर पड़ेगा अगले 24 घंटों के लिए। अनुमान आज सुबह आमतौर पर मौसम सुहाना रहेगा। दोपहर बाद दक्षिण पूर्व और ऊंचाइयों पर बारिश की संभावनाएं हैं। रात के दौरान भी पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लेटो वाले इलाकों पर बादल घिरे रह सकते हैं। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। प्रवाह रेखा के परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण पश्चिमी समंदर में 2.50 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी, इसलिए आज रात से दूर समंदर में न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम 18 से 20, अधिकतम 24 से 26 डिग्री सेल्सियस, साहिली इलाकों पर न्यूनतम 22 से 24, अधिकतम 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 6:43 पर सूर्योदय हुआ, शाम को 5:37 पर सूर्यास्त होगा।

समाचारों के आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सोशल इंटीग्रेशन मंत्रालय ने बजट 2026-2027 के लिए केयरर्स अलाउंस में वृद्धि, केयरर्स की पेशेवर प्रशिक्षण जैसे प्रस्ताव दिए हैं। ये घोषणा आज बुजुर्गों पर दुर्व्यवहार के खिलाफ जागरूकता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के संदर्भ में मंत्री अशोक सुभोन ने की। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अफसर आज फिर से लातूरकोनी का दौरा करेंगे। पिछले चार दिनों से वे इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि इलाके से गंदे पानी की पंपिंग जारी रहे। नेशनल यूथ पार्लियामेंट के पांचवें संस्करण के लिए रजिस्ट्रेशन चलाई जा रही है। 14 से 23 साल की उम्र के नौजवानों को आवेदन भेजने के लिए अगले 22 जून तक की मोहलत। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि पूरे मध्य पूर्व में सैन्य कार्रवाइयां समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच एक शांति समझौता कायम हुआ। देश विदेश की नई खबरों के साथ ये मुख्य समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। इसको आप तक पहुंचाने में फैजान हमारे साथ रहे। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। रॉबर्ट केनेडी स्ट्रीट रेयूनियन मोरेल पेटी राफ्रेमे। रॉबर्ट केनेडी स्ट्रीट रेयूनियन मोरेल पेटी राफ्रेमे 81 साल के 81 years old श्री भारद्वाज सुकन। श्री भारद्वाज सुकन जो लाल सुकन नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे इनकी पत्नी श्रीमती निशी सुकन के मकान रॉबर्ट केनेडी स्ट्रीट रेयूनियन मोरेल पेटी राफ्रेमे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दाहोची की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। पांचू स्ट्रीट स्टैनली रोजिल में सिक्सटी वन ईयर्स ओल्ड श्रीमती देविका माइपत पैदाशी नाम विदेशी जो राधा शौतर्स नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई हैं। इनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे इनके मकान पांचू स्ट्रीट स्टैनली रोजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्वामा महल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। अविनी श्रीनिवासन पालमा काथोबोन में गहार दया के बगल में 78 साल के 78 years old श्री नरेंद्र दत्त जानकी प्रसाद जो आनंद नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और पहले NTC के पूर्व ट्रैफिक सुपरवाइजर थे, इनकी मृत्यु हो गई हैं। इनकी अर्थी आज दिन के 3 बजे इनके मकान अविनी श्रीनिवासन पालमा काथोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टू डिया 3 PM। पीरो लेन कौन दे मास में 45 साल के 45 years old श्री विशाल उस्मान जो दादू पैंत नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई हैं। इनकी अर्थी

0: दिन की 11:30 बजे इनकी अर्थ आज दिन की 11:30 बजे इनकी माशमदी सावित्री उस्मान के मकान पियोलिन कौंदमा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं किशमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11:30 AM। लापोत प्रोविडेंस पोस्ट दे फ्लाक में, लापोत प्रोविडेंस पोस्ट दे फ्लाक में 89 साल के 89 ईयर्स ओल्ड श्री हरी सुकन इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे इनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे इनके बेटे श्री गुंतु सुकन के मकान लापोत प्रोविडेंस पोस्ट दे फ्लाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमा किशमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टू दिया 2 PM। गुदा लेन मेबर्ग में, गुदा लेन मेबर्ग में 83 साल की 83 ईयर्स ओल्ड श्रीमती खुमती टिप्सु पिताजी नाम बालचंद इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 10:30 बजे इनकी अर्थी आज दिन के 10:30 बजे इनके मकान गुदा लेन मेबर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोंबो मेबर्ग की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टू डिया 10:30 AM। प्रिंस ऑफ वेल्स सिनेमा का से थ्रियोले में, सिनेमा का से थ्रियोले में 65 साल की 65 ईयर्स ओल्ड श्रीमती जानेगी मुतु पैदाशी नाम पुम्बिया जो रागिनी नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इनकी मृत्यु हो गई हैं। की अर्थी आज दिन की 10 बजे इनकी अर्थी आज दिन की 10 बजे इनके पति श्री रामास्वामी मुतु के मकान प्रिंस ऑफ वेल्स सिनेमा का से थ्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दाहोची की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 10 AM। कौबानान गांव बामी 46 साल के 46 ईयर्स ओल्ड श्री महेश्वर नाथ सिंह सुंदर जो सचिन नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इनकी मृत्यु हो गई हैं। की अर्थी आज सुबह 10 बजे इनकी अर्थी आज सुबह 10 बजे इनकी माँ श्रीमती लीलावती सुंदर के मकान कौबानान गांव वासी उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्रेमानियों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 10 AM। आस्टोरिया रोड गुडलैंड्स में 49 साल के 49 ईयर्स ओल्ड श्री विनय रघुबर जो विकास नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इनकी मृत्यु हो गई हैं। की अर्थी आज दिन के 11 बजे की अर्थी आज दिन के 11 बजे के मकान आस्टोरिया रोड गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बाहोश गुडलैंड्स की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 11 AM। रॉयल रोड रोस्टेया में 86 साल की 86 ईयर्स ओल्ड श्रीमती परमावती पुरंग पिताशी नाम दुबरी जो परमावती नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इनकी मृत्यु हो गई हैं। की अर्थी आज दिन के 1 बजे इनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे इनके बेटे श्री तुलसी शीतल तिल पुरंग के मकान रोड होस्टिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गौगोप की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टू डेट 1 PM। रॉयल रोड लावंचिया में 43 साल की 43 ईयर्स ओल्ड श्रीमती रामेश्वरी शीतल पैदाशी नाम जोहल जो मनीषा नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इनकी मृत्यु हो गई हैं। की अर्थी आज दिन के 2 बजे इनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे इनके पति श्री मदन शीतल के मकान रॉयल रोड लावंचिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौंदमास की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 2 PM। रॉम्प्लेमोर मोदालबेयामी 59 साल के 59 ईयर्स ओल्ड श्री गोपाल शामलोल जो सूरज नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इनकी मृत्यु हो गई हैं। की अर्थी आज दिन के 3 बजे इनकी अर्थी आज दिन के 3 बजे इनकी पत्नी श्रीमती देवयानी शामलोल के मकान रॉम्प्लेमोर मोदालबेया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्रेमानियों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 3 PM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसा।
2: पुराने गाने सिर्फ सुर और अल्फाज नहीं होते,

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: कभी वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
3: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
4: लड़की बड़ी अनजानी है।
1: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
5: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
1: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music.

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती,
0: वेलकम टू RM2।
1: रेडियो मस्ती,
2: नॉर्थ साउथ
1: 103.5,
2: ईस्ट वेस्ट
1: 96.4,
2: सेंटर
1: 99.4।
0: RM2, Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: 7 baje hai.
4: Morning Beat. A good beat for your morning show. James.
0: RM2, Radio Musti in the mix.

0: show.
1: James.
2: RM2, Radio Musty, in the mix.

वैसे दुनिया तो हसीन ही है लेकिन आपकी एक छोटी सी स्माइल इसको और भी खूबसूरत बना सकती है। वेरी गुड मॉर्निंग, सुबह के 7:13 हमेशा कहते हैं ना, अब 13 क्या होगा कालिया। अब स्नूज बटन से अपनी उंगली को हटाओगे, उठोगे

0: अपने बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स करोगे, एक कप गर्म पानी के साथ मॉर्निंग की शुरुआत, अपने ऑर्गन्स को जगाओ, अपने मन को टटोलो, बोलो उठो भाई टाइम हो गया है, कहाँ पर जाना है। चलिए भाई मंडे में मन लगाने की कोशिश हमारी आपकी जारी रहेगी। गुड मॉर्निंग
1: RM2 Radio Musti.
2: L'hiver a pécosté, mais côte métrique, c'est ban prix qui peut faire frissonner. Avec Winterstale, prix crasé. Jusqu'à les 30 juin, 40% réduction, l'ON grande sélection produit. Lavabo, collage, sanitaire et robinetterie, juste pour un ou l'hiver plus confortable. Métrique, une enseigne du groupe KRMJ.
1: RM2 Radio Musti.
3: A good beat for your morning show. Come on. Morning Beat. RM2
1: Radio.

0: जी हाँ, क्यों नहीं, लग तो रहा था कोई एंजल आपके कान में गाना गा रही है। चलो भाई, समय हो गया है, इस स्नूज बटन को कितना दबाओगे, अब उठ भी जाओ। हमें तो भाई पड़ोसी से भी शिकायत है, उनको उठना होता है 7 बजे, 5 बजे से स्नूज बटन अपना जो बटन है उसको दबाते रहते। कोई भाई हमारा फ़ायदा हो जाता है, हमें पता है कि इस टाइम पर हमें निकलना है, इस टाइम पर हमें ये करना है, तो हमारा फ़ायदा हो जाता है। कभी कभी तो मैं जाके उनको थैंक यू भी बोलना चाहती हूँ कि भाई थैंक यू सो मच, आपके स्नूज बटन ने हमारा बहुत काम कर दिया। चलो भाई, आपके पड़ोसी भी कुछ ऐसे होंगे, क्या करते हैं आपके पड़ोसी, आप मुझे बताएं ना, जो फनी चीज़ें हैं हमारे साथ भी शेयर कीजिए, हम भी जानना चाहते हैं। हमारे जो पड़ोसी होते हैं वो हमारे फैमिली मेंबर होते हैं, पता है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे पड़ोसी, क्योंकि आपके घर में आपके यहाँ कुछ भी होता है सबसे पहले वही आते हैं। मान लो कोई बीमार हो गया या कुछ कोई परेशान हो गया, घर में कोई काम हो गया, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भाई हमारे लिए। हमारे तो फैमिली मेंबर्स दूर से बहुत पता नहीं कितने टाइम से निकल कर आते हैं, बस ये पड़ोसी हैं जो आ जाते हैं जल्दी जल्दी। तो अपने पड़ोसी को रिस्पेक्ट करो, उनको प्यार दो, और हाँ, अगर उनके बारे में कुछ आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, उनके नाम कोई गाना डेडिकेट करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। नंबर आपको पता है, 5491294। चलिए, इसी के साथ अभी समय हो गया है हमारा, आप साथ मिलकर ज़रा इस मूड को बनाएं। और अभी अगर आप किसी को हैप्पी बर्थडे विश करना चाहते हैं, रिमेम्बर आपको मुझे उनका नाम और फ़ोन नंबर भेजना है। लोलो हाइपरमार्केट की तरफ से हम उनको कॉल करेंगे, उनको सरप्राइज़ करेंगे। ये बात अलग है कि मैं सरप्राइज़ करने के लिए कॉल करती हूँ और फिर मुझे शौक लग जाता है अपने आप पर। अच्छा लगता है ये जानकर कि जितने भी लोगों को हम फ़ोन करते हैं, उन सब के घर में रेडियो मस्ती के साथ वो मस्ती करते हैं। तो पता नहीं आज किसका लकी डे होने वाला है। 5491294 पे उनका नाम और उनका फ़ोन नंबर ज़रूर भेजें।
1: You're listening to RM2, a radio mastery.

0: अच्छा जी, जगा दिया गाने ने।
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: वैसे बहुत कम लोग होते हैं जो सरप्राइज हो जाते हैं. मुझे पता है इनको पता है, फिर भी बात करते हैं. हेलो, गुड मॉर्निंग.
3: गुड मॉर्निंग,
2: दिस इज माधवी जी.
3: हाँ
2: माधवी जी, कौन हूँ मैं? माधवी जी, मैं कौन हूँ? माधवी जी, आपने पैनकेक्स बना दिए.
3: वेदिता,
2: देखा, मुझे पता है. अगर मैं कोई भी इधर उधर की बात करूंगी तो पहचान लेंगी कि मैं ही हूँ. गुड मॉर्निंग जी, कैसी हैं आप?
3: गुड मॉर्निंग, बिल्कुल ठीक हूँ.
2: हाँ, मुझे पता है आप शॉक में हैं थोड़ा कि सुबह सुबह कैसे फोन कर दिया. रोज तो रेडियो सुनती होगी इसीलिए नाम पता चल गया. और मैं भी कहा, इतना लंबा मैंने तैयारी की थी, मैंने कहा बात करूंगी, फिर उन्होंने कहा कि आपको सुनना पसंद करते हैं, फिर यहाँ पर मेरा जो क्या कहते हैं, मुझे 440 वोल्ट का करंट लग गया. मुझे लगा तो फिर इसके लिए तो मैं खुद अभी अपने आप पे जोक बना लूंगी, रहने दो भाई. सो माधवी, आज आपका स्पेशल डे है और आपको पता ही है हम सुबह क्यों कॉल करते हैं.

0: रेडियो मस्ती।
1: चलो भाई, हमारी रेडियो मस्ती टीम की तरफ से आपको हैप्पी बर्थडे। और आपको मैं बताऊं कि हमारा ये जो बर्थडे ऑफ द डे है स्पॉन्सर्ड है लुलु हाइपरमार्केट की तरफ से, तो उनकी ओर से आपको एक वाउचर मिल रहा है जो कि आपको आज नहीं तो कल आकर MBC कलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो आप आकर अपने इस वाउचर को कलेक्ट करें और साथ ही साथ में आपको हमारी पूरे MBC टीम की तरफ से, रेडियो टीम की तरफ से बहुत सारा प्यार भेजती हूँ। विशिंग यू अ ग्रेट ग्रेट ग्रेट बर्थडे। और यहाँ पर आपके लिए मैसेज आया था, किसी ने कहा है कि आज हमारे बेस्ट फ्रेंड माधवी का बर्थडे है और नाम भेजा नहीं उन्होंने अपना, लेकिन आई होप कि आपने गेस कर लिया होगा कि किसने भेजा होगा। सो हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। डोंट फॉरगेट, अपने ID कार्ड के साथ आज नहीं तो कल आपको MBC आकर अपना वाउचर कलेक्ट करना है जो कि आपको लुलु हाइपरमार्केट की तरफ से मिल रहा है। ठीक है जी,
2: थैंक यू वेरी मच।
1: थैंक यू। ओके, अभी घर पे हैं, काम पे, क्या करेंगे अभी?
2: नो, आई एम ऑन माय वे टू ग्रैंड बासिन।
1: ओके, चलो भाई, हर हर महादेव, हमारी ओर से भी थोड़ा प्रेयर कर लीजिएगा। थैंक यू जी,
2: थैंक यू,
1: बाय बाय।
2: ओके, बाय बाय।
3: RM2 रेडियो मस्ती।
4: La vie, c'est ou PC sentir, c'est le macot c'est nol shop. Refil ban produit ménager, revinou bien moins. C'est et complice ou péranen grand, c'est vis la nature. Amenou galon, vin refil ban produit ménager éclisienne dans nous 4 nol shops. Triolet, paille, petite rivière et floréal.
5: Économique, écologique, passez au refil, c'est logique.
6: Cernol, le signe de confiance.
7: T'as fini l'école? T'as besoin d'un métier qui est dans l'avenir? T'as envie d'avoir une qualification qui ouvre la peau au travail ou continuer l'étude supérieure? MIT des cités qui trouve à Eben peut offrir une formation dans le secteur électrique, électronique et ICT. C'est un secteur d'avenir à Maurice et ailleurs. Pour plus de renseignements, téléphone au 404 72 52 ou visite site web mitd.law.mitd.mu.
3: RM2 Radio Musti.
8: You're listening to Radio Musti.

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the Flow Expert.
1: Sports News, latest updates.
2: Sports News.
3: Radio Musti in the mix.
4: एंड यस, यहाँ पर तो शोर मच गया, समय हो गया है उनसे मिलने का जो हमारे लिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड से सारी खबरें लेकर आते हैं। चलिए समय होता है, मिलते हैं अरविंद के साथ। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अरविंद।
5: गुड मॉर्निंग आपको, गुड मॉर्निंग RM2 लिसनर्स। द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। वर्ल्ड कप 2026 का पहला वीकेंड रहा भारी भरकम वीकेंड, जिसमें गोलों की बरसात हुई। जर्मनी की ओर से मेनी गोल। पहली बार वर्ल्ड कप में खेल रही कुआसाओ टीम के खिलाफ दी मानचाफ्ट की भारी जीत हुई 7-1 से। इस बार उसे धुलाई या पछाड़ना नहीं।

0: नहीं कहेंगे क्योंकि कुरासाओ की बहादुर टीम के लिए ये पहला वर्ल्ड कप था और ऐतिहासिक पहला गोल भी, जर्मनी का पहला गोल एंड मेचा ने स्कोर किया, फिर कोमिनेंसिया ने इक्वलाइज किया। उसके बाद फर्स्ट हाफ में शोलोटेबेक और हावर्ट स्कोर कर पाए, सेकंड हाफ में मुसियाला, ब्राउन, उंदव और हावर्ट्स का एक एक गोल, मतलब काय हावर्ट्स का डबल। जर्मनी के सात गोलों से सबसे कीमती रही कुरासाओ का वर्ल्ड कप में पहला ऐतिहासिक गोल, केवल 158,000 लोगों का छोटा टापू लेकिन जिगर वाले फुटबॉल खिलाड़ी। ये ग्रुप ई का मैच था, इसी ग्रुप में मैनचेस्टर यूनाइटेड का खिलाड़ी अमाद जालो हीरो बना। रेगुलेशन टाइम के अंतिम मिनट में सब्स्टिट्यूट अमाद जालो ने आइवोरी कोस्ट को जीत दिलाई, आइवोरी कोस्ट 1-0। इक्वाडोर की टीम ने काफी कोशिश की, गेंद 3-3 बार पोस्ट से टकराया, 2 साल बाद इक्वाडोर की हार हुई। अब 20 जून को आइवोरी कोस्ट वर्सेस जर्मनी, इक्वाडोर वर्सेस कुरासाओ। ग्रुप एफ में न किसी की जीत न किसी की हार, नेदरलैंड्स 2 जापान 2, दो दो बार नेदरलैंड्स की टीम लीड कर रही थी पर जाबाज जापान हिम्मत न हारा। पहला गोल कप्तान वान डाइक ने स्कोर किया, सेकंड हाफ में 6 मिनट बाद नकामुरा ने इक्वलाइज किया, 7 मिनट बाद समरविल ने फिर से नेदरलैंड्स को आगे भेजा पर 89th मिनट पर कमादा ने जापान को एक बार फिर एक अंक दिलाया, डिजर्विंग 1 पॉइंट, एक अंक जिसके लिए उन्होंने मेहनत की। नेदरलैंड्स के दोनों गोल ग्रेवेनबर्ग के पास पर रहे। नेदरलैंड्स का अगला मैच 20 जून को स्वीडन के खिलाफ होगा, जापान खेलेगा चुनिजिया के खिलाफ। अभी ग्रुप एफ का एक मैच चल रहा है स्वीडन और चुनिजिया के बीच, थोड़ी देर पहले स्वीडन 3-1 से आगे था, अयारी का एक गोल, इसक का एक गोल, ग्योकोरिस का एक गोल, अभी थोड़ी देर बाद आपको इस मैच का फाइनल रिजल्ट देंगे। ग्रुप जी में आज 11 बजे बेल्जियम वर्सेस इजिप्ट, ग्रुप एच में 8 बजे स्पेन वर्सेस केप वर्दे और कल सुबह 2 बजे सऊदी अरेबिया का मुकाबला उरुग्वे से होगा। स्पेन वर्सेस केप वर्दे ये मैच आज रात 8 बजे एमबीसी टीवी पर सीधा प्रसारित किया जाएगा 8 बजे, जबकि सभी मैच आप देख पाएंगे एमबीसी प्ले पर। ट्रांसफर न्यूज, रियल मैड्रिड ने जोसे मोरिनो बॉस हैं, चेल्सी के लिए उसका प्यार कम नहीं हुआ, आते ही उसने चेल्सी से कुकुरेला को साइन करने की ओर कदम बढ़ाया है। पेरिस सेंट जर्मेन के स्ट्राइकर ब्राडली बाकोला के पीछे हैं लिवरपूल और आर्सेनल, पेरिस सेंट जर्मेन उसे सही दाम पर बेचने के लिए तैयार हैं। इधर मार्कुस राशफोर्ड को साइन करने के लिए बायर्न म्यूनिख भी रेस में है, अभी बार्सा के यहाँ है लोन पर, मैनचेस्टर यूनाइटेड उसे बेचने के लिए तैयार है। ICC T20 Women's World Cup में कल टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 64 रनों से हराया। इंडिया की महिला टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 170 रनों का टारगेट रखा, स्मृति मंदाना 68 रन बना पाई। जवाब में पाकिस्तान की टीम केवल 106 रन पर ढेर हो गई ऑल आउट, दीप्ति शर्मा केवल 10 रन देकर 5 विकेट ले पाई। टीम इंडिया के ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश हैं, इनके पास हैं 2-2 अंक। ग्रुप में नेदरलैंड्स, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका हैं। भारतीय लड़कियां अब बुधवार को खेलेंगी नेदरलैंड्स के खिलाफ। इधर फॉर्मूला 1 मोटर रेसिंग चैंपियनशिप के बार्सिलोना कैटालोनिया ग्रैंड प्री में फेरारी पर सवारी करते हुए लेमिस हैमिल्टन की जीत हुई, 2 सालों के बाद हैमिल्टन एक ग्रैंड प्री जीत पाया, रसेल दूसरे स्थान पर आया, लैंडो नोरिस थर्ड प्लेस, चैंपियनशिप लीडर रेस पूरा नहीं कर पाया, एंटोनेली अब हैमिल्टन से 41 अंक आगे हैं। सो दैट्स इट द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड, भूलिएगा नहीं आपको रेंडेवू दे देते हैं 8:30 स्पेशल वर्ल्ड कप RM2 पर, जहां पर आज के मैचों पर जानकारियां देंगे और हमारे वर्ल्ड कप स्पेशलिस्ट सरजू गौरीशंकर भी कल के मैचों पर अपने व्यूज और रिव्यूज देंगे, जरूर सुनिएगा 8:30 RM2 पर स्पेशल वर्ल्ड कप। टिल देन एंजॉय द म्यूजिक ऑन द वेव्स ऑफ Radio Masti.
1: Thank you, Arvind. Thank you so much.
2: This magazine was brought to you by Quality Decor, the floor expert.
3: A good beat for your morning show. Morning Beat, RM2.
4: Radio Musty.

0: And a very good morning to Rakhi, जो कहती है आज मैंने एक ही बार स्नूज किया और मैं अपने पड़ोसी से बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं. चलिए कुमार, गुड मॉर्निंग टू यू, वेलकम टू रेडियो मस्ती.
1: You're listening to Radio Masti.
0: जहाँ से भी साथ दे रहे हैं, घर से निकल चुकी है काम पर जाने के लिए, ट्रैफिक ने थोड़ा परेशान किया है. भाई डू लेट मी नो ना, 5491294 मैसेज है भाई.

0: You're listening to Radio Masti Morning Beat Vinita के साथ। थोड़ी देर में हम बढ़ने जा रहे हैं अगले गाने की ओर, जो हमें लेके जा रहा है जरूर 8 बजे के समाचारों की ओर। मिलते हैं उस पार कुछ और सरप्राइजेस के साथ। Stay connected.
1: A good beat for your morning show. Morning Beat RM2
2: Radio Masti.

नमस्ते पेशवा भोजपुरी के समाचार। सोशल इंटीग्रेशन मंत्रालय बजट 2026-2027 खातिर केयरर्स अलाउंस में वृद्धि। घर आर रेजिडेंशियल केयर होम के केयरर्स लोग के पेशेवर प्रशिक्षण खातिर लोग प्रारंभिक फंड की स्थापना। आर 85 वर्ष से जस्ती की उम्र के बर्जन लोग खातिर घर पर ही चिकित्सा सेवा के विस्तार जैसन प्रस्ताव दिले बाटे। घोषणा आज 15 जून के बुजुर्ग लोग परी दुर्व्यवहार के खिलाफ जागरूकता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के संदर्भ में सोशल इंटीग्रेशन मंत्री अशोक सुभो अपन संदेश में करलन। वो बर्जन लोग के बेहतर सुरक्षा खातिर बदलल सामाजिक परिप्रेक्ष्य में मौजूदा सहायता मेकानिज्म परी फिरो से गौर करे के और नवा कानूनी ढांचा स्थापित करे की बात बोले हवन। उमर्शन समाज के विकास में बुजुर्ग लोग की महत्वपूर्ण योगदान खातिर ओ लोग के आभार प्रकट करलन। काल 14 जून के मनावल गल विश्व रक्तदान दिवस के संदर्भ में ब्लड डोनर्स एसोसिएशन आज दिन के 11 बजे से क्यूपिप नगर पालिका में रक्तदान के आयोजन कर ले बाटे। एकर से अक्ते एगो पद यात्रा निकालल जाए। ये आयोजन खातिर स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रालय की सहयोग प्राप्त होता। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अफसर लोग आज फिर सिलासू क्लिनिक के दौरा करियन जा। गल 4 दिन से वो लोग ई बात पर ध्यान देवत हन जा कि इलाका से गंदा पानी पंपिंग करे के कार्य जारी रही और GECC लिमिटेड प्रभावित क्षेत्र से मरल मच्छी हटाए। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जनरल मैनेजर नवीन जवाहिर के अनुसार 6,000 लीटर की क्षमता होला 3 गो सैनिटेशन ट्रक वहाँ से 50 ले जस्ती चक्कर लगैले बाटे और एक अतिरिक्त GECC लिमिटेड के लॉरी के भी 106 गो चक्कर होल बा। असल में एगो सोलर फॉर्म परियोजना के सिलसिला में गल 11 जून के ई कंपनी देने से चलावल जाए होला खुदाई कार्य के दौरान वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के एगो पाइपलाइन के टूट गल रहल। ई पाइप के जरिए मुख्य रूप से इंडस्ट्रियल जोन से गंदा पानी निकलेला। पाइपलाइन की मरम्मत बीफे सांझले ही कर देवल गल रहल। लगभग 1 महीना में एलनीनो वैश्विक जलवायु के प्रभावित करे के शुरू करी जे 8 महीने

0: हिनाली चली सकी आ एक असर मोरसस पर भी पड़ी सकी। समुद्री वैज्ञानिक और पर्यावरण विशेषज्ञ लोग के अनुसार ये अवधि के दौरान स्थानीय मौसम अप्रत्याशित हो सकी जेकर में लंबा बखत ली सूखा जस्ती मुटका पानी और कृषि समंदर और खाद्य सुरक्षा पर ही एक गंभीर प्रभाव पड़ सकी। विशेषज्ञ लोग के अनुसार ये घटना के सामना करे खातिर संसाधन की तैयार करे के जरूरी है। नेशनल यूथ पार्लियामेंट के पांचवा संस्करण खातिर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चलावल जाता है। राष्ट्रीय सभा दिन से आयोजित पहल के तहत 14 से 23 बरिस की उम्र के नौजवान लोग के संसदीय कार्य प्रणाली समझे के समसामयिक मुद्दा पर ही बहस करे के और लीडरशिप तथा कम्युनिकेशन क्षेत्र में अपन क्षमता विकसित करे के मौका मिली। आवेदन भेजे खातिर अवत 22 जून तक के मोहलत बा। दूसरे देश के खबर में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ऐलान कर ले हुन कि लेबनान के संगे संगे पूरा मध्य पूर्व में सैन्य कार्यवाही समाप्त करे खातिर अमेरिका और ईरान के बीच एगो शांति समझौता कायम होइल बा। जानकारी के अनुसार ई सुख के स्विट्जरलैंड में ई संधि पर ही हस्ताक्षर करल जाए। तेरहल भोजपुरी के समाचार तोहर ध्यान खातिर धन्यवाद।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: Nous fin arrive demi-finale débat climat saison 4. Ban demi-finaliste pour nous autres rendez-vous pour une soirée bien animée au climat. Débat climat, c'est une initiative MCB et Creative Gandhi Science Center avec collaboration Dr. François Gemène, spécialiste en environnement. Rendez-vous samedi 20 juin à partir de 8h30 à soir au MBCN et MBC SAT. N'a pas raté ça!
3: Morning Beat! A good beat for your morning show. James.
4: RM2, Radio Musty, in the mix.

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musty.
2: A very good morning to you, my dear friends. Welcome to Radio Musti Morning Beat Vidita ke saath. Subah ke 8:09 hue hain. Aaj hai Monday 15th of June. Chalo, jo log apna birthday celebrate kar rahe hain, wishing you a great one. Aur baaki hamare jo dost hain hamare saath hain, aap bhi kisi ko happy karna chahte hain, don't forget hamara number hai is 549 and 1294. Ab planning mujhe nahi pata aaj aapne kya kiya hai, lekin itna to zarur jana chahenge ki aaj ka mausam kaisa rehne wala hai din bhar. To chaliye milte hain Aditi se.
0: It's the weather broadcast with winners.
3: On est tous winners.
4: आम हालत दक्षिण पूर्व से आ रहे बादलों का असर रह रहकर हमारे इलाके पर पड़ेगा. अगले 24 घंटों के लिए अनुमान. आज सुबह आमतौर पर मौसम सुहाना रहेगा. दोपहर बाद दक्षिण पूर्व और ऊंचाइयों पर बादल घिरा सकते हैं और रह रहकर बारिश होगी. रात के दौरान भी पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लेटों वाले इलाकों पर बादल घिरे रहेंगे. हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी. प्रवाल रेखा के परे समंदर चंचल रहेगा. दक्षिण पश्चिमी समंदर में 2.50 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी, इसलिए आज रात से दूर समंदर में न निकलने की सलाह दी जाती है. तापमान सेंट्रल प्लेटों पर न्यूनतम 18 से 20, अधिकतम 24 से 26 डिग्री सेल्सियस. साहली इलाकों पर न्यूनतम 22 से 24, अधिकतम 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. सुबह 6:43 पर सूर्योदय, शाम को 5:37 पर सूर्यास्त होगा.
0: Your weather forecast on RM2.
1: Radio Musti.
5: C'est le moment que tout le monde attendait. La fièvre du foot débarque chez Winners avec des offres à ne pas manquer. Profitez d'offres exceptionnelles sur vos produits préférés. Les 250 grammes de croquettes samoussa, spring rose, poulet ou poisson, Mariga Jack à 84 roupies 95 et toute la gamme de déodorants Axe 24 heures à 138 roupies 95 et à l'achat de 400 roupies de la gamme Axe, recevez un déo Axe FIFA en cadeau. Le coup d'envoi est lancé. Rendez-vous dès maintenant dans votre magasin Winners pour profiter des offres et animations du moment.
6: On est tous winners.
0: RM2
1: Radio Musti.
7: Communiqué depuis ministère agro-industrie. D'après Animal Diseases Act, ministère paie un fonds public qui est dans la ferme, centre de production, l'abattoir ou sa centre quarantaine qui se bise enregistré le National Livestock Information System, NLIS. Ça concerne tout le monde et compagnie qui est dans bœuf, cabri, mouton, cochon, volaille, cerf ou abeille. Pour enregistrer, allez au site web agriculture.govamu.org ou download l'application NLIS, le Google Play ou App Store. Contactez-nous au 463-3107 ou WhatsApp 5500-1000.
8: Mieux connaître la taxe avec la MRE.
9: La MRE est un fonds ban contribuable qui date limite pour paiement et soumission ban return ou statement suivant, c'est le mardi 30 juin 2026. Corporate tax return pour ban compagnie qui ferme ce compte en décembre 2025. Return TVA pour période qui termine le 31 mai 2026. APS pour trimestre qui finit terminé en mars 2026, Passenger Solidarity Levy, Passenger Fee et Tourist Fee pour le mois de mai 2026, Joint PAYE CSG NSF Return pour le mois mai 2026, PRGF pour le mois de mai 2026, Monthly TDS Return pour le mois de mai 2026, VAT Special Levy pour la banque qui est accounting year terminé en janvier 2025, Fair Shared Contribution pour une compagnie qui finit ferme ce compte en décembre 2025 et qui n'a un chargeable income qui dépasse 24 millions pour l'année financière 2024-2025, Fair Share Contribution pour une compagnie pour trimestre qui est terminé en mars 2026. Pour plus de renseignements, téléphone au 200.

0: grand défi de long shift. Commence par une bonne décision. Nescafé.
1: दोस्तों, हम में से कितने सारे लोग हैं जो हमेशा सोचते हैं कि भाई इतना टाइम निकल गया, ये हमें क्यों नहीं मिला, वो हमें क्यों नहीं मिला। जो आपके हिस्से में लिखा है ना, वो आप तक एक दिन ज़रूर पहुंचेगा, और जो आपका नहीं है उसके पीछे भागने से सिर्फ आपको थकान ही मिलेगी। इसलिए मेहनत पूरी शिद्दत से कीजिए, लेकिन नतीजे की फिक्र छोड़ दीजिए। दोस्तों, ज़िंदगी में कई बार हमें लगता है कि हम कुछ चीज़ें मिस कर रहे हैं, दूसरों को हमसे ज़्यादा मिल रहा है शायद। लेकिन हर इंसान का सफ़र अलग होता है। जो मौके, खुशियाँ और कामयाबियाँ आपके लिए बनी हैं, वो सही वक्त पर आप तक ज़रूर आएंगी। इसलिए कंपैरिजन से ज़्यादा फोकस अपनी ग्रोथ पर कीजिए। भरोसा रखिए कि आपकी जो मेहनत है, आपका जो ऊपर वाला बैठा है, आपका भगवान, और आपका जो वक्त है, वो एक दिन ज़रूर आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आएगा। सो यू ऑल हैव टू डू ट्रस्ट प्रोसेस। जो आपका है वो रास्ता ढूंढ लेगा आप तक पहुंचने के लिए। खुश रहिए, और ज़िंदगी ने आपको कई सारे अच्छे मौके दिए हैं। आपको वो पल देता है जिसमें आप अपनी खुशियाँ ढूंढ सके, तो अपने खुशियों को ढूंढिए और बाकी ऊपर वाले भी छोड़ दीजिए।
0: Avant de défi de long shift, commence par une bonne décision. Nescafé.

0: It's the World Cup magazine on RM2 with Mighty.
1: Get ready for the biggest World Cup ever!
2: 2026 FIFA World Cup.
1: पहली बार होंगी 48 टीम्स, 104 मैचेस। रेडियो मस्ती की टीम के साथ
2: चलिए
1: यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको।
2: रेडियो मस्ती के साथ
1: वर्ल्ड कप मैगजीन।
3: एंड यस, एक बार फिर समय हो गया है, चलिए मिलते हैं अरविंद से, जानते हैं कुछ और डिटेल्स वर्ल्ड कप के बारे में।
4: वर्ल्ड कप स्पेशल ऑन RM2, वर्ल्ड कप 2026 में गोलों की बारिश, मेनी मेनी गोल, चाहे जर्मनी की ओर से हो या स्वीडन की ओर से। चार मैचों में टोटल 19 गोल, 19 गोल्स। पहले तीन मैचों पर थोड़ी देर बाद हमारे फुटबॉल एक्सपर्ट, वर्ल्ड कप एनालिस्ट सरजू गौरीशंकर को सुनेंगे। फिलहाल 8 बजे मैच पूरा हुआ स्वीडन और ट्यूनिजिया के बीच, मतलब ब्रेकफास्ट के साथ फुटबॉल। आयारी ने गोलों से यारी की, डबल रहा यासीन आयारी की ओर से, उसी ने खाता खोला और एंडिंग भी एक क्रैकर गोल के साथ। इसाक ग्योकेरेस और स्वैनबर्ग भी स्कोर शीट में रहे। ग्योकेरेस का एक असिस्ट रहा, इसाक की ओर से दो असिस्ट। बाकी मैचों पर एनालिसिस थोड़ी देर बाद। पॉपुलेशन को लेकर दो या हो या जियोग्राफिकल साइज, सबसे छोटा देश, स्मॉलेस्ट नेशन वर्ल्ड कप में भाग लेने वाला कुरासाओ ने अपने पहले ही मैच में वर्ल्ड कप में गोल स्कोर किया। पॉपुलेशन केवल 158,000 पर एक खिलाड़ी को छोड़कर 25 खिलाड़ियों का जन्म नेदरलैंड्स में हुआ है। कुरासाओ किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स के अंतर्गत आता है, सोवरेन आइलैंड है। इस टीम के साथ कोच डिक अग्वोकट भी इतिहास में जाता है, 78 साल का है, वर्ल्ड कप का सबसे वृद्ध, ओल्डेस्ट बॉस। जर्मनी के खिलाफ भारी हार हुई, पर कुरासाओ का वर्ल्ड कप में आना फुटबॉल जगत के लिए एक कीर्तिमान है। सोमाली के रेफरी ओमा आर्टन को यूएसए में एंट्री नहीं मिली, वो वर्ल्ड कप में ऑफिशिएट नहीं कर पाएगा, पर फीफा ने उसे फुल वर्ल्ड कप फी चुकाने का फैसला लिया है। ओमा आर्टन को यूरोपियन सुपर लीग का रेफ

0: भी चुना गया है। कहते ना कि एक दरवाजा बंद होता है तो कई दरवाजे खुलते हैं, निराशा में भी आशा है। वर्ल्ड कप में अनेक ह्यूमन स्टोरीज सुनने को मिलते हैं। एक है ऑस्ट्रेलिया के गोल स्कोरर नेस्टोरी ईरान कुंदा की कहानी। उसका जन्म तंजानिया के रेफ्यूजी कैंप में हुआ था 2006 में। उसके पेरेंट्स बुरुंडी के हैं। रेफ्यूजी कैंप से ऑस्ट्रेलिया में आए, यहाँ एडिलेड यूनाइटेड में शुरू हुआ। 2024 में बायर्न म्यूनिख ने उसे साइन किया, पर फर्स्ट टीम में खेलने का मौका नहीं मिला। ऐसे में उसका सपना ऑस्ट्रेलिया के लिए वर्ल्ड कप में खेलना बाकी था। ग्रास होपर टीम में आया लोन पर, फिर वाटफोर्ड में गया बायर्न म्यूनिख छोड़कर। यहाँ खेलने के बाद उसे ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने का मौका मिला और इस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया का पहला गोल उसी ने स्कोर किया। मैच प्रीव्यू, स्पेन वर्सेस केप वर्दे, ये आज का लाइव मैच होगा। स्पेन यूरोप और विश्व का महारथी है, उसके सामने वर्ल्ड कप में पहली बार खेलने वाली डेब्यूटेंट केप वर्दे। यूरोप का रेनिंग चैंपियन स्पेन स्ट्रॉन्ग फेवरेट है, न केवल इस मैच के लिए बल्कि वर्ल्ड कप जीतने के लिए। लामिन यमाल और निको विलियम्स फुल फिट नहीं है, शायद सब्स्टिट्यूट बनकर आएंगे। उधर केप वर्दे फुल्ली हेल्दी स्क्वाड के साथ हैं, लिवरामेंटो इसी टीम में खेलता है। हालिया परफॉर्मेंस, स्पेन लगातार 30 मैचों में रेगुलेशन टाइम में नहीं हारा है, जबकि केप वर्दे क्वालिफाइंग मैचों में 10 मैचों में केवल एक बार हारा है। कमरून को हराकर क्वालिफाई हुई है ये टीम, पर सुपर कंप्यूटर्स के प्रेडिक्शन में स्पेन 87.2% विनिंग प्रोबेबिलिटी। और एक कहानी, वर्ल्ड कप 2026 से एक और पिंक कलर की कहानी। यूरुग्वे और सऊदी अरेबिया वाले मैच का रेफरी, असिस्टेंट रेफरी और बाकी मैच ऑफिशियल्स पिंक कलर जर्सीज के साथ मैदान में उतरेंगे। ये इसलिए क्योंकि मैच मायामी में खेला जाएगा और जयपुर की तरह मायामी भी पिंक सिटी कहलाता है। फीफा चीफ रेफरिंग ऑफिसर कोलिना ने कहा कि मायामी सिटी को अपना अप्रिसिएशन दिखाने के लिए उसके रंग में रंगेंगे मैच ऑफिशियल्स। इस वर्ल्ड कप में सब कुछ पिंक ही पिंक, चाहे जूते हो या रेफरी जर्सीज। बॉलीवुड अंदाज में वर्ल्ड कप में ये पिंक रंग कब हमें छोड़ेगा। ऐसे कल के मैचों पर आइए सुनते हैं हमारे वर्ल्ड कप एनालिस्ट फुटबॉल एक्सपर्ट सरजू गाड़ूशंकर को। हमारी मुलाकात होगी आज शाम 4:40 पर। आज के सभी मैचों पर प्रीव्यू आपको देंगे।
1: नमस्कार अरविंद, मैच जर्मनी और किसाओ कैसे जानते कि वो मैच में गोलों की बरसात हो। देखा कि जर्मनी विन 7-1 और किसाओ उतना जर्मनी की टीम की डिफिकल्टी मैंने से कर डाली है। मतलब सर कि एगो वन डायरेक्शन मैच रहा। देखब सर कि जर्मनी अपन मिडफील्ड से और स्ट्राइकिंग फोर्स कौन बा लोग बढ़िया रह सको पाएगा तरीके की खुशाओ टीम में लगता। तब जापान वो लोग अपन मेंटली स्ट्रांग उनसा देखबा कि वो लोग अपन हर स्को कब हर करी कब नेदरलैंड स्कोरे का लगता और लोग फाची से आने से गाली से कल समझवा। देखा ये मैच मतलब सर कि एगो फास्ट मुंत्र कला कि फुटबॉल अब बड़ा लेकिन छोटा लेकिन उतना डिस्टेंस नहीं बा है। देखा कि जापान के फुटबॉल और यूरोपियन फुटबॉल देखा कि उतना डिफरेंस नहीं बा है। सकेला कि अब दूसर मैच देखब सर कि कैसे जापान अपन कंसिस्टेंसी यानी अपन फुटबॉल में। कोट डिवोर वर्सेस इक्वाडो मतलब सर कि फर्स्ट अफ्रीकन टीम के एंट्रेंस और वर्ल्ड कप में और कहने एक शानदार एंट्रेंस करने से कहे कि वो लोग जीतलन सर इक्वाडो से के टीम पर। इक्वाडो की टीम बोलब सर कि एगो बड़ी फिजिकल टीम है, लोग डिफेंस सॉलिड बा मगर ओकर में जैसे क्रिएटिविटी ने बा से है वो उतना ड्रिबल प्लेयर बा। सकेल सर कि डिफॉ लोग ट्रांसवर्सल टू से कलन सर स्ट्राइकिंग में और मगर बोलब सर कि कोई जीव कोई इंडिविजुअलिटी खूबी लिमन है। देखो अपन डिफिकल्टी सक अपन अपन डेवलपे करके अपन

0: फुटबल और एगो जोया हम बला बा को नई टीम में जियो मांडी को स्पोर्टिंग में खेलेला पुर्तगाल में फैंटास्टिक प्लेयर है इन मछुआ में और मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस खूबी खुश रहते हैं कि अमर जालू तो वही गोल स्कोर कलक अपन सेकंड हाफ में हिलल तो ओके एगो चांस मिलल और ये बोल सक कि दुए कौन पैरिस में के प्लेयर रहा वो गो बड़ी बल्ब से गो बड़ी बैट मैच कर लग है उतना लिमन ने रहा मैच लिमन से नहीं खेल लग बाकी सकेला वो अभी ले लाफाचिक बेवा मैं बोल सब ब्रावो आ मत जालो ब्रावो आ कुछ जीवा और बल्ब से अभी के प्रीमियर लीग की ब्लैफ्रिक कौन हेलल वर्ल्ड कप में एक विक्टोर लग
1: FIFA World Cup 2026, 11 June se 19 July. Catch all the news, views, previews and latest updates.

0: बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू गाइस।
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: चलो भाई, आपका साथ है मंडे 15th of June। यहाँ हमारे साथ आप लोग जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेजेस 549 and 1294। आई जस्ट होप यू हैविंग अ गुड टाइम हमारे म्यूजिक के साथ। और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि आप अगर किसी को बर्थडे विश करना चाहते हैं, आप किसी को कोई मैसेज देना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। 549 and 1294 नंबर है। चलिए इसी के साथ खूबसूरत गाने आपके लिए लेकर आए हैं, खास आपके मॉर्निंग को खूबसूरत बनाने के लिए।
3: You're listening to RM2 Radio Musti.

0: जो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: इतना सजोगी, इतना भी मत सजो कि बस छूट जाए, काम पर जाने के लिए देर हो जाती है। पता है अभी इट्स 8:49 और काफ़ी सारे लोग हैं जो अपनी मंजिल की इतनी भी दूर नहीं है, कहते हाँ पहुंच गए भाई, पहुंच गए। कुछ लोग तो ऑफिस में गरम गरम कॉफ़ी के साथ हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं। गुड मॉर्निंग माई डियर, हाउ आर यू, कैसे हो आप? चलो तो यहाँ पर हम मम सविता भरोसी को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं, 77 ईयर्स ओल्ड टुडे। प्रवीण, प्रीति, संजय, देवीना, शिवरानी और सबकी ओर से आपको हैप्पी बर्थडे। और वहीं पे चलिए, काफ़ी सारे लोग हैं कंप्लेन करते हैं, भाई हमारी तो नींद खुलती नहीं है, सुबह बड़ी परेशानी होती है। पता है हम में से बहुत से लोग हैं जो सोने से पहले मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, लेकिन फ़ोन, टैबलेट और लैपटॉप की ब्लू लाइट हमारी ब्रेन को सिग्नल देती है अभी दिन है, अभी दिन है, अभी दिन है, जिसकी वजह से नींद आने में दिक्कत होती है। इसीलिए एक सिंपल रूल ट्राई कीजिए, सोने से कम 30 मिनट पहले स्क्रीन बंद कर दीजिए। इस टाइम में आप हल्का म्यूजिक सुन सकते हैं, कुछ किताब पढ़ सकते हैं या बस थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। और हाँ, रोज लगभग एक ही टाइम पर सोना और उठना भी बॉडी क्लॉक को बैलेंस रखने में मदद करता है। तो आज रात से आपको पता है क्या करना है, 30 मिनट पहले मोबाइल को आप कोने में रख दो। हाँ, अलार्म जरूर लगाना, हाँ ज्यादा स्नूज बटन को दबाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्या कहते हो? चलो इसी के साथ अभी आपके मूड को थोड़ा और लिफ्ट करते हैं एक ऐसे गाने के साथ जो आपको पसंद है और हमें भी।
1: RM2 Radio Musti

हम भी नहीं बदले और मेरे बाद जो आएंगे वो भी नहीं बदले, विकास के आने का टाइम हो गया है। यस गाइस, मौसम एकदम सुहाना है और ऐसे सुहाने मौसम में स्पेशली और मंडे, मैं जानती हूँ आपका दिल क्या कह रहा है कि बस थोड़ा सुकून मिल जाए। उसी सुकून के लिए तो हम कोशिश करते हैं, कभी आपको नचाते हैं, हंसाते हैं, कभी आपके साथ गाते हैं। और चलिए इस सफर में साथ देने के लिए थैंक यू सो मच। आई एम गोना सी यू टुमारो एट 7 AM आपके अपने मॉर्निंग बीट में। अभी विकास आ रहे हैं थोड़ी ही देर में साथ देने।

0: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे अदिति, नमस्कार आपको।
1: नमस्कार नीतुषा, श्रोताओं को भी नमस्कार। सोशल इंटीग्रेशन मंत्रालय ने बजट 2026-2027 के लिए केयरर्स अलाउंस में वृद्धि, घरों और रेजिडेंशियल केयर्स होम्स के केयरर्स के पेशेवर प्रशिक्षण के लिए एक प्रारंभिक फंड की स्थापना और 85 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए घर पर चिकित्सा सेवाओं के विस्तार जैसे प्रस्ताव दिए हैं। ये घोषणा आज 15 जून को बुजुर्गों पर दुर्व्यवहार के खिलाफ जागरूकता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के संदर्भ में सोशल इंटीग्रेशन मंत्री अशोक सुबो ने अपने संदेश में की। उन्होंने बुजुर्गों की बेहतर सुरक्षा के लिए बदलते सामाजिक परिप्रेक्ष्य में मौजूदा सहायता मेकानिजम्स पर फिर से गौर करने और नए कानूनी ढांचे स्थापित करने की बात कही। उन्होंने मॉरिशन समाज के विकास में बुजुर्गों के महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनका आभार प्रकट किया। कल 14 जून को मनाए गए विश्व रक्तदान दिवस के संदर्भ में ब्लड डोनर्स एसोसिएशन ने आज दिन के 11 बजे से क्यूप नगर पालिका में रक्तदान का आयोजन किया है। इससे पूर्व एक पदयात्रा निकाली जाएगी। इस आयोजन के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रालयों का सहयोग प्राप्त हो रहा है। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अफसर आज फिर से लातूर क्लिनिक का दौरा करेंगे। पिछले 4 दिनों से वे इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि इलाके से गंदे पानी की पंपिंग जारी रहे और GECC लिमिटेड प्रभावित क्षेत्र से मृत मछलियां हटाए। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जनरल मैनेजर नवीन जवाहिर के अनुसार 6,000 लीटर की क्षमता वाले 3 सैनिटेशन ट्रकों ने 50 से ज़्यादा चक्कर लगाए हैं और इसके अतिरिक्त इस कंपनी की लोड़ियों के भी 106 चक्कर हुए हैं। असल में एक सोलर फार्म परियोजना के सिलसिले में 11 जून को GECC लिमिटेड द्वारा चलाए जा रहे खुदाई कार्यों के दौरान वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी की एक पाइप क्षतिग्रस्त हुई। इस पाइपलाइन के जरिए मुख्य रूप से इंडस्ट्रियल जोन से गंदा पानी जाता है। पाइपलाइन की मरम्मत गुरुवार शाम तक ही कर दी गई थी। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आज से जनेवा में शुरू हो रहे G7 शिखर सम्मेलन के विरोध में कल वहां वृहद प्रदर्शन हुए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच मुठभेड़ें हुई, दुकानों के शीशे तोड़े गए और एक गाड़ी में आग लगा दी गई। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। लोगों का कहना है कि ये बड़े देश पैसे और ताकत के बल पर छोटे देशों और उनकी जनता पर दबाव डालते हैं। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुआ। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: RM2 Radio Musty.
1: नमस्कार, स्वागत, गुड मॉर्निंग। और क्लॉक ने 9 बजने का सिग्नल दे दिया है। वीकेंड मस्ती अब जैसे मेमोरीज बन चुकी है और मंडे की रेस ऑफिशियली शुरू हो चुकी है। भागा दौड़ी, कभी ज्यादा कभी थोड़ी। भाई ट्रैफिक थोड़ा हैवी होता है कहीं कहीं इलाकों पर, इनबॉक्स थोड़ा सा फुल होगा और टू डू लिस्ट ये भी शायद आज एक्स्ट्रा लंबी ही होगी। लेकिन टेंशन लेने का नहीं, क्योंकि मोटिवेशन यहाँ पर है गानों के साथ, बॉलीवुड के सुपरहिट गाने, पॉजिटिव वाइब्स और फुल ऑन एनर्जी के साथ। मैं विकास आपके साथ, चाहे ऑफिस जा रहे हो या वर्क फ्रॉम होम या अभी अभी दिन की शुरुआत की है, हम है ना आपका मूड बनाने के लिए। सीट बेल्ट बांध लो और स्माइल पहन लो। मैं तो प्यार में डूबा,

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: जैसा वक्त हो गया हम बड़े आपकी राशियों की तरफ और जाने सितारे आज के लिए क्या कहते हैं, शुरुआत करते हैं हुए
2: एरीज मेष राशि।
1: भाई जो भी कदम है उसको सोच समझ कर बढ़ाने की जरूरत है, खासकर कारोबार और पैसों से जुड़े मामले में जल्दबाजी में लिया गया फैसला बाद में पछतावा दे सकता है, इसलिए थोड़ा सोच समझ कर जीवन साथी की भावनाओं को समझना और उनकी सेहत का ध्यान रखना रिश्तों में और मिठास घोलेगा। परिवार में चल रही कोई चिंता खासकर संतान के विवाह को लेकर धीरे धीरे सुलझती नजर आ रही है।
2: टॉरस वृषभ राशि।
1: भाई आज मेहनत का फल, चाहे सुबह आपने फल ना खाए हो, ये मिलने से मन संतुष्ट रहेगा और आर्थिक स्थिति भी मजबूत महसूस होगी। घर में पूजा पाठ या धार्मिक माहौल बनाने का मन हो सकता है। बच्चों की संगति पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि छोटी सी लापरवाही आगे परेशानी बन सकती है।
2: जेमिनी मिथुन राशि।
1: मन कभी कभी उलझ जाता है, उलझ, और फिर लगता है कि करें तो क्या करें। पुराने कानूनी या जरूरी मामले को लेकर चिंता बन सकती है, लेकिन कूल ठंडे दिमाग से काम लीजिए। अच्छी बात यह कि अधिकारियों का जो सहयोग है वो आपको मिलेगा और काम की तारीफ होगी। कोशिश करें कि अपने जो इम्पोर्टेंट काम है ना खुद संभाल लें, क्योंकि दूसरों पर जरूरत से ज़्यादा जो डिपेंड करते हैं ना वो नुकसान दे सकता है।
2: कैंसर कर्क राशि।
1: दूसरों की मदद और अच्छे व्यवहार से समाज में आपकी पहचान मजबूत होगी। लंबे समय से रुकी हुई चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ती नजर आएंगी। नौकरी और कार्य क्षेत्र में बोलचाल, उस पर थोड़ा संयम रखना जरूरी है क्योंकि आपके शब्द ही रिश्तों को बना या बिगाड़ सकते हैं। भाई आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए किए गए जो प्रयास हैं वो सफल होंगे। नई नौकरी, नए अवसर, इसकी जो तलाश कर रहे हैं उनके लिए भी उम्मीद की किरण नजर आती दिख रही है।
2: लियो सिंह राशि।
1: लियो, जो भी काम मिले उसको समय रहते कर दियो। कार्य क्षेत्र में कुछ नया करने का विचार मन में आ सकता है और यहीं से ये जो बदलाव है ना, ये जो चेंज है, ये सफलता का कारण बन सकता है। स्टूडेंट पढ़ाई और किसी कंपटीशन में पूरी मेहनत से जुटे रहेंगे और मौसम का असर सेहत पर पड़ सकता है, इसलिए लापरवाही नो नो।
2: वर्गो कन्या राशि।
1: आज मेहनत और लगन आपका सबसे बड़ा सहारा बनेगी और अच्छे परिणाम भी आपको मिल सकते हैं। जरूरतों और आराम की चीजों पर खर्च बढ़ सकता है, लेकिन इससे मन को संतोष मिलेगा। प्रेम संबंधों में मिठास बनी रहेगी और साथी के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। स्टूडेंट है तो अच्छा प्रदर्शन करेंगे और आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा।
2: लीब्रा तुला राशि।
1: आज प्रगति और समृद्धि के अच्छे संकेत मिल सकते हैं। धन और सुविधाओं में बढ़ोतरी से मन खुश रहेगा। प्रभावशाली लोगों से मुलाकात भविष्य के लिए नए रास्ते खोल सकती है और आपकी जो पॉजिटिव सोच है ना वो हर सिचुएशन में आपको आगे बढ़ाएगी। प्रॉपर्टी खरीदने या निवेश की योजना भी बन सकती है, इसलिए ऑल द बेस्ट।
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
1: धैर्य और समझदारी से काम लेना बेहद जरूरी हो सकता है क्योंकि जल्दबाजी नुकसान करा सकती है। आत्मविश्वास और प्रभाव दोनों बढ़ने वाले हैं। संतान के प्रति आपका सहयोग सराहा जाएगा। जीवन साथी के साथ समय बिताने या छोटी यात्रा का मौका मिले तो आगे बढ़िए, एक ताजगी महसूस होगी और बॉन्ड होगा काफी स्ट्रॉन्ग। सब कुछ सही, नथिंग रॉन्ग।
2: सजिटेरियस धनु राशि।
1: भाई समझदारी और संतुलन के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। व्यापार में फंसा हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना, जिससे राहत महसूस होगी। संतान के करियर को लेकर थोड़ी सी चिंता रह सकती है, लेकिन सही सलाह से रास्ता निकल आएगा। परिवार के बड़े सदस्यों से कोई शुभ समाचार या उपहार मिल सकता है।
2: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
1: धैर्य और शांति बनाए रखें, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जीवन साथी का सहयोग और आपको इमोशनल बैलेंस देगा। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें। वैसे कोई भी खर्च अचानक से आ सकता है, इसलिए बजट संभाल कर रखकर चलना बेहतर होगा।
2: एक्वेरियस कुंभ राशि।
1: भाई आज लाभ के कई अवसर सामने आ सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी से बचना होगा। नौकरी या रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है और अगर आपने कुछ प्लानिंग करके अपना काम आगे बढ़ाया तो सफलता ज्यादा दूर नहीं। किसी नए काम की शुरुआत का विचार मजबूत होगा, लेकिन निवेश सोच समझ कर करें।
2: पाइसेस मीन राशि।
1: भाई कुछ चुनौतियां आपके सामने आ सकती हैं, लेकिन आपकी आस्था और जो पॉजिटिव सोच है आपको संभाल लेगी। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में मन लगेगा, जिससे मानसिक शांति मिल सकती है। सेहत को नजरअंदाज ना करें क्योंकि कहते ना हेल्थ इज वेल्थ, ऐसे नहीं कहते। यदि कर्ज लेने की योजना बना रहे थे तो सिचुएशन आपके पक्ष में बन सकती है।
0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: चलिए दिन की शुरुआत हो गई और शुरुआत में ही अपनी थोड़ी सी मुलाकात हो गई, यही जरूरी है। मॉर्निंग में उन लोगों से मिले जो आपको पॉजिटिव वाइब्स देते हैं और हैप्पी रखते हैं। उनके साथ रहेंगे तो आप भी अपना बेस्ट दे पाएंगे। हर बारी मोटिवेशन मिलना, एक इंस्पिरेशन मिलना और फिर लगता है कि अरे कुछ करना है तो अभी बात के लिए क्यों छोड़े, अगर सीधा जाना है तो गाड़ी क्यों मोड़े। इसलिए जरूर से ज्यादा अपने आप पे टेंशन मत लो, आराम से रहो, कूल ठंडा ठंडा, और साथ साथ में ये जरूरी है कि थोड़ी सी प्लानिंग कर लीजिए, बाकी इतना आराम से निकलेगा। बाकी तो लाइफ के अंदर आउट ऑफ सब्जेक्ट चीजें तो आती रहती हैं, तो इतना टेंशन लेकर होगा भी क्या, है ना। वैसे भी कहते हैं कि द ग्रेटेस्ट टीचर है आपका टाइम, जो सब कुछ वक्त के चलते सिखा देता है। आज अगर एक सिचुएशन काफी डिफिकल्ट लग रही है तो आने वाले टाइम में अपने एक्सपीरियंस के चलते आप कुछ ऐसे सीख पाएंगे कि सोल्यूशन मिल ही जाएगा। कि याद रखिए, अरे साहब जो फैक्ट्री बनाती है ताले वही तो चाबी बनाती है, यानी कि प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी वही।
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.

0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: मॉर्निंग में मूड रिलैक्स हो तो बिल्कुल सब ठीक लगता है. नहीं वैसे लाइफस्टाइल टिप ऑफ द डे है कि माइक्रो ब्रेक्स यही मैजिक क्रिएट करते हैं. भाई ये माइक्रो ब्रेक्स क्या होते हैं? अगर आप डेस्क पर काम करते हैं या फिर मोबाइल और लैपटॉप के सामने ज्यादा वक्त बिताते हैं तो हर 45-60 मिनट के बाद 2-3 मिनट का ब्रेक लेना जरूरी है. यही है माइक्रो ब्रेक्स, छोटे छोटे ब्रेक जो आपको ब्रेक होने से बचा लेगा. थोड़ा सा वॉक करिए, स्ट्रेच करिए, या अगर किसी कंपनी में ऊपर नीचे नीचे ऊपर, इससे पहले कि आप कोई मैसेज भेजें क्यों ना उसको जाकर मिल ही लें. सुन मैं क्या कहना चाहता हूँ. हाँ ये कर लीजिए. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि छोटे छोटे ब्रेक से कंसंट्रेशन इंप्रूव होती है और आई स्ट्रेन कम होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और आप रिफ्रेश फील करते हैं. याद रखिए पूरे दिन लगातार काम करना स्मार्ट वर्किंग नहीं है. स्मार्ट वर्किंग का मतलब है अपनी एनर्जी को भी रिचार्ज करते रहें और सही डायरेक्शन में सही काम पे लगाएं.

0: तो आज एक छोटा सा मंत्रा, और वो एक ही माइक्रो ब्रेक्स, हर घंटे 2-3 मिनट का बैग अपना उठाकर निकलने, थोड़ा सा व्यायाम भी हो जाएगा, एक्सरसाइज हो जाएगी, और सीढ़ियां चढ़ के तो वाह भाई वाह, सीधा ऊपर। मतलब अभी टाइम नहीं आया, लेकिन फिर भी ऊपर से नीचे भी आ सकते हैं, ये भी जरूरी।
1: वेलकम टू RM2 मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो।

0: listening to Radio Masti.
1: चेकआउट की जगह सीधा हमें 10 बजे समाचार की ओर फिर से मिलते हैं. म्यूजिक ऑन रखते हैं. Here's some tips and tricks and beat down से कुछ खबरें. Not to forget your messages.

0: Well, good morning, 15th of June, Monday ka din, time check exactly 10 a.m. स्टूडियो में आ गए थे, उनसे मिलते हैं, जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार।
1: नमस्कार विकास, श्रोताओं को भी नमस्कार। राष्ट्रीय बजट प्रस्तुति के लिए और कुछ ही दिन रह गए हैं। शुक्रवार 19 जून को वित्त मंत्री बजट 2026-2027 प्रस्तुत करेंगे। इस बीच देश के कई आर्थिक ऑपरेटर अपने प्रस्ताव और सुझाव सामने रख रहे हैं। इनमें डेलॉइट मॉरिशस भी शामिल हैं। कंपनी ने वित्तीय क्षेत्र, छोटे एवं मध्यम उद्योगों, डिजिटाइजेशन, व्यावसायिक प्रशिक्षण और ऊर्जा परिवर्तन से संबंधित कई सिफारिशें तैयार की हैं। जलवायु परिवर्तन का असर स्थानीय कृषि उत्पादन पर लगातार पड़ रहा है। सूखा, भारी बारिश और मौसम की अनिश्चितताएं पैदावार के लिए चुनौतियां खड़ी कर रही हैं। विशेषज्ञों के अनुसार टिकाऊ कृषि पद्धतियां अपनाना और किसानों को सहायता प्रदान करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। इन उपायों से स्थानीय उत्पादन की रक्षा करने के साथ साथ देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी। नेशनल यूथ पार्लियामेंट के 5वें संस्करण के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चलाई जा रही है। राष्ट्रीय सभा द्वारा आयोजित इस पहल के तहत 14 से 23 साल की उम्र के नौजवानों को संसदीय कार्य प्रणाली समझने, समसामयिक मुद्दों पर बहस करने तथा लीडरशिप और कम्युनिकेशन क्षेत्रों में अपनी क्षमताएं विकसित करने का मौका मिलेगा। आवेदन भेजने के लिए अगले 22 जून तक की मोहलत है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, अमेरिका और ईरान ने आखिरकार ऐलान किया है कि दोनों पक्ष मध्य पूर्व में संघर्ष पूरी तरह रोकने और हॉर्मुज जलमार्ग खोलने के लिए एक शांति संधि पर सहमत हुए हैं, जिस पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में कहा कि इस दस्तखत के बाद तेल सप्लाई की सभी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। इस दावे के तुरंत बाद वैश्विक मंडी में तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई। उधर यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी ताकतों द्वारा किए गए सिलसिलेवार मिसाइल हमलों में कम से कम 9 लोगों की मौत हुई है और एक ऐतिहासिक कैथीड्रल की इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेनियन प्रधानमंत्री ने इसे देश की ऐतिहासिक विरासत पर गहरा आघात बताया। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। रोबे केनेडी स्ट्रीट रेनियो मोरेल पेचेरा फ्रेमे 81 साल के 81 years old श्री भरद्वाज सुकन, जो लाल सुकन नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे इनकी पत्नी श्रीमती निशी सुकन के मकान रोबे केनेडी स्ट्रीट रेनियो मोरेल पेचेरा फ्रेमे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दाहुची की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टूडे At 11 a.m. Number 9, Impasse Belle Étoile Coromandel-Me. Number 9, Impasse Belle Étoile Coromandel-Me. 84 साल की, 84 years old, Shumati Renganayegi Valaiten. Shumati Renganayegi Valaiten. Pedashi naam Virapen, जो अमला नाम से ज़्यादा जानी जाती थी और जीतू अस्पताल में पूर्व मैट्रन थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 3 बजे लाशा पैलाउ दौंत मोगा रॉयल रोड पे चित्रीविया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वाले देवपद की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 3 PM। नंबर 251 एवेन्यू जॉन केनेडी कौतें वाकवामे। एवेन्यू जॉन केनेडी कौतें वाकवामे 83 साल की, 83 years old, श्रीमती विसाताची रामनारायण। श्रीमती विसाताची रामनारायण, पैदाशी नाम अनामले, जो कानू नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 3:30 बजे के पति श्री श्याम रामनारायण के मकान नंबर 251 एवेन्यू जॉन केनेडी कौतें वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 3:30 PM। शोक में डूबे परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।

0: कमाल की स्मूथ एंट्री इनटू द सेकंड हाफ, 10:10, लेकिन यहाँ पर अभी रुकना मना है। Music continues, 15th of June, मंडे का दिन, नए हफ्ते की शुरुआत, और वही जुड़े हैं जज्बात। भाई पहला वीकेंड वर्ल्ड कप का, इतने सारे मैचेस, इतना सारा एक्शन, वहीं पर आप दे रहे थे इतना सारा रिएक्शन, एंड उसके साथ साथ गानों का सिलसिला अरे चल पड़ा।
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings, Radio Musty.

0: RM to
1: Radio Musti.
0: Fashion tips powered by Halkori Fashion, house of ready-made garments. Welcome to RM2.
1: Musti Mornings, Radio Musti.
2: काफी बार ये जो स्टाइल है ना उसको समझ में काफी मुश्किल लग जाती है। हाँ, लेकिन अगर किसी बॉलीवुड मूवी से कोरिलेट करें तो आइडिया थोड़ा सा और क्लियर होता है ना। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा ये सोचकर एफर्टलेस फैशन की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं। वैसे इस फिल्म का स्टाइल मंत्रा था, सिंपल रखो, क्लासी रखो, लिनन शर्ट्स, रोल अप स्लीव्स और साथ में वेल फिटेड चीनोज, कूल सनग्लासेस और कंफर्टेबल फुटवेयर। भाई बिना ज्यादा मेहनत के स्टाइलिश लगने का परफेक्ट एग्जाम्पल है। आज के लिए टिप यही है कि अपने आउटफिट में एक ही स्टेटमेंट पीस रखिए, चाहे वो स्टाइलिश सनग्लासेस हो, एक स्मार्ट वॉच हो या फिर एक क्रिस्प शर्ट। भाई जब सब कुछ अटेंशन मांगता है तो लुक क्लटर्ड सी लगती है, जब एक चीज शाइन करती है तो पर्सनैलिटी भी शाइन करती है। और हाँ, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, भाई ये हमें ये भी सिखाती है कि सबसे अच्छा फैशन एक्सेसरी कोई ब्रांडेड आइटम नहीं है, बल्कि एक रिलैक्स स्माइल और पॉजिटिव एटीट्यूड है।
0: Fashion Tips was powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments. RM2
1: Radio Musti.

0: जो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: बात करें थोड़ी सी बॉलीवुड की, और अगर हम देखें तो आज की तारीख 15 तारीख ऐसा कुछ है नहीं, जो पुरानी पिक्चरें चल रही हैं जो 12 तारीख को रिलीज हुई थी वही हैं बड़े पर्दे पर। बंदर जिसमें बॉबी देओल एंड सब आजाद, वहीं पर है जवानी तो इश्क होना है वरुण धवन एंड पूजा हेगड़े, साथ में मृणाल ठाकुर। मैं वापस आऊँगा, ये इम्तियाज़ अली की मूवी है और दिलजीत दोसांझ, नसरुद्दीन शाह, शर्वरी और हॉन्टेड, जिसके अंदर माक्षे चक्रवर्ती वापस लौट कर आए। वैसे गवर्नर भी रिलीज हुई जिसमें है मनोज बाजपेयी, भारत भाग्य विधाता जिसमें है कंगना रनौत और नर्मदा स्टोरी, हीर सारा, ये सब सारी बातें हुई। लेकिन अब बड़ी पिक्चरें आने वाली हैं और ये होगा 19 तारीख को, यानी कि एक हफ्ते के बाद। और वहीं पर वेलकम टू द जंगल जो ऑल सेट है अगले हफ्ते आने के लिए, और साथ में आइए कॉकटेल टू, तो बस दोनों के बीच में काफ़ी कमाल होगा। वैसे वेलकम टू द जंगल आने वाली 26 को और 19 को रिलीज होगी कॉकटेल टू, दोनों को अपना टाइम तो मिलेगा। लेकिन वेलकम टू द जंगल भाई, इसने पहले रिकॉर्ड बना दिया, सुपर हिट वेलकम फ्रेंचाइजी है और इसके अंदर बहुत सारे

0: एक्टर्स तगड़ी स्टार कास्ट है, अक्षय कुमार के अलावा परेश रावल, सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, जॉनी लीवर, जैकी श्रॉफ, राजपाल यादव, रवीना टंडन, सुनील शेट्टी, लारा दत्ता और ऐसे बहुत सारे नाम हैं। और आपको बताएं इस मूवी ने एक रिकॉर्ड बना दिया, और यही नहीं आपको बताएं कि जहां पर ट्रेलर क्रॉस कर गया है पता नहीं कितने मिलियंस, वहीं पर वेलकम टू द जंगल इसके लंबे समय बाद वापसी आने पर लोग बड़े खुश हो गए हैं। देखना चाहते हैं इनके बीच में क्या केमिस्ट्री होगी। ट्रेलर से पता चलता है कि इंडिया की पहली 2000 करोड़ फेक फिल्म के बारे में है। देखते हैं क्या होता है। फिल्म के ट्रेलर में परेश रावल भी टीम को समझाते नजर आ रहे हैं कि उनकी फिल्म का नाम वेलकम टू जंगल है और फिल्म आनी वाली है, कुछ कमाल करने वाली है। चलिए साहब, भविष्यवाणी कितनी तगड़ी बनती है बताएंगे आपको।
1: वेलकम टू RM2 मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: चलिए साहब, जब बात करते हैं हम लाइफस्टाइल की, तो जिंदगी में कुछ चीजें होती हैं जो अपनानी चाहिए और कुछ आदतें छुड़वानी चाहिए। बेस्ट रिसर्च बताती है कि सुबह उठते ही मोबाइल नोटिफिकेशंस, ईमेल और सोशल मीडिया चेक करने से दिमाग इंस्टेंटली रिएक्टिव मोड में चला जाता है। इससे स्ट्रेस लेवल बढ़ सकते हैं और पूरे दिन फोकस कम हो सकता है। सही मानिए, अरे एक्सपर्ट्स हमारे जो काम कर रहे हैं इसके ऊपर, तो बस कोशिश कीजिए कि उठने के बाद पहले 20-30 मिनट अपने लिए रखें, एक ग्लास पानी पीजिए, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करिए, फ्रेश हवा लीजिए और अपने दिन की प्लानिंग करिए। आप नोटिस करेंगे कि आपका मूड ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा और साथ में कंसंट्रेशन ये बेहतर होगी और दिन की शुरुआत ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से होगी। याद रखिए, सुबह का पहला कुछ मिनट दिन की टोन को सेट कर देता है और शुरुआत शांत और पॉजिटिव होगी तो चैलेंजेस को हैंडल करना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। सो फोन थोड़ा वेट कर सकता है, लेकिन आप वेट मत कीजिए इस मंत्र को जिंदगी में उतारने के लिए।
0: वेलकम टू RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो।

मुश्किल होता ना कभी कभी बोलना, लेकिन मौका मिला ना तो बोल दो वेरी सॉरी। अगर कुछ हो गया तो अरे डिस्टेंस कम करो और गम को भी कम करो। पान में क्या था?

अच्छा कोइंसिडेंस कमाल का, इससे पहले गाना चल रहा था वेरी सॉरी लेकिन बदतमीज दिल माने ना, अरे प्यार का फॉर्मूला जाने ना, इसे समझाने निकल पड़ो और साथ को भैया बता दो। अभी आने वाला प्रोग्राम फिर से वापस, इट्स गोना बी फ्रॉम 11 टू 12, इट्स योर मस्ट मॉर्निंग शो। थोड़ी देर में संक्षिप्त समाचार।

0: 11 बज चुके हैं, स्टूडियो में आ गए हैं आदित्य, उनसे मिलते हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार विकास, श्रोताओं को भी नमस्कार। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अफसर आज फिर से लातूकेनी का दौरा करेंगे। पिछले चार दिनों से वे इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इलाके से गंदे पानी की पंपिंग जारी

0: रहे और GECC लिमिटेड कंपनी प्रभावित क्षेत्र से मृत मछलियां हटाए। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जनरल मैनेजर नवीन जवाहिर के अनुसार 6000 लीटर की क्षमता वाले 3 सैनिटेशन ट्रकों ने 50 से ज़्यादा चक्कर लगाए हैं और इसके अतिरिक्त GECC लिमिटेड की लोरियों के भी 106 चक्कर हुए हैं। असल में एक सोलर फार्म पर योजना के सिलसिले में पिछले 11 जून को GECC लिमिटेड द्वारा चलाए जा रहे खुदाई कार्यों के दौरान वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी की एक पाइप क्षतिग्रस्त हुई। इस पाइपलाइन के जरिए मुख्य रूप से इंडस्ट्रियल जोन से गंदा पानी जाता है। पाइपलाइन की मरम्मत गुरुवार शाम तक कर दी गई थी। GECC लिमिटेड को इस क्षेत्र में काम करने के लिए अब अपने सभी परमिट्स प्रस्तुत करने होंगे। सोशल इंटीग्रेशन मंत्रालय ने बजट 2026-2027 के लिए केयरर्स अलाउंस में वृद्धि, घरों और रेजिडेंशियल केयर होम्स के केयरर्स के पेशेवर प्रशिक्षण के लिए एक प्रारंभिक फंड की स्थापना और 85 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए घर पर चिकित्सा सेवाओं के विस्तार जैसे प्रस्ताव दिए हैं। ये घोषणा आज 15 जून को बुजुर्गों पर दुर्व्यवहार के खिलाफ जागरूकता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के संदर्भ में सोशल इंटीग्रेशन मंत्री अशोक सुबो ने अपने संदेश में की। उन्होंने बुजुर्गों की बेहतर सुरक्षा के लिए बदलते सामाजिक परिप्रेक्ष्य में मौजूदा सहायता मैकेनिज्म्स पर फिर से गौर करने और नए कानूनी ढांचे स्थापित करने की बात कही। उन्होंने मॉरिशन समाज के विकास में बुजुर्गों के महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनका आभार प्रकट किया। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका और ईरान ने ऐलान किया है कि दोनों पक्ष मध्य पूर्व में संघर्ष पूरी तरह रोकने और हॉर्मुज जलमार्ग खोलने के लिए एक शांति संधि पर सहमत हुए हैं, जिस पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में कहा कि इस दस्तखत के बाद तेल सप्लाई की सभी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। इस दावे के तुरंत बाद वैश्विक मंडी में तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई। उधर यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी ताकतों द्वारा किए गए सिलसिलेवार मिसाइल हमलों में कम से कम 9 लोगों की मौत हुई है और एक ऐतिहासिक कैथेड्रल को की इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेनियन प्रधानमंत्री ने इसे देश की ऐतिहासिक विरासत पर गहरा आघात बताया। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, आगे दीजिए, नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: कहानी चलती जाएगी, लेकिन जिंदगी में ये बाहर तभी आएगी जब आप साथ में सोच लेंगे कि कुछ एक्स्ट्रा करना है, कुछ स्पेशल, हर दिन कुछ नया। इतने सारे एक्सपीरियंसेस, और सोचिए साहब, हम स्टूडियो में बैठे बैठे पहुंचते इतने सारे लोगों के पास, लेकिन जब वो खुद हमारे पास आ जाए तो क्या बात है। और यहाँ पर एक स्कूल है जो है माउंट व्यू स्कूल, वहां से छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे बच्चे हैं। लेट मी से हेलो। हम भी अगर बच्चे होते, क्या बात होती ना। ये चेहरे पर मुस्कान है जो इनोसेंस है, बहुत ही कमाल की। और एक और छोटा सा प्यारा बच्चा हमारे साथ है। Hey, hi, what's your name?
3: My name is Sufyan and I'm from Mabu School.
2: अरे क्या बात है, टीचर ने जो बताया वो फटाफट बोल दिया बच्चे ने। Oh, very good. So I'm told that you do listen to some Bollywood songs, yeah?
3: Yes.
2: Yeah, all right. So any song you can remember? No. Not really. Hey, all your friends are listening to you right now and on air. All those back at home are probably traveling. So you want to pass on a message from your school or say hello to your friends? You want to say something?
3: Yeah.
2: Ali, tell me.
3: I love my friends and I love this place. I hope everyone enjoy this.
2: Kya baat hai. मेरे को एक टाइम पे लगा कि आई लव माय फैंस। ओ शैन, यू ऑलरेडी गॉट फैंस। ऑलराइट, एंजॉय द म्यूजिक, एंजॉय। सभी बच्चा पार्टी के लिए बम बम भोले, चलो संग होले।

0: चकरकचीचाचो चकलोरम गंडो वंडो लकरकटम अक्को टक्को इडिगिडिगिडिगो इडिपाय विडिपाय चिकिचकचो गिलिगिलिमल सुलुसुलुमल मकनक हुकुबुकुरे टुकुबुकुरे चकलक बिक्को चिक्को सिलिसिलिसिलिगो बगडदुम चकडदुम चिकिचकचो
1: Shh.

0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: जैसे आप कुछ मैसेजेस हो रहे हैं और यहाँ पर कहते हैं प्लीज एक प्यार सा गाना फॉर विजयन. जी हाँ, जरूर जरूर उनके लिए देते हैं. साथ में हैं वानेसेन और विजय हैं और साथ में विनेसेन एंड सभी पुलिस ऑफिसर जो भी काम कर रहे हैं मेबर्ग में, उन सभी के लिए अगला गाना. जी हाँ, जरूर जरूर जरूर उन सभी के लिए.

0: यार। और जाना जी, अरे फ्लैग से साथ में जनीता श्रेष्ठा अंशनी सिल्विया युवी कृषि और सभी फ्रेंड्स के लिए, और साथ में हैप्पी बर्थडे टू देवीना जो मोदाल बेस हैं, 6 ईयर्स के हो गए हैं। नमस्ते जी पूरी टीम की तरफ से। पति देव हैं, सुनील बेटा है, जबिन अनुषा जनिष्ठा नितेश नितेश एंड लवली नाथिन आरवी आरव रानी तुलसी दौराज एंड बिहारी फैमिली दुबागी फैमिली। ये प्यासा गाना स्पेशली फॉर ऑल इन द मार्केट मेबर्ग में है, और माधवी अनिल और साथ में उनके पूरे दोस्त हैं, माया है, शहजाद अविशा अविश रीना वीरू धर्म साथ में अमाद आलूदा दे रहे हैं। मस्त खाना पीने के साथ साथ म्यूजिक चल रहा है, बहुत ही कमाल का। जानू जी हाँ जी, आशा जी हैं और कहते हैं बस टीवी शो देख रहे थे बच्चों का और वो था स्टूडेंट ऑफ द ईयर। अरे हाँ, थैंक यू सो मच। पूरी टीम को पूरी फैमिली को बहुत सारी शुभकामनाएं और वहीं पर गुड मॉर्निंग रेडियो मस्ती प्लीज अब्दुल इंसारा बानो के लिए, जी हाँ जरूर जरूर। और वहीं पर जीरा जी अगर आप सुन रही हैं, आपको भी हेलो इटली। अरे साहब अभी वर्ल्ड कप में तो नहीं पहुँच पाए, लेकिन आप वर्ल्ड हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी लिसनर्स उन सभी को हेलो। साथ में अंतेश भी, उन्होंने कहा हार्ड लक टू स्विट्जरलैंड, देखते हैं अब आने वाले मैचेस में क्या कमाल करते हैं, लेकिन अभी तक वो आशा की किरण अभी बुझी नहीं है। सो कीप द फीलिंग ऑन, इग्निशन ऑन, फ्लेम ऑन।
1: वेलकम टू RM2 मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: जी आजकल बहुत सारी शादियां हो रही हैं और ऐसा भी है कि अपने काम में काम करते करते बहुत सारी प्लानिंग होती है कि शादी में जाना है, कुछ करना है। लेकिन अच्छी बात यह कि अगर आप सोचें कि पहले एक लिस्ट बना लीजिए कि कौन कौन जाने वाला है, कार पूलिंग से लेकर साथ में मिलकर गिफ्ट देने की। अच्छा, यहाँ पर एक मैसेज आया है और वेद है, उन्होंने कहा कि हम सब जा रहे हैं एक शादी अटेंड करने के लिए, बीच में छुट्टी ली है। ओहो, मेरे ख्याल से ये रिलायंस हम जरूर करते हैं कि जब हम काम करते हैं कहीं पर, वही हमारी एक सेकंड फैमिली बन जाती है और उसमें जब खुशी की बातें होती हैं, इवन गम होते हैं, तो उसको गम करने के लिए पूरी फैमिली एक साथ खड़ी ही रहती है। तो अभी जब मस्ती का टाइम है और साथ है सेलिब्रेशन का, तो साथ में होकर उसको और बढ़ाना आपके फायदे में। चादरों खुशियाँ खुशियाँ, सो मिल बांट कर आप कुछ गिफ्ट खरीद सकते हैं, आसानी हो जाएगी और साथ साथ में एक बड़ी चीज़ आप खरीद पाएंगे, हर कोई कंट्रीब्यूट करेगा और एज अ फैमिली आप पहुँच कर उन्हें कहेंगे सरप्राइज। यहाँ शादी वाले बहुत सारे मौसम आ रहे हैं और वहीं पर अगर आपने भी शादी करने की प्लानिंग कर ली है और होने वाले कुछ महीनों के अंदर, तो ये ठंड का मौसम बहुत ही फेवरेट होता है ना लोगों का। हाँ, लेकिन यही हमारी हनीमून डेस्टिनेशन है भाई, मॉरिशस को तो काफ़ी लोग मानते हैं और यहीं से हम निकल पड़ते हैं बाहर की तरफ। करें तो क्या करें, कहीं बाहर जाना है, बीच में थोड़ा प्लान बनाना है, लेकिन अभी थोड़ा सोच समझ कर, जहाँ पर लोग अभी अपने बजट पर थोड़ा ध्यान दे रहे हैं और सोचें कि अब क्या होगा। वैसे बजट भी आ ही रहा है तो उसके बारे में भी जान लेंगे और फिर अपनी प्लानिंग कर ही लेंगे। चल, टू ऑल द वंस हु आर कम्यूटिंग इन द मोमेंट, यहाँ से वहाँ जा रहे हैं आपके लिए बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक, और अगर आप भी शामिल होना चाहते हैं नंबर में वही 5499-1294।
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio.

0: एक ऐसी मूवी आई जिसने बॉलीवुड की जो बॉलीवुड की बायोलॉजी है और केमिस्ट्री, अरे सब कुछ चेंज कर दिया ना। यानी इंसान सोचता रहता है कि फॉर्मूला वही अपना है जो चलता जाए, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हुई। लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर लिसनिंग टू आरएम टू और थोड़ी देर में चलने वाले कुछ और गानों की तरफ, लेकिन अभी वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। और कहते हैं कि प्लीज नावेद के अगला गाना चला दीजिए, और ये है अमोही से प्रवीण। बहुत सारी शुभकामनाएं।
1: Oh my god, devine qui est de retour chez McDonald's.
2: Hey, calme-toi un peu. On connaît qui chez McDonald's?

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: देखिए आजकल की जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है उनके बारे में सोचें तो वो है ट्रेन योर ब्रेन. ये करना आजकल बहुत जरूरी है. इतने सारे गैजेट्स, इतने सारे स्क्रीन्स एंड फनी नोटिफिकेशंस. हाँ तो आपके हाथ में ना, कब आप नोटिफिकेशन को आने देते हैं और कब जाने देते हैं. अब भाई अगर आपने सोच

0: कि अगले दो घंटे के लिए नॉट टू बी डिस्टर्ब, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, कोई फोन करे और रिपीटेडली फोन करे तो उसकी ऑप्शन होती है कि दो बारी रिपीटेड फोन कर लिया तो तीसरी बारी फोन लग जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो फोकस मोड आ गए ना बहुत सारे इस टाइम पर, ये करना थोड़ा फ्लेक्सिबल होना जरूरी है, लेकिन फिर भी यू नीड टू नो कि किस टाइम पर क्या करना, नहीं तो यार वो देखते देखते वीडियो कब टाइम निकल गया पता नहीं चला। ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए ना। यस, इट्स ऑलवेज नाइस टू बी कनेक्टेड अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, लेकिन काम के टाइम पर हाँ ये जरूरी है। आजकल तो लोग यही पता लगा देते हैं कि हाँ यही सबसे मेहनती लड़का है। क्यों क्यों क्यों? अरे भाई इसलिए क्योंकि इसकी बैटरी है 80%, चार्ज नहीं की, मतलब कि फोन नहीं देखा, मैसेज चेक नहीं किए और वीडियो से चलाए नहीं। बाय गॉड,
1: वेलकम टू RM2 मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: You're listening to RM2, a Radio Masti.
1: ऐसे हमेशा खुश रहें और ऐसे पॉजिटिव रहें, जिंदगी के हर कदम पर उस मोड को समझें जो आपको किसी नई दिशा में ले जा सकती है, राइट या लेफ्ट।

0: 12 बज चुके हैं, अभी के लिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपके साथ अदिति। नमस्कार आपको।
1: नमस्कार मनीषमा, श्रोताओं को भी नमस्कार। गैल सदाल हत्या मामले में दो और

0: संदिग्धों दोगिन यान कान्युएन और उसके बेटे शहाद यान कान्युएन को हिरासत में लिया गया है। शनिवार को रेजिडेंस लाकिया में भड़के एक हिंसक झगड़े में 28 वर्षीय गायल सदाल की मौत हुई थी। उस पर चाकू से हमला किया गया था। लिमाओयान में हिल्स व्यू रिसेप्शन हॉल के पास शनिवार रात को 54 वर्षीय एक महिला रीता सिबरत की मौत एक दुर्घटना में हुई। उसके बेटे की लॉरी एक ढलान पर खड़ी थी जब वो अचानक चल पड़ी और महिला से जा टकराई। इस मामले में जांच शुरू की गई है और लॉरी का तकनीकी मुआयना भी किया जाएगा ये जानने के लिए कि अगर उसमें कोई तकनीकी खराबी पाई जा रही थी। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी ताकतों द्वारा किए गए सिलसिलेवार मिसाइल हमलों में कम से कम 9 लोगों की मौत हुई है और एक ऐतिहासिक कैथेड्रल को की इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेनियन प्रधानमंत्री ने इसे देश की ऐतिहासिक विरासत का गहरा आघात बताया। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। नंबर 61 फ्लोरियाल रोड वाकवा में, नंबर 61 फ्लोरियाल रोड वाकवा में 89 साल की 89 years old की लेडी सारा मुलन जो हामिद मुलन की बीवी थी इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज दिन के 3:30 बजे इनके मकान नंबर 61 फ्लोरियाल रोड वाकवा से उठाकर दफनाने के लिए रिश्तेया का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 3:30 PM। शोक में डूबे इस परिवार के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: Retro Rhythm
2: RM2 Radio Musti.
1: You're listening to Radio Musti.

0: Retro Rhythm.
1: RM2 Radio Musti. Radio Musti.
0: Retro Rhythm.
2: बजकर 10 मिनट होने को है. गुड आफ्टरनून. वेलकम टू योर रेट्रो रिदम. यहाँ पर कुछ पुराने गाने, कुछ 90s के सॉन्ग्स, कुछ 80s के सॉन्ग्स चुन कर लाए हैं. आपके खिदमत में हाजिर हूँ मैं मनीषमा और प्यारी प्यारी गीतों के साथ इस आफ्टरनून को और भी रंगीन बना लेते हैं कुछ प्यार भरे गानों के साथ. यहाँ पर आपके मैसेजेस और आपका साथ जो होता है तो हमारे जो दिन है खूबसूरत ही बन जाते हैं. वैसे थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज शेयरिंग योर ब्लेसिंग एंड लव एंड एवरीथिंग लेडीज एंड जेंटलमैन. यहाँ पर जुड़े रहने के लिए दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मैं. वेलकम अभी के लिए टू योर रेट्रो रिदम.
0: रेट्रो रिदम
1: RM2 रेडियो मस्ती.

0: कर ले।
1: जैसे आपके जिंदगी में प्यार ही प्यार हो और बाहर ही बाहर हो। 12:24 हुए हैं। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए सिलसिला मूवी से लिया गया ये गाना। वैसे कुछ 90 सॉन्ग्स आ रहे हैं आपके लिए, अभी के लिए ये गाना एंजॉय कीजिएगा।
2: Retro Rhythm. RM2 Radio Musti.

0: कुमार सानू की आवाज में, अलका याग्निक की आवाज में। वैसे बहुत सारे लोग अभी पसंद कर रहे हैं हमारी सिलेक्शन को। वैसे बोन अपची गोस आउट टू ऑल दोस जो कि अभी खाना खा रहे हैं। वैसे साधु हारी हम आपका टिल टू बी
1: रेट्रो रिदम
2: वॉरेन टू Radio Musti.
0: Chali, on the occasion of Adi ka Janeev ceremony from Auntie Indra, Shobha, Kavita, Sangeeta and Mom Hemamun, Papa, Subhash and all family wishes you all the best in your future endeavors. Don't forget, please, dedicate karna Kajal, Simla, Brinda ke naam bhi.

0: तमन्ना की तमन्ना है, वैसे आपके दिल की तमन्ना भी हम तक पहुंचाइएगा ऑन दिस नंबर 5491294 पर. हेलो जी, वाव लवली सॉन्ग्स. मैं यार बिना चैन का रही, माय फेवरेट दिस वन आल्सो, देखा एक ख्वाब तो क्या बात है. यही तो हम करना चाहते हैं ना कि आप जैसे पागल हो जाए प्लेलिस्ट के साथ. वैसे कोई भी गीत हमारे लिए भी चला दीजिएगा. जीना जो सुरी के नाम अगला गीत हम बेशक चलाते हैं. दिया मनीष मांझी, कैन यू प्लीज डेडिकेट द नेक्स्ट ब्यूटिफुल सॉन्ग फॉर माय ब्रदर अखिलेश गंगादीन नाउ पॉलो. आज वो अपना जन्मदिन मना रहे हैं. लट्स ऑफ विशेस कमिंग फ्रॉम शशि गंगादीन एंड फैमिली इज ऑल्सो वाइफ है माधवी सोंथानव एंड डॉटर दिनेशा.
1: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती.
0: चलिए जी, यहाँ पर भाई महन फ्रॉम पालमा रिक्वेस्टिंग द सॉन्ग, ब्यूटिफुल सॉन्ग या. चलिए जी, लता जी की आवाज में बहुत सारे गाने आ रहे हैं आपके लिए. थैंक यू. और साथ ही डेडिकेट करना चाहते हैं अगला गाना रेडियो मस्ती टीम, दिस वन फॉर अब्दुल एंड सैरा बानू.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: Time check. Din ke ek baja hai. सुनते हैं अभी के लिए संक्षिप्त समाचार आपके साथ याचना। नमस्कार आपको।
4: नमस्कार मनीष मां, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। शनिवार रात को मोताइलों के पास लिमारियान के हिल्स व्यू रिसेप्शन हॉल में दर्द के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ। 54 साल की रीता सिवारत की मौत एक ट्रक से कुचल जाने से हुई। ये ट्रक उसके बेटे युधिष सिवारत की थी, जो एक ढलान पर पार्क की गई थी और अचानक चल पड़ी। तकनीकी खराबी की जाँच का पता लगाने के लिए एक्सपर्ट्स ट्रक का परीक्षण करेंगे। घायल सदाल हत्याकांड के सिलसिले में दो अन्य संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें दोहिन यान कान्युएन और उनका बेटा शहाद यान कान्युएन शामिल हैं। दोनों पर इस सोमवार को हत्या के आरोप पर अदालत में पेश किया जाएगा। और तलब है कि शनिवार शाम रेजिडेंस लाक्या की रॉबर्ट स्कॉट गली पर हुई एक हिंसक झड़प में 28 वर्षीय घायल सदाल की मौत हो गई। चाकू से किए गए गंभीर हमले में लगी चोटों के कारण उनकी जान गई। पुलिस द्वारा जुटाई गई शुरुआती जानकारी के अनुसार गुरुवार को दोहिन यान कान्युएन और घायल सदाल के बीच तीखी बहस हुई थी। इस हमले के तीसरे संदिग्ध मोहम्मद शेख बुलाकी, जो दोहिन यान कान्युएन के सबसे छोटे बेटे और झड़प के दौरान घायल भी हुए थे, फिलहाल पोटलुई के जितू अस्पताल में पुलिस निगरानी में भर्ती है। देश में पहली हिंदी संस्था तिलक विद्यालय अपनी शताब्दी मना रहा है। उसकी स्थापना को 100 साल हो गए। इस अवसर पर कल मोताइलोंग में हिंदी प्रचारनी सभा की सीट पर लोकमान्य तिलक की प्रतिमा का अनावरण किया गया। भारतीय मूल के लोकमान्य तिलक ने देश में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस समारोह में गणराज्य के राष्ट्रपति सहित कई अन्य मंत्री, सांसद और भारत से आए

0: डेलीगेशन के सदस्य शामिल रहे। वैश्विक स्तर पर अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर सहमति बन गई है। इस समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर शुक्रवार 19 जून को स्विट्जरलैंड में किए जाने की उम्मीद है। इसके बाद दोनों पक्ष स्थायी और व्यापक समझौते तक पहुंचने के लिए आगे की वार्ता जारी रखेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि ईरान के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोल दिया जाएगा। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि ईरानी बंदरगाहों पर लगाई गई नाकाबंदी हटा दी जाएगी। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। नंबर 73 इंक अमान स्ट्रीट रोजिल में नब्बे साल के 90 ईयर्स ओल्ड के जनाब जनाब सामान याकूब जो समाह के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और पूर्व सर्जेंट ऑफ पुलिस थे, इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज सुपहर 3 बजे उनके मकान नंबर 73 इंकियामान स्ट्रीट रोजिल से उठाकर दफनाने के लिए सहमौतें का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे 8:30 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. Retro Rhythm.
2: RM2, Radio Mustache.

0: welcome to Radio Masti.
1: चलिए जी, यहाँ पर गुड आफ्टरनून. वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, डेडिकेटिंग इट फॉर यू, फॉर माय सिस्टर्स अनीता, अमृता एंड माला, एंड मेरे भाई है सुनील, धीरज एंड विशाल फ्रॉम हस्बैंड राज, एंड फॉर यू आल्सो माया ऑफ मेबर्ग से साथ भारी है यहाँ पर कविता जी, जो इन्जॉय करी हमारे सिलेक्शन को, हर एक गाने को फैंटास्टिक कर रही है. क्या बात है यहाँ पर. गुड आफ्टरनून जाना बोल रही हूँ मैं फ्लैग से. लव यू, लव द सिलेक्शन. ये तो हम चाहते हैं कि आप पसंद करें और इन्जॉय भी करें हमारे साथ. यूँ ही बस साथ में बातें, यहाँ पर 2 बजे तक हमारे साथ रहेगा.

0: यहाँ पर एक गाना तीसरी मंजिल से. ओके जी, फॉर माई ग्रैंड चिल्ड्रन, तनवीर है, तेजल, आयेशा एंड रैना एंड वनीशा, वर्षा, तरसा एंड अश्विन, नवीन, अनिष्ठा, गंगा विसन परिवार की तरफ से भी मैसेज आया है.
1: नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसा.
2: पुराने गाने सिर्फ सुर और अल्फाज नहीं होते.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: You're listening to RN2, a radio musty.
1: चलिए जी, यूं ही साथ निभाते रहिएगा. यहाँ पर 20 मिनट बाकी हमारा आपका साथ का. एसबी वाले सुपरमैन उनकी आवाज में बस आपसे मिलने की यूं ही तमन्ना थी. आगे हम यहाँ पर. Have a wonderful afternoon out there.

0: You're listening to RM2, a Radio Masti.
1: इंसानों की आवाज में पहली पहली बार जब प्यार किसी से होता है, वैसे ये है टाइटल ऑफ द मूवी इटसेल्फ एंड दिस वन डेडिकेटिंग टू ऑल द लवबर्ड्स ट्यूनिंग टू आरएम2 रेडियो मस्ती। इस आफ्टरनून में जो कोई भी हमारे साथ बाहर है, बस प्यार में है।

जाते हैं। अभी के लिए जाने का समय हो चला है, 1:55 हो चुके हैं। अभी के लिए हमारा और आपका साथ यही तक था। हम आप सभी को हॉलीवुड देना चाहते हैं गुरुवार को सुबह के 7 से 9 बजे के बीच, अलग प्लेलिस्ट, अलग मजा और अलग वाइब लेकर। वैसे मॉर्निंग का शो तो आप तो जानते हैं, फुल ऑफ एनर्जी। अभी के लिए यहाँ पर हमारे जो शो है समाप्त होता है, एंड पर ही लेकर आ रही है वापस आपके लिए बॉम्बे टॉकीज़। RM2 Radio Musti.

तो ये गाना ऋषि बिडेसिया उसके मूडी गर्लफ्रेंड के नाम ही कहना चाहते हैं बुडापेस्ट रोशनी मिटको अमिता लॉन्ग ड्राइव एंड बेस्ट सिलेक्शन यहाँ पर रॉकिंग थैंक यू सो मच.

0: welcome to Radio Masti.
1: The time is brought to you by McDonald's.
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
0: Radio Masti.
3: North. South.
0: 103.5.
3: East. West.
0: 96.4.
3: Center.
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
5: Time check 2 PM. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है याचना, आपको नमस्कार।
6: नमस्कार परी, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। शनिवार रात को मुतालों के पास दिमागियान के हिल्स व्यू रिसेप्शन हॉल में एक दर्दनाक हादसा पेश आया। 54 साल की रीता सिबारत की मौत एक ट्रक से कुचले जाने से हुई। ये ट्रक उसके बेटे युधिश सिबारत की थी जो एक ढलान पर पार्क की गई थी और अचानक चल पड़ी। तकनीकी खराबी का पता लगाने के लिए एक्सपर्ट्स ट्रक का परीक्षण करेंगे। घायल सादाल की मौत के सिलसिले में 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें दोहिनियान कान्यान और उनका बेटा शाहदियान कान्यान शामिल हैं। दोनों पर इस सोमवार को हत्या के आरोप में उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। और तलब है कि शनिवार शाम रेजिडेंस लाकुआ की होब्यस्तत गली पर हुई झड़प में 28 साल के घायल सादाल की मौत हो गई। चाकू से उस पर वार किया गया था। पुलिस द्वारा जुटाई गई जानकारी के अनुसार गुरुवार को दोहिनियान कान्यान और घायल सादाल के बीच बहस हुई थी। इस मामले के तीसरे संदिग्ध मोहम्मद शेख बुलाकी, जो दोहिनियान कान्यान के सबसे छोटे बेटे और झड़प के दौरान घायल हुए, फिलहाल पोटलवी के जितु अस्पताल में पुलिस निगरानी में भर्ती हैं। देश में पहली हिंदी संस्था तिलक विद्यालय अपनी शताब्दी मना रहा है, यानी उसकी स्थापना के 100 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर कोमोतालोंग में हिंदी प्रचारनी सभा की सीट पर लोकमान्य तिलक की प्रतिमा का अनावरण किया गया। भारतीय मूल के लोकमान्य तिलक ने देश में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस समारोह में गणराज्य के राष्ट्रपति, कई अन्य मंत्री, सांसद

0: और भारत से आए डेलीगेशन के सदस्य शामिल रहे। विदेश में वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफिकेशंस का दौर जारी है। नेदरलैंड्स और जापान के बीच खेला गया मैच आज ड्रॉ रहा 2-2। स्वीडन का सामना हुआ ट्यूनिशिया से। इस मैच में ट्यूनिशिया की भारी हार हुई। स्कोर रहा स्वीडन 5 और ट्यूनिशिया 2। ग्रुप ई में आइवरी कोस्ट ने इक्वेडर को हराया 1-0। आज रात को लोगों की नज़र एक और रोमांचक मैच पर होगी। ग्रुप एच में स्पेन खेलेगा काबो वेर्डे के खिलाफ और रात 11 बजे बेल्जियम का सामना होगा इजिप्ट से। ये रही अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। नंबर 73 इंक्यामान स्ट्रीट रोजिल में, नंबर 73 इंक्यामान स्ट्रीट रोजिल में 90 साल के 90 इयर्स ओल्ड के श्री समा याकूब, श्री समा याकूब जो समा के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और पूर्व सर्जेंट ऑफ पुलिस थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनका जनाजा शाम 3 बजे उनके मकान नंबर 73 इंक्यामान स्ट्रीट रोजिल से उठाकर दफनाने के लिए सैमौतें का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: More music in the mix.
2: Aaj Azadi hai.
3: Bombay Talkies. Radio Musti.
4: Radio Musti.

तो चलिए दोस्तों, बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना, कृति सनन की मोस्ट अवेटेड, मच अवेटेड रोमांटिक ड्रामा जो है कॉकटेल 2 जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने को है और फिल्म का ट्रेलर पहले ही रिलीज किया जा चुका है। फैंस अब इस तिकड़ी को स्क्रीन पर देखने के लिए एकदम एक्साइटेड है।

और इसी बीच अब फिल्म रिलीज हो पाती इससे पहले मूवी का फर्स्ट रिव्यू भी सामने आ गया है। दरअसल रश्मिका मंदाना ने बीते दिन सोशल मीडिया पर लाइव चिट चैट की और इस दौरान उन्होंने फैंस के मसालेदार जो सवाल थे उनका दिलचस्प जवाब भी दिया। इसी बीच रश्मिका मंदाना ने कॉकटेल 2 को लेकर भी काफी कुछ शेयर किया और बताया कि कॉकटेल का सीक्वल है लेकिन सिर्फ टाइटल कहानी से नहीं, क्योंकि जो टाइटल है बस वही लिया गया है, बाकी कहानी जो है वो एकदम डिफरेंट है। इसके साथ एक्ट्रेस ने फिल्म का फर्स्ट रिव्यू भी दिया है और इसमें क्या कुछ खास देखने को मिलने वाला है इसके बारे में भी उन्होंने कुछ बातें शेयर की है। तो रश्मिका मंदाना ने लाइव चिट चैट में एक फैन से उनसे सवाल पर जवाब दिया, जहां पर फैन ने उनसे पूछा कि कॉकटेल को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे, जिस पर रश्मिका का जवाब था कि प्यार, हार्ट ब्रेक, ड्रामा, डांस और फ्रेंडशिप, सब कुछ आपको मिलने वाला है और यही तो एक कॉकटेल बनता है और बिल्कुल यही आपको देखने मिलेगा इन कॉकटेल 2। और इनकी इस बात से ये बात जाहिर हो जाती है कि इस फिल्म में रोमांस, ड्रामा, हार्ट ब्रेक, फ्रेंडशिप, सब कुछ मिलने वाला है और काफी हाइप चल रहा है इस फिल्म को लेकर, जहां पर हम देखने वाले हैं शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना एंड कृति सनन को एक साथ। साथ ही इसी फिल्म का एक गाना है जो आजकल काफी पॉपुलर हो रहा है, दैट्स माशो का, सो दिस वन गोज आउट फॉर यू ऑल।

0: जो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: वेल फ्रेंड्स, इट्स 248. आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं. यहाँ पर बी टाउन की लेटेस्ट अपडेट्स तो आप तक पहुंचा रहे हैं. एंड वी ऑल्सो हैव आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस. सो हैप्पी वाला बर्थडे टू देविना देवाज. आप है मोडाल बे से 60 इयर्स की हुई हैं. विशेस लेकर आए हैं पति सुनील, बेटा जेविन, साथ में है अनुषा, जनिष्ठा, नितेश, साथ में लवली, नातिन है आरवी, आरव है रानी, और सभी तुलसी, दगाज एंड बिहारी और दुबारी परिवार लेकर आए हैं स्पेशल विशेस ऑन योर स्पेशल डे. सो हैप्पी हैप्पी बर्थडे. आपको 60th बर्थडे है, सो वील मेक इट स्पेशल आपके लिए. एंड वेल, यहाँ पर कहते हैं दैट गानों को सुनकर मूड हो गया है सेट. आज आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है, सो वेल विजया जी, लोड्स ऑफ गुड विशेस टू यू ऑन योर स्पेशल स्पेशल डे. टू यू एंड टू यू हबी आतिश डेडिकेट करेंगे एक ब्यूटीफुल गाना. एंड थैंक यू सो मच हमेशा इतने प्यार से प्यारे प्यारे मैसेजेस हम तक पहुँचाने के लिए. गुड विशेस हम पहुँचा रहे हैं ऑन योर स्पेशल डे 15th of June, एंड अ वेरी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी आपको और आपके हबी को. साथ ही यहाँ पर डीजे डेविसन लाल माटी से हमारा साथ दे रहे हैं आप. सो थैंक यू सो मच डेविसन, साथ दे रहे हैं आप. सो नेक्स्ट वन गोज आउट फॉर यू.
0: यू आर लिसनिंग टू रेडियो मस्ती.

0: You're listening to RM2, a Radio Masti.
1: तो चलिए दोस्तों, सुंदरी सुंदरी इसी गाने के साथ हम बढ़ने वाली हैं आपके समाचारों की ओर, उसके बाद लौट कर आएंगे। That's your Bombay Talkies, मैं हूं परी आपके साथ, right here on the waves of Radio Masti, till 4 p.m.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by McDonald's.
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
0: Radio Masti.
3: North. South.
0: 103.5.
3: East. West.
0: 96.4.
3: Center.
0: 99.4.
4: RM2, Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
5: Time check, 3 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है याचना, आपको नमस्कार।
6: नमस्कार परी, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। शनिवार रात को मोतायलों के पास दिमागियान के हिल्स व्यू रिसेप्शन हॉल में एक दर्दनाक हादसा पेश आया। 54 साल की रीता सिबारत की मौत एक ट्रक से कुचले जाने से हुई। ये ट्रक उसके बेटे युधिश सिबारत की थी, जो एक ढलान पर पार्क थी और अचानक चल पड़ी। तकनीकी खराबी का पता लगाने के लिए एक्सपर्ट्स ट्रक का परीक्षण करेंगे। घायल सदाल हत्याकांड के सिलसिले में दो अन्य संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें दो हिन्यान कान्युएन और उनका बेटा शहाद यान कान्युएन शामिल हैं। दोनों पर इस सोमवार को हत्या के आरोप में उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि शनिवार शाम रेजिडेंस लाक्यूआ की रोबर्ट स्कॉट गली पर हुई एक झड़प में 28 वर्षीय घायल सदाल की मौत हो गई। उसे चाकू लगी थी। पुलिस द्वारा जुटाई गई शुरुआती जानकारी के अनुसार गुरुवार को दोहिनियान कान्युएन और गायल सदाल के बीच बहस हुई थी। इस मामले के तीसरे संदिग्ध मोहम्मद शेख बुलाकी, जो दोहिनियान कान्युएन के सबसे छोटे बेटे हैं, उनको चोट लगी। फिलहाल वे पोटवी के जितु अस्पताल में पुलिस की निगरानी में भर्ती हैं। पॉइंट साबला में एक नाली से गंदा पानी बहकर लगून के पास पहुंच गया। इस पानी के बहाव को रोकने के लिए वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी की लगभग 100 टैंकर तैनात की गई हैं। 5 दिनों में करीब 1000 क्यूबिक मीटर गंदा पानी पंप किया गया। गलती से वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी का पाइप टूट गया, जिसके बाद बुधवार रात से ही एक बड़ी कार्रवाई शुरू हुई। नाली में भले ही मरी हुई मछलियां पाई गई हैं, लेकिन पॉइंट साबला के समंदर को प्रदूषित होने से बचाया जा सका है। विदेशी समाचारों में वर्ल्ड कप की बात करते हैं। वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफिकेशंस का दौर जारी है। नेदरलैंड्स और जापान के बीच खेला गया मैच आज ड्रॉ रहा 2-2। वही स्वीडन का सामना हुआ ट्यूनिशिया से और स्कोर रहा स्वीडन 5 और ट्यूनिशिया 2। ग्रुप ई में आइवरी कोस्ट ने इक्वेडर को हराया 1-0। आज रात को लोगों की नजरें एक और रोमांचक मैच पर रहेगी। ग्रुप एच में स्पेन खेलेगा काबो वर्दे के खिलाफ और रात 11 बजे बेल्जियम का सामना होगा इजिप्ट से। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
0: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
7: More music in the mix.
8: Aaj Azadi hai.

0: Mikey's
1: Radio Musty.
2: Radio Musty.
3: तो चलिए दोस्तों 3:12 हो गए हैं. वार्म वेलकम मंडे आफ्टरनून और सेकंड आवर ऑफ योर बॉम्बे टॉकीज. मैं हूं परी आपके साथ एंड थैंक यू सो मच जो आप इतने प्यार से हमारा साथ दे रहे हैं ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती. यहां पर बहुत सारे सवाल हमें पूछे जा रहे हैं दैट ये जो MBC प्ले है इसे किस तरह यूज करना है. सो मिस्टर विनय वी गॉट योर मैसेज एंड यहां पर हम आपको पूरी तरह से बता देंगे कि आप इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से कॉन्टैक्ट नंबर है जहां पर आप फोन करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं. सो जो भी लोग MBC प्ले डाउनलोड करना चाहते हैं या डाउनलोड करने के बाद जानना चाहते हैं कि आगे कैसे प्रोसीड करना है, ये है एक स्पेशल एक्सप्लेनेशन आप सभी के लिए.
4: आइए जानते हैं MBC प्ले पर न्यू वर्ल्ड स्पोर्ट्स पैक में सब्सक्राइब करने का

तरीका। स्टेप वन, सब्सक्राइबर को पहले एमबीसी प्ले ऐप खोलना होगा और जाना होगा टीवी सेक्शन में। अब जब किसी भी न्यू वर्ल्ड चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टू अ सिक्योर मिप्स पेमेंट पोर्टल। स्टेप टू, अब आपके सामने होंगी दो पेमेंट ऑप्शंस। एक तरीका मोबाइल बैंकिंग एप्स के जरिए पेमेंट करने का, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। सो आपको सिलेक्ट करना होगा अपना प्रेफर्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। अब इन पेमेंट एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर आपको एंटर करना होगा। ऐसा करने के बाद उस बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा एक सिक्योर पुश नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर दिखेगी। यूजर को उस नोटिफिकेशन को खोलना है, ट्रांजैक्शन और उसकी डिटेल्स को रिव्यू करना है और सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट एंड पे। और वहीं पर अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुनते हैं, सो पहले मांगी हुई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपको भरनी होंगी और उसके बाद आपके बैंक के द्वारा आपको मिलेगा एक सिक्योर्ड वन टाइम पासवर्ड, यानी कि ओटीपी एसएमएस या ईमेल द्वारा। ये ओटीपी आपको अपने स्क्रीन पर एंटर करना होगा टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शन। तीसरा और अंतिम स्टेप, एक बार यूजर ने पेमेंट को ऑथराइज कर दिया अपने बैंकिंग ऐप या ओटीपी के द्वारा, तो उनको अपना स्क्रीन नहीं बंद करना बल्कि इंतजार करना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए ऑन द एमबीसी प्ले एप्लीकेशन। अब बस सक्सेसफुल पेमेंट कंफर्मेशन होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर देगा एमबीसी प्ले होम पेज पर और अनलॉक कर देगा इमीडिएट एक्सेस टू द प्रीमियम स्पोर्ट्स स्ट्रीम्स। ज्यादा जानकारी या मदद के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच में फोन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन सपोर्ट को 433-3135 या 433-2871 या 433-3145 या 433-2905 या 5251-6363 या फिर ऑन 5944-6800। RM2 Radio Masti.

0: RM2.
1: Radio Musty feels a musty.

0: RM2. Radio Musty. In the mix. Radio Musty in the mix.
1: So well, some beautiful songs are आपके लिए, be it मस्ती भरे songs या फिर कुछ soulful songs, सब कुछ आपको मिलने वाला है अभी से लेकर दिन के 4 बजे तक. कदाच से और बॉम्बे टॉकीज बी डाउन की खबरें भी आप तक पहुंचाएंगे और साथ में आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 5499 1294 पर.

0: You're listening to RM2, a Radio Masti.
1: So well, Monica, हम तो है यहाँ पर आपके साथ कुछ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स लेकर आए हैं और आपकी इस आफ्टरनून को हम सजा रहे हैं 3:40. अविनाश यहाँ पर हमारा साथ दे रहे हैं आप. सो दिस वन गोज आउट फॉर यू. थैंक यू सो मच. आप पसंद कर रहे हैं हमारे इस शो को, इन गानों को, और कहते हैं काम करते करते वक्त कहाँ बीत जाता है पता नहीं चलता. थैंक यू सो मच रेडियो मस्ती. थैंक यू आपको जो आप काम करते हुए भी हमारा साथ दे रहे हैं. ये गाना आपके नाम. प्रिया आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं आप. सो आपके लिए स्पेशल विशेज, दैट्स कमिंग फ्रॉम अवनी. और साथ में विशेष हैं आपकी मामा, आपके पापा और सभी परिवार की ओर से. हैव अ ग्रेट वन, अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. एंजॉय दिस वन.

0: शकिया टाइम स्टूडियो की घड़ी में एग्जैक्टली 4 पीएम आई सुनते हैं समाचार रियाचना के साथ नमस्कार
1: नमस्कार यनिशा सभी सुनने वालों को भी नमस्कार सुनिए संक्षिप्त समाचार पुएर्टो साब्लो में एक नाली से गंदा पानी बहकर लगून के पास पहुंच गया इस पानी के बहाव को रोकने के लिए वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी की लगभग 100 टैंकर तैनात की गई 5 दिनों में करीब 1000 क्यूबिक मीटर गंदा पानी पंप किया गया है गलती से वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी का पाइप टूट गया जिसके बाद बुधवार रात से ही एक बड़ी कार्रवाई शुरू हुई नाली में भले ही मरी हुई मछलियां पाई गई हैं लेकिन पुएर्टो साब्लो के समंदर को प्रदूषित होने से बचाया जा सका है हायर स्कूल सर्टिफिकेट के लिए सब्सिडियरी विषय के रूप में खोल मोरिसिया की पहली परीक्षाएं 2027 के लिए निर्धारित हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने मॉरिशस एग्जामिनेशन सिंडिकेट को अक्रेडिटेशन के लिए जिम्मेदार संस्था के रूप में मान्यता दी है जिसके लिए कैम्ब्रिज एमईएस की जॉइंट सर्टिफिकेट दी जाएगी कैम्ब्रिज और शिक्षा मंत्रालय की बैठक के दौरान इस पर बात की गई एससी और एचएससी के स्तर पर खेल मोहिसिया का चयन करने वाले छात्रों के लिए मंत्रालय की ओर से अन्य 8 विषयों की तरह ही सरकारी सहायता से लाभ मिलेगा शिक्षा की ही बात करते हैं देश में पहली हिंदी संस्था

0: तक विद्यालय अपनी शताब्दी मना रहा है। उसकी स्थापना को 100 साल पूरे हो गए। इस अवसर पर कल मोतालोंग में हिंदी प्रचारणी सभा की सीट पर लोकमान्य तिलक की प्रतिमा का अनावरण किया गया। भारतीय मूल के लोकमान्य तिलक ने देश में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस समारोह में गणराज्य के राष्ट्रपति सहित कई अन्य मंत्री, सांसद और भारत से आए डेलीगेशन के सदस्य शामिल रहे। विदेश में अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर सहमति बन गई है। इस समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर शुक्रवार 19 जून को स्विट्जरलैंड में किए जाएंगे। इसके बाद दोनों पक्ष स्थायी समझौते तक पहुंचने के लिए आगे की वार्ता जारी रखेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि ईरान के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोल दिया जाएगा। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Raftaar Vibe, Filmy Rides.
3: RM2. Radio Mastery.

वेल गाइस चेक योर टाइम स्टूडियो की घड़ी में इट्स एग्जैक्टली 4:06 अग्निश आ गई हैं ऑन द माइक इन योर रफ्तार वाइब्स योर फिल्मी राइड कराएंगे बिल्कुल बॉलीवुड की दुनिया से लेकर आए हैं कुछ बहुत ही प्यारे प्यारे गाने फॉर यू माय डियर एंड लवली लिसनर्स जो साथ देने आ गए हैं ऑन आवर टू रेडियो मस्ती सो विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड आफ्टरनून नमस्कार प्रणाम जी कैसे हो आप ऐसे आप मुझे बता सकते हैं कि हाउ वाज योर वीकेंड आई

न्यू वीकेंड जब भी आता है तो ऐसे ही मंडे को मंडे ब्लूज हम फील करते हैं, क्योंकि मन नहीं करते हैं काम पे जाने का और बस घर ही टांगते रहते हैं कि कब 4 बजेंगे 5 बजेंगे जो भी आपका टाइम है घर जाने का. बट यू डोंट हैव टू वरी, जब म्यूजिक का होता है गुड ऑन आरएनटी रेडियो मस्ती, द फील गुड म्यूजिक इज हियर, द सनशाइन म्यूजिक इज हियर, सो नॉट टू वरी. सो माय डियर लवली हियर पीपल, माय लवली लिसनर्स, म्यूजिक लवर्स, आप सभी लोगों का हम स्वागत करेंगे ऑन दिस लवली मंडे 15th of June 2026 ऑन आरएनटी रेडियो मस्ती. अगर अभी Agnish is gonna be here आपका साथ देने के लिए with some good good music बिल्कुल 7 बजे तक. तो अभी के लिए sit back, relax, buckle up, यानी कि seat belt बांध लीजिए, seat belt बांध लीजिए अगर आप गाड़ी में बैठ चुके हैं घर पर जाने के लिए, and just radio का volume थोड़ा सा ऊंचा कर लीजिए and enjoy the good music. Here we go, this one goes out to everyone.

Well guys, I really hope that you are loving these beautiful and lovely गानों का selection. पता है कितना time लगा कि हम आते हैं आप लोगों के लिए music चुन चुन कर लेकर आते हैं according to all choices so that you guys can really smile behind your radio and saying yeah I love this song and हाँ जी आपके इन खूबसूरत खूबसूरत यादों को भी हम ताज़ा करने की कोशिश करते हैं. तो चलिए काम से निकल चुके हैं, बस में बैठ चुके हैं या आई डोंट नो हो सकते हैं having your headphones on and you're standing at the bus stand, बस या आप मेट्रो में ट्रैवल करने वाले हो सकता है कि ऑलरेडी गाड़ी में बैठे हो. अगर आपके काम की जगह से आपको वैन ट्रांसपोर्ट मिलता है तो आप कहीं से भी जो हमारा साथ दे रहे हो, हम तो बस इतना कहेंगे कि एंजॉय द गुड म्यूजिक. मंडे अब ख़त्म होने वाली है और काम की टेंशन काम पे ही छोड़ देते हैं, अभी घर पे जाना है. आप सोचे कि आप कैसा अच्छा सा इवनिंग स्पेंड कर सकते हैं अपनों के साथ. एंड टू ऑल ड्राइवर्स, हाँ जी हम आप ही से बात कर रहे हैं, आराम से गाड़ी चलाना, मेंटेन डिस्टेंस व्हाइल ड्राइविंग ऑलवेज, धीरे धीरे हौले हौले एंड ऑलवेज रिमेंबर. बहुत सारे जो ड्राइवर्स होते हैं आजकल उनको फाइन मिलते हैं, बोलते हैं ओहो आपका डिक्लेरेशन खत्म हो गया, आपका इंश्योरेंस ही नहीं है. चेक करते रहना कि कितना वक्त है आपके पास और टाइम से भर देना, टाइम से पे कर लेना, इंश्योरेंस लगाना गाड़ी के ऊपर एंड डिक्लेरेशन भी पे कर लेना. क्या होता है आई डोंट नो, इतने सारे हैक्टिक लाइफ में हम सब चल रहे हैं कि कभी कभी मिस आउट हो ही जाता है. इट्स नॉट योर फॉल्ट, बट हम हैं ना आप लोगों को याद दिलाने के लिए ऑन आवर एंटी रेडियो मस्ती सो दैट यू डोंट गेट अ फाइन. आप अपना इंश्योरेंस और गाड़ी का डिक्लेरेशन जो है प्लीज टाइम से चेक करते रहना और भरते रहना. तो चलिए जी, टू ऑल दोज हु आर ऑलरेडी हिटिंग द रोड्स, हियर वी गो, दिस वन गोज आउट टू यू.

0: That was such a beautiful track in the lovely voice of Arijit Singh, Tera Fitur, especially for you on R&T Radio में से. और फिलहाल के लिए guys, I've got a voucher worth 500 rupees to give away to you right now. यानी कि I have a game, it's a cadeau for you. और अगर आप participate करना चाहोगे, so do it right now, right away. Just grab your mobiles in your hand and listen to the question very carefully and send me the right answer on 5499 or 1294 5499 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 पाते हैं 5499124. दिस इज द राइट नंबर द मैजिकल नंबर जहां पे आप अपने राइट आंसर्स विद फुल नेम एंड फुल एड्रेस के साथ भेज सकते हो. यस यू कैन पार्टिसिपेट इन द गेम एंड बी माय लकी विनर. तो चलिए जी हम आपको सुनाएंगे एक आवाज. इट्स एन एक्टर. यू जस्ट हैव टू टेल मी ये कौन से एक्टर की आवाज है. तो चलिए लिसन टू इट वेरी केयरफुली.
1: लाइफ इज स्ट्रेंज. पीपल आर स्ट्रेंजर. हर सुंदर चीज में होता है कुछ डेंजर. जिंदा रहने के भी बदलते हैं अब फैशन. जिमी की लाइफ का यही तो है टशन.
0: बिल्कुल जी. क्या टशन है, क्या आवाज है. यस सो यू जस्ट हैव टू टेल मी ये किसकी आवाज है. तो जल्दी से मोबाइल पे टाइप करना शुरू कर दीजिए द राइट आंसर 5499124% मी द राइट आंसर एंड यू कैन वर्थ अ वाउचर. यू कैन विन अ वाउचर वर्थ 500 रुपीज ऑफर टू यू बाय मिस्टिक वर्ल्ड. जस्ट टू रिमाइंड यू, अगर आप ढूंढ रहे हैं अ परफेक्ट गिफ्ट आइडिया सो मिस्टिक वर्ल्ड जो है .mu वहां पे यू कैन डिस्कवर द एक्सक्लूसिव गिफ्ट कार्ड्स, गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी, ऑथेंटिक क्रिस्टल्स भी मिल सकते हैं आपको एंड स्टनिंग होम डेको. mysticworld.mu has exactly what you are looking for. Trust me for that. अगर आपको कुछ चेक करना है सो डू इट राइट नाउ राइट अवे ऑन देयर वेबसाइट टुडे ऑन mysticworld.mu या आप फोन कर सकते हैं ऑन 5880752. यस यू जस्ट हैव टू टेल मी दिस इज द व्हिच एक्टर्स वॉइस दैट आई एम प्लेइंग राइट नाउ. आराम से सुनिएगा एंड सेंड मी द राइट आंसर ऑन 5499124 पर. बेस्ट ऑफ लक टू यू.
1: लाइफ is strange. People are stranger. Har sundar cheez mein hota hai kuch danger. Zinda rehne ke bhi badalte hain ab fashion. Jimmy ki life ka yahi to hai tashan.
2: Aaja ve aaja hai sajan mainu lut le gaya hai.
3: Radio Musti.
4: Your life is not complete until you have a little musti in your life. Radio Musti. All the way. The latest news and the greatest mix of music.

0: रेडियो मस्ती,
1: रेडियो मस्ती
0: RM2 रेडियो मस्ती। स्पोर्ट्स मैगजीन इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो, द फ्लो एक्सपर्ट।
2: स्पोर्ट्स न्यूज,
0: रेडियो मस्ती इन द मिक्स।

0: चलिए जी, मैं आपको बता दूं टू ऑल दोस हु जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं स्पोर्ट्स न्यूज के लिए. जी हाँ, सही वक्त आ गया है. 4:40 हो चुके हैं एंड स्पोर्ट्स गुरु इज ऑल सेट फॉर यू. सो गुड आफ्टरनून मिस्टर अरविंद.
1: गुड आफ्टरनून आपको. गुड आफ्टरनून रेडियो मस्ती लिसनर्स. सो ऑफ कोर्स वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फीफा वर्ल्ड कप. आज सुबह से 2 मैच पूरे हो गए हैं. सो आज ब्रेकफास्ट लेते हुए बहुत से लोगों ने मैच देखा. स्विट्जरलैंड का स्वीडन का 5-1 से ट्यूनिशिया को हराया. और सो ब्रेकफास्ट पे वर्ल्ड कप. इससे पहले रात को आइवरी कोस्ट की जीत हुई इक्वाडोर के खिलाफ 1-0 से. कुछ स्टैट्स इसमें, आइवरी कोस्ट की टीम अभी बहुत साल बाद इस मकाम पे आई है कि दे कैन क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड, जबकि इक्वाडोर की टीम 2 साल बाद उसकी हार हुई है. स्वीडन की टीम 5-1 से जीत. और इसमें ईसा ग्योकोरेस जैसे खिलाड़ी है, अनुभवी खिलाड़ी, और एक खिलाड़ी है उसका नाम है आयारी, जिसने गोल से यारी कर ली है. सो स्वीडन 5-1. स्वीडन के लिए क्वालिफिकेशन का रास्ता लगभग खुल गया है. आज ग्रुप जी में मैच है. सबसे पहले मैच ग्रुप एच स्पेन और केप वर्दे के बीच, और फिर उसके बाद होगा दूसरा मैच ग्रुप जी में बेल्जियम इजिप्ट, और ग्रुप एच में ही सऊदी अरेबिया का मुकाबला उरुग्वे से होगा. तो 11 बजे ये एक शॉक माना जा रहा है. बेल्जियम इजिप्ट एक तरफ यूरोप का महारथी, दूसरा इजिप्ट के ले फराओं. इस मैच को आप लोग वैसे मायामी स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा. और बेल्जियम की टीम का कोच है रूडी गार्सिया, और उसमें 26 ऐसे खिलाड़ी हैं जो बहुत आगे जाने के बारे में सोच रहे हैं. सेंट्रल डिफेंस में जिनो डिबास्ट नहीं खेलेगा, और रोमेलू लुकाकू, केविन डे ब्रुइन, जेरेमी डोकू, ये सभी लोग खेल पाएंगे. इजिप्ट मोहम्मद सलाह का उसकी टीम है ये. ले फराओं के पास एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज है, क्योंकि जब इन दोनों के बीच आमना सामना हुआ था वर्ल्ड कप 2022 में, तो 2-1 से जीत हुई थी. अब इस ग्रुप में ईरान और न्यूजीलैंड भी हैं. सुबह 2 बजे मॉरिशस समय अनुसार आज ग्रुप एच का दूसरा मैच उरुग्वे, जो वर्ल्ड रैंकिंग में 17वें पोजीशन पे है, उसका मुकाबला सऊदी अरेबिया से होगा. 62nd पोजीशन हार्ड रॉक स्टेडियम मायामी में ये मैच खेला जाएगा. ला सेलेस्ते में काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं, वाल्वेर्दे, नूनेज, ओरोयो, बेंटाकू, जबकि सऊदी अरब की टीम उसमें एवेरिना हैं, बहुत दिमाग लड़ाता है वो मैच जीतने के लिए. और इस टूर्नामेंट में ये टीम आई है वही सेंसेशन क्रिएट करने के लिए जो पिछली बार किया था. आपको याद होगा वर्ल्ड कप के पहले मैच में इस टीम ने, सऊदी अरब ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराया था. इस बार भी ये उरुग्वे का शिकार कर सकते हैं. तो ये सब आज के मैच हैं. और कल जब कहें तो सुबह हो सकता है. हाँ, तो ट्यूसडे ग्रुप जी 2 बजे यानी 5 बजे, माय गॉड 5 बजे फिर से ब्रेकफास्ट लेते हुए मैच देखना पड़ेगा. ईरान न्यूजीलैंड, फिर कल ही रात को फ्रांस की एंट्री होगी. फ्रांस वर्सेस सेनेगल, इराक वर्सेस नॉर्वे. और बहुत लोग पूछ रहे हैं कब वर्ल्ड चैंपियन की एंट्री होगी. अर्जेंटीना का मुकाबला अल्जीरिया से वेंसडे, और इंग्लैंड की टीम ग्रुप एल में है. सो ग्रुप एल में इंतजार करना पड़ेगा. दे विल बी फेसिंग क्रोएशिया. बहुत सी कहानियां हैं इस वर्ल्ड कप में. उस दिन हम पिंक शूज के बारे में बात कर रहे थे, और आज उरुग्वे और सऊदी अरब के बीच जो मैच खेला जाएगा उसमें भी पिंक की कहानी. रेफरी जो है और उसके असिस्टेंट, वे लोग पिंक कलर के शर्ट पहनेंगे, जर्सी पहनेंगे. ये इसलिए क्योंकि मायामी को पिंक सिटी कहा जाता है, सेम आज जयपुर, वहाँ भी पिंक सिटी. तो रेफरी ने सोचा कि उस स्टेडियम को, उस इलाके को रिस्पेक्ट दिखाने के लिए आज ये लोग पिंक रंग में होंगे. अब इस वर्ल्ड कप के बाद कुछ ऐसे खिलाड़ी सामने आ रहे हैं, हर एक मैनेजर अपनी टीम के बारे में सोचने लगा है.

0: लिवरपूल का मैनेजर इराओला उसके सामने वर्ड्स इसा खेल रहे हैं। दोनों की ओर से अच्छे परफॉर्मेंस रहे पहले मैच में, और जोयामांडे जिसको लिवरपूल साइन करना चाहता है उसने भी एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस दिया, उस पर भी नजर है। तो सभी जो मैनेजर हैं देख रहे हैं कि वो क्या करेंगे। और सुबह बता रहे थे बहुत सी ऐसी कहानियां आती हैं वर्ल्ड कप में। एक खिलाड़ी है डबलिन में, उसका जन्म हुआ था और लोपेज नाम है उसका। कैन यू इमेजिन, उसको सोशल मीडिया में रिक्रूट किया गया था केप वर्दे के लिए खेलने के लिए, टाइनी आइलैंड नेशन 3000 माइल्स अवे जहां से वो जन्मा था यानी डबलिन में। उस समय वो बैंक में काम करता था, फिर बैंक में वो उसने सोचा कि यहाँ पर मैं नहीं काम कर सकता, डिफेंडर है नाम है उसका पीको, तो उसको शामरॉक रोवर्स ने खेलने का मौका दिया। उसके बाद ही नेवर लुक्ड बैक, अब वो लोपेज के लिए खेलेगा। रुई आगुआस जो उस समय कोच था उसने कॉन्टैक्ट किया वी बिजनेस नेटवर्क लिंकिंग, जब उसने डिस्कवर किया कि लोपेज के पापा कॉलोस केप वर्दे से हैं, और केप वर्दे जो 10 आइलैंड से बना एक देश है अटलांटिक ओशन में, वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। तो आज लोपेज खेल पाएगा अपने देश के लिए, यानी उनके पापा के देश के लिए केप वर्दे, जिसके लिए पहला बैटम दिफ्यू होगा इस वर्ल्ड कप में। फुटबॉल के अलावा कुछ क्रिकेट के बारे में भी बात कर दें। इंडिया पाकिस्तान वाला मैच देखा जिसमें भारतीय टीम की जीत हुई। वी आर टॉकिंग अबाउट वुमेन आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, और आज मैच टाई हो गया इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच। ये टाई मैच का मतलब क्या हुआ देखते हैं, स्कोरबोर्ड क्या रहा, एवरीवन इन इंटरेस्टेड। सो वैभव सूर्यवंशी 21 रन बनाकर आउट हुआ, इसमें सूर्यंश शेगरे 72 रन बना पाया, विपराज निगम 51 रन बना पाया। सो मैच टाई इन दोनों टीमों के बीच। क्या होगा और इस पर आपको सुबह और जानकारियां देंगे, सुनते रहिए और बताते चले कि आज के मैचों के रिजल्ट आपको समय समय पर देते रहेंगे।
1: एंड जैसे कि आपने फिर से मेंशन किया, यू नो आप मुझे इंस्पायर करते हो कि ये पिंक शूज के बारे में आपने बात किया, तो आई डोंट नो व्हाई आई फील लाइक प्लेइंग द सॉन्ग, यू नो दिल ही टू है फ्रॉम द स्काई इज पिंक।
0: ऑलराइट, लेट्स गो फॉर इट।
1: तो चलिए।
2: दिस मैगजीन वाज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेकोर, द फ्लो एक्सपर्ट।

0: to
1: Radio Mesti.
2: Traffic update. Traffic update.
3: तो चलिए जी चेक योर टाइम स्टूडियो के घड़ी में 4:52 हो चुके हैं, ऑफिस आवर्स खत्म हो चुके हैं और अब रोड्स पर रश का प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जी। कैपिटल से निकलने वाली ट्रैफिक और नॉर्थ और साउथ दोनों साइड्स में स्लो हो रही है। गजवी टू फेनिक्स स्ट्रेच बिजी है विद अ स्लो मूवमेंट। कैट्रोबोन और रोजेल में यूजुअल हैवी ट्रैफिक हो चुके हैं और साउथ बाउंड हाईवे पर भी डिले स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप स्टेयरिंग पर हैं थोड़ा पेशेंस रखें, सेफ डिस्टेंस मेंटेन कीजिए और स्मूथ ड्राइव कर लीजिए। एंड कीप ऑन लिसनिंग टू आर एम टू रेडियो मस्ती एंड ऑफ कोर्स इफ यू हैव सम लेटेस्ट ट्रैफिक अपडेट टू शेयर हमारे साथ ऑन आर एम टू रेडियो मस्ती 5499 1294 पर 5499 1294 दैट्स द नंबर टू डायल।

0: स्पेशल के जी 4:55 हो चुके हैं. गुड म्यूजिक इज ऑलवेज ऑन फॉर यू ऑन आवर रेंटल रेडियो मस्ट एंड आई होप दैट यू गाइस आर एंजॉयिंग इट. जैसे कि आपको पता है थोड़ी देर पहले हमने आपको सुनाया था किसी की आवाज़ और पूछा गया था कि ये कौन से एक्टर की आवाज़ है. I've got so many messages, right answers और wrong answers भी. सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग. लेकिन आज की लकी ड्रॉ के बाद आज का लकी विनर है मिस्टर विशाल आनंद अग्नू एंड रहते हो रॉयल रोड प्रोविडेंस काट से मिली थे. सो कंग्रेचुलेशन टू यू माय डियर, यू आर विनिंग अ वाउचर वर्थ 500 rupees ऑफर्ड टू यू बाय मिस्टिक वर्ल्ड. ऑलवेज रिमेंबर इफ यू आर लुकिंग फॉर द परफेक्ट gift idea, mysticworld.mu. There you can discover exclusive gift cards, gold and silver jewelry, authentic crystal and stunning home decor. mysticworld.mu. Yes, this is the website, and call them on 5880 7652. And congratulations to aaj ka lucky winner Mr. Vishal Anand jo rehte hain carte militaire mein.
1: Life is strange.
0: Exactly, this is the right answer. Strange. Saif Ali Khan.
1: Har sundar cheez mein hota hai kuch danger. जिंदा रहने के भी बदलते हैं अब फैशन. जिमी की लाइफ का यही तो है टशन.
2: RM2 रेडियो मस्ती, फील द मस्ती.

0: You're listening to RM2, a Radio Masti.
1: Well guys, I'm getting your messages on 549-9124, पर पता है कितनी खुशी मिलती है जब आप लोग ऐसे अपने दिल की बात हमारे साथ शेयर करते हो. और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, बोलते हैं प्लीज डोंट रीड इट ऑन एयर, मैं तो बस आपसे कम्युनिकेट करना चाह रही थी. दैट्स अ स्वीट ऑफ यू एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस रेडियो. आप हमारे फैमिली हो, वी आर वन फैमिली, RM2 रेडियो मस्ती फैमिली. सो थैंक यू सो सो मच फॉर चूजिंग अस एज योर रेडियो पार्टनर. एंड टू ऑल दोस जो अभी शेयर ओवर टाइम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बिल्कुल हमारी तरह हम आपको विश करना चाहेंगे, वो को खास माइडिया. Lots of courage I'm sending your way and I wish you to have a great time with us. Don't worry, hum yahi pe hain aapka saath dene ke liye with some good music. Aur chaliye ji, leke jayenge aapko straight away to Canada. Hey, we do have Radha. Radha ji, kaise ho aap? Aapko acha lag raha hai hamari awaaz sunke? Hame bhi acha laga aapka message receive karke. Lovely playlist, awesome shogini as usual. Beautiful song aapki family ke liye, puri family ke liye jo Canada mein hai, Mauritius mein hai, aapke liye, mere liye, listeners ke liye, har har Mahadev to you my sweet, sweet and lovely here. Jo राधा जी हैं, ये अगला गाना आपके लिए भी. एंड अनीता ऑफ फ्लैक, हैप्पी बर्थडे टू योर ब्रदर, विशिंग हिम लॉट्स ऑफ लव. जुग जुग जियो, सो विशिंग योर ब्रो एंड टू ऑल.

0: रेडियो मस्ती।
1: बिल्कुल जी, टू ऑल दोस हु आर सेलिब्रेटिंग द अबव दिस, आई जस्ट वांट टू विश यू अ मैजिकल वन, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स हमारी तरफ से, आपके रेडियो मस्ती फैमिली की तरफ से भी। एंड नमस्कार टू यू, कृष्णी शर्माटे, सो विशिंग यू अ वेरी गुड इवनिंग माय डियर, एंड थैंक यू सो मच, आप भी साथ दे रहे हो। तो चलिए जी, जितने भी लेडीज एंड जेंट्स जो किचन में घुस चुके हैं, सब्जियां कट रही है या सोच में पड़ गए कि क्या बनाना है, या हो सकता है कि आपने बनाना भी शुरू कर दिया, सो लॉट्स ऑफ करेज टू यू एंड हियर वी गो दिस वन, जस्ट मोटिवेट यू एंड लेट यू नो कि हम भी तो हैं साथ देने के लिए ऑन रेडियो मस्ती।

0: RM2 Radio Musty. RM2 Radio Musty.
1: तो चलिए जी, टाइम बीता चला जा रहा है और गाने होए मेरी जाने के बाद एक खूबसूरत खूबसूरत गाने हमने कराए हैं आप लोगों के लिए। आई होप यू आर फीलिंग गुड, आप गा रहे हो, गुनगुना रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, कहीं से भी जब आप साथ देते हो ना, ऐसे या मैसेजेस भेजते रहते हो तो दिल को अच्छा ही लगता है। और चलिए, थोड़ी देर पहले हम खाने पीने की बात कर रहे थे कि शायद आप किचन में घुस चुके हो, सब्जियाँ काट रहे हो, अरे यहाँ पे तो लोग डिनर भी कर चुके हैं। कुछ लोग काम करके घर पहुँच के बोलते आप खाने बनाने की बात कर रहे हो, मैं तो घर पर पहुँची और यू माई ब्यूटिफुल, आपकी मम्मा ने ऑलरेडी खाना बना लिया है, माई खुशी। वो बोलते हैं मम्मा ने आरिको ब्लॉ बनाया है मसाले में, खेसों टुफे और कुचा सुरन, ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया, आई हैव टू ट्राई दिस। अचार तो मैंने खा लिया लेकिन कुचा मुंह में पानी आ गया। सो खुशी, आप खुश रहना और बस यूं ही अच्छे अच्छे खाना खाते रहना और गरीबों के बारे में ज़रूर सोचना। तो चलिए जी, वैसे आपने क्या बनाया है, व्हाट आर यू प्लानिंग, मेन्यू में क्या बन रहे हो आज आपके किचन में, डू लेट मी नो। और अगला गाना जो है हम डेडिकेट करना भी चाहेंगे उन तमाम सुनने वालों के नाम जो साथ दे रहे हैं ऑन ऑनलाइन टू रेडियो मस्ती, एंड बिनीशा बिकारी के लिए आज उनका जन्मदिन है। सो हैप्पी बर्थडे टू यू ब्यूटीफुल बिनीशा, एंड इवन फ्रॉम गिनीशा आई जस्ट वांट टू विश यू हैप्पी बर्थडे। एंड इट्स कमिंग फ्रॉम क्रिश कृष्णव एंड मामा जानकी जो सैपल के रहने वाली हैं, फ्रॉम एनी केली की तरफ से भी लॉट्स ऑफ लव। तो चलिए जी, वी हैव द नेक्स्ट वन फॉर यू अर्शद। अर्शद जी, आप हमारा साथ दे रहे हो तो Here we go, ये अगला गाना आपकी तरफ, आपके लिए हमारे प्यारे रिबिका की तरफ से। सो लॉट्स ऑफ लव स्पेशली फॉर यू एज वेल ब्रो, एंड एंजॉय द शो। एंड ही माय लवली, हाय हाय मेरे जान, जब आप इतने प्यार से लिखते हो ना, हमारा दिल खुश हो जाता है। तो चलिए जी, हम ठीक हैं, लवली सिलेक्शन आपको एंजॉय कराना था, हम तो करा रहे हैं और आप अच्छे अच्छे गाने सुन रहे हो, मे आई रिक्वेस्ट, कोशिश करेंगे। तो चलिए जी, शुभ इवनिंग रोशनी फ्रॉम कैथोबोन, द नेक्स्ट वन गोज आउट टू यू एंड टू एवरी वन एक्चुअली जो साथ दे रहे हैं। और चलिए, वैसे आपको गिनती आती है हिंदी में, 1 2 3 4 पता है? नहीं ना, इसीलिए हम आपको ये गाना सुना रहे हैं। चलिए, लेट्स लर्न इट टुगेदर।

0: फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।
1: बिल्कुल जी, लेकर आते हैं आप लोगों के लिए कुछ फैशन टिप्स सो दैट यू कैन लुक मोर एलिगेंट एंड ब्यूटीफुल। एक्चुअली आप हो ही इतने खूबसूरत, लेकिन अगर यू कैन ऐड अप समथिंग मोर ऑन इट तो सोने पे सुहागा आप लग ही जाओगे। तो चलिए, ऑफिस जाना है, विंटर का टाइम है, तो इस विंटर सीजन में एक स्मार्ट ब्लेजर और कम्फर्टेबल शूज का साथ दीजिए। आप अपने लुक को स्टाइलिश टच, फैशन भी और कम्फर्ट भी एंजॉय कर सकते हो। विंटर ऑफिस फैशन का सिंपल सा मंत्र होता है, दोस्त, कम्फर्टेबल रहिए, कॉन्फिडेंट रखिए अपने आप को और हर दिन अपने स्टाइल से छोड़ दीजिए एक खूबसूरत इंप्रेशन सो दैट यू कैन जस्ट स्टार्ट द ट्रेंड एंड एवरीवन कैन फॉलो यू।
0: फैशन टिप्स वाज पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स।

0: RM2
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
2: तो चलिए जी, टाइम बीता चला जा रहा है और फिलहाल के लिए हम लेकर आए हैं आप लोगों की लिए योर डेडिकेशंस एंड आई जस्ट वांट टू विश अ हैप्पी बर्थडे टू यू उमा भटुआ. शी इज सेलिब्रेटिंग हर 50th बर्थडे, हाफ सेंचुरी टुडे. ब्यूटीफुल लेडी, हे हैप्पी बर्थडे टू यू एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम रेडियो मस्ती.

शाम बच्चे जो है आशीष अक्षय आकाश ईशा दीक्षा विदुषी एंड कियारा वेरी स्पेशल लेडी शी हैज सम रियली ग्रेट बॉयज सो ऑल हैप्पीनेस एंड लव टू यू माय डियर लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस कमिंग फ्रॉम सोनी यानी कि खुशी जो बहुत ही प्यार से उन्होंने भेजा है ये मैसेज आपके नाम वी डू हैव भवेश रघुनाथ फ्रॉम पेरिस फ्रॉम द सिटी ऑफ लव हेलो जी मिस्टर भवेश रघुनाथ अपने मामू को मीतेरां फोगुआ जो है रेनियन आयरन में रहते हैं आज उनका भी जन्मदिन है सो हैप्पी बर्थडे टू यू एंड बेस्ट विशेस टू यू मामू जी एंड परिवार की तरफ से जो बोना करके रहने वाले हैं आपको विश कर रहे हैं एंड उनकी बहन अंजानी मौसल मौसा तौंद्रे से रूपा भाई सुचित सुविदानंद सर्वेश मुनि एंड सिस्टर इन लॉ कविता से लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस नीसेस और सभी परिवार ने आपको विश किया है लॉट्स ऑफ लव ऑन योर बर्थडे एंड टू ऑल दोस हु आर सेलिब्रेटिंग हेलो जी हैप्पी बर्थडे टू यू

0: बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। सबसे पहले आज की सुर्खियां। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष खत्म करने और होर्मुज तेल शिपिंग चैनल दोबारा खोलने पर समझौता हुआ, जिसकी घोषणा मध्यस्थ रहे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने की। मॉरिशस की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले एसएमईज इस समय बढ़ती लागत, श्रम शक्ति कमी और फंडिंग की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। प्रतिस्पर्धा बने रहने के लिए सरकार ने से वित्तीय मदद और तकनीकी मदद की मांग। आज विश्व वृद्ध दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, ये एक ऐसा अवसर है जहां अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तेजी से बढ़ती वैश्विक आबादी के संदर्भ में बुजुर्गों के अधिकारों और गरिमा की रक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाता है। और लॉन्ग माउंटेन स्थित मॉरिशस के पहले हिंदी स्कूल तिलक विद्यालय के शताब्दी समारोह में गणराज्य के राष्ट्रपति और हिंदी प्रचारिणी सभा के सदस्यों की उपस्थिति में एक प्रतिमा का किया गया अनावरण। बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब पेश समाचार विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर सहमति बन गई है। इस समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर शुक्रवार 19 जून को स्विट्जरलैंड में किए जाने की उम्मीद है। इसके बाद दोनों पक्ष स्थायी समझौते तक पहुंचने के लिए आगे की बातचीत जारी रखेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि ईरान के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोल दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ईरानी बंदरगाहों पर लगाई गई नाकाबंदी हटा दी जाएगी। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
1: अमेरिका और ईरान युद्ध को समाप्त करने के लिए एक रूपरेखा समझौते पर सहमत हो गए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि इस समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होने तय हुए हैं। इसे महीनों की लड़ाई के बाद एक बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें हजारों लोग मारे जा चुके हैं और वैश्विक ऊर्जा की कीमतों में भारी उछाल आया है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इस समझौते के हिस्से के रूप में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोल दिया जाएगा। पाकिस्तान, जिसने रविवार देर रात इस समझौते की घोषणा की थी, का कहना है कि लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य अभियान समाप्त हो जाएंगे। ये युद्ध 28 फरवरी को ईरान भर में अमेरिका और इजराइल के हमलों के साथ शुरू हुआ था, जिसके जवाब में ईरान ने इजराइल और खाड़ी में अमेरिका के सहयोगी देशों पर हमले किए थे। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने समझौते की सराहना करते हुए इसे संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। प्रधानमंत्री स्टॉमर ने इस समझौते को युद्ध समाप्त करने की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण कदम बताया और कहा कि अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बिना किसी शुल्क के नौवहन यानी नेविगेशन की स्वतंत्रता बहाल होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने जरूरत पड़ने पर बारूदी सुरंगें हटाने के अभियानों में सहायता देने की भी पेशकश की। कतर राज्य ने दोनों देशों के बीच लंबित मुद्दों को सुलझाने के लिए अमरीका और ईरान के इस्लामी गणराज्य के बीच हुए समझौता ज्ञापन का स्वागत किया है, जिसमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना भी शामिल है। कतर इसे क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थायी शांति को मजबूत करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानता है। दूसरी ओर ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली सहित E4 देशों ने रविवार को कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए हुए समझौते के बाद ईरान द्वारा अपने परमाणु कार्यक्रम पर उठाए जाने वाले कदमों के जवाब में वे उस पर से प्रतिबंध हटाने के लिए तैयार हैं। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नौसैनिक नाकेबंदी को समाप्त करने और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने के लिए एक ऐतिहासिक अमेरिका ईरान समझौते की घोषणा के बाद वैश्विक तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई है। ब्रेंट क्रूड 3.9% गिरकर लगभग $84 प्रति बैरल पर आ गया, जबकि US वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट लगभग 4.8% की गिरावट के साथ $80 प्रति बैरल से नीचे चला गया, जो मार्च की शुरुआत के बाद से इसका सबसे निचला स्तर है।
0: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर सहमति को लेकर कई प्रतिक्रियाएं आगे आई हैं। वैश्विक स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, उनको सुनते हैं।
2: अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का असर अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में दिखाई देने लगा है। यूरोप और एशिया के लिए शेयर बाजारों में फिर से तेजी दर्ज की गई है, जबकि कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 4% की गिरावट आई है। होर्मुज को फिर से खोलने

0: की संभावना पर भी चर्चा तेज हुई है, जिससे मॉरिशस के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। विदेश मंत्री रितेश रामफल ने बताया, मॉरिशस जैसे छोटे टापू देश के लिए जो पेट्रोली सामानों के आयात पर निर्भर करता है, बेहद अच्छी खबर है। हम खाद्य सामान भी बड़ी मात्रा में आयात करती हैं। फ्रेट के बढ़ने से दाम भी बढ़े हैं। शांति समझौता मॉरिशस और दुनिया भर के हित में है। समझौते की शर्तें तय करने और प्रतिबद्धताओं को लागू करने के लिए 60 दिनों की अवधि निर्धारित की गई है, लेकिन पिछले समझौते के विफल रहने के अनुभव को देखते हुए सतर्कता अब भी बनी हुई है। जॉन क्लोद दुलिक्साक बताती है, ये 60 दिन बेहद कठिन और महत्वपूर्ण होंगी। इसराइल इस समझौते में शामिल नहीं है, पर युद्ध का हिस्सा रहा है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि ऐसे समझौतों का पूर्ण रूप से पालन नहीं होता, ये समय ही बताएगा, पर अभी के लिए बड़ी प्रगति हुई है।
1: À la table des négociations finales, nous avons appris par expérience que très souvent ce type d'accord, ces accords cadres, ne sont pas toujours respectés à la lettre. Le temps nous dira, mais pour l'instant, c'est une avancée.
0: इस समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है। ये G7 शिखर सम्मेलन के बाद होगा, जिसका आरंभ सोमवार को फ्रांस में हुआ है और जिसका समापन बुधवार को होना है।
2: मॉरिशस अर्थनीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। एसएमई क्षेत्र छोटे और मध्यम उद्योगों के जरिए हजारों नौकरियां पैदा होती हैं, फिर भी उनके लिए चुनौतियां कुछ कम नहीं। लागत बढ़ रही है, कर्मचारियों की कमी हो रही है और वित्तीय मदद की भी कमी है। ये रोज की समस्याएं हैं। इसी के चलते छोटे और मध्यम उद्योग अधिक सहयोग की मांग कर रहे हैं, खासकर टेक्नोलॉजी को लेकर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खुल जाने की संभावना की खबर उनके लिए थोड़ी बहुत राहत लाई है। पंचसाबला में एक नाली में गंदा पानी बहकर लगून के पास पहुंच गया। इस पानी के बहाव को रोकने के लिए वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के लगभग 100 टैंकर तैनात हैं। 5 दिनों में करीब 1000 क्यूबिक मीटर गंदा पानी पंप किया गया है। गलती से वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी का पाइप टूट गया, जिसके बाद बुधवार रात से ही एक बड़ी कार्रवाई शुरू हुई। नाली में भले ही मरी हुई मछलियां पाई गई हैं, लेकिन पंचसाबला के समंदर को प्रदूषित होने से बचाया गया है। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
3: पिछले बुधवार जेक लिमिटेड के कर्मचारियों द्वारा गलती से वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी की एक पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। ये पाइपलाइन, जिसकी मरम्मत हो चुकी है, पंचसाबला के इंडस्ट्रियल जोन में डाइंग गतिविधियों संबंधित 80% और 20% घरेलू गंदा पानी ले जाती थी। क्षतिग्रस्त पाइपलाइन से निकलने वाला गंदा पानी पास स्थित एक नहर में बह गया, जो पंचसाबला लगून से लगभग 50 मीटर दूर स्थित हैं। प्रदूषण के कारण इस जलधारा में मछलियां और ईल मृत पाई गईं। जतिल सुकराम ने कहा, एक पाइप टूट गई। ये करीब 180 क्यूबिक मीटर पानी प्रति घंटे पंप करती थी। हमने उचित मरम्मत की। दूसरे दिन पंपिंग का काम सामान्य हो गया। इंजीनियर हुमेश गोपल ने कहा, गंदे पानी की पंपिंग जारी है, उम्मीद है जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाए। लहरों से नहर के मुहाने और लगून के बीच बने रेत के एक प्राकृतिक घेरे की बदौलत गंदा पानी लगून में नहीं जा सका। पर्यावरण मंत्रालय में जूनियर मंत्री फाब्रिस दाबिद ने कहा, पर्यावरण मंत्रालय और मछलीमार मंत्रालय ने वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, पोर्टवी नगर पालिका और अन्य साझेदारों के साथ मिलकर स्थिति पर निगरानी रखी है। सैंपल लेकर टेस्ट किए जा रहे हैं। आरबीओ रिसर्च सेंटर की प्रयोगशाला द्वारा समुद्री पानी के परीक्षण किए गए नतीजों के अनुसार पानी सामान्य समुद्री जल गुणवत्ता मानकों यानी कोस्टल वाटर क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स के अनुरूप हैं। दो परीक्षणों को छोड़कर जहां पारा मर्क्यूरी का असामान्य स्तर पाया गया, विस्तृत परीक्षण किया जाएगा। इस बीच मृत मछलियों पर किए गए परीक्षणों के नतीजों का इंतजार है। ये भी उल्लेख है कि पॉइंट साबल के लगून में

0: तैरने की मनाही है क्योंकि ये बंदरगाह क्षेत्र का हिस्सा है।
1: बुजुर्गों पर दुर्व्यवहार के खिलाफ संघर्ष का विश्व दिवस आज है। ये मौका है अधिकारियों के लिए लापरवाही, हिंसा और दुराचार के खिलाफ लोगों को जागरूक करने का। साल की शुरुआत से वेलफेयर एंड एल्डरली प्रोटेक्शन यूनिट के तहत 600 मामले दर्ज किए गए हैं। समाज सुरक्षा मंत्रालय कानून में सुधार पर काम कर रहा है ताकि दुर्व्यवहार के शिकार बुजुर्गों की रक्षा के लिए एक प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किया जा सके। हायर स्कूल सर्टिफिकेट के लिए सब्सिडियरी विषय के रूप में खयोल मोहिसिया की पहली परीक्षाएं इस साल और मेन लेवल पर अगले साल 2027 के लिए निर्धारित हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने मॉरिशस एग्जामिनेशन सिंडिकेट को अक्रेडिटेशन के लिए जिम्मेदार संस्था के रूप में मान्यता दी है। आज इसी पर एक बैठक लगाई गई, जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
0: ये उन प्रथम छात्रों में शामिल हैं जिन्होंने खयोल मोहिसिया को HSC में सब्सिडियरी विषय के रूप में चुना है। ये लोअर सिक्स के छात्र आए हैं। अध्यापिका जयश्री माउवा ने कहा, HSC के स्तर पर खयोल मोहिसिया ने एक बड़ा चरण पार किया है। इसे एक शैक्षिक विषय के रूप में मान्यता दी गई है और अकादमिक विषय बनने पर ज्यादा छात्र इसे टर्शियरी लेवल पर भी इसे ले सकते हैं। स्कूल सर्टिफिकेट में खयोल मोहिसिया पूर्ण रूप से परीक्षा का विषय है। 2026 में एक अहम चरण के तहत एक पहली बैच द्वारा HSC के स्तर पर सब्सिडियरी के रूप में इसकी परीक्षा दी जाएगी। MES के निदेशक सेज निंग टैकचंग ने कहा, मंत्रालय के प्रस्ताव के बाद कैम्ब्रिज ने MES को इसकी सभी मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए मान्यता दी। हम अपने साझेदारों यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस और नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के साथ मिलकर काम करेंगे। सब कैम्ब्रिज द्वारा वैलिडेट किया जाएगा।
2: Parce que ce diplôme sera un diplôme conjoint. Une fois que nous aurions compilé l'ensemble de documentation, tout va être soumis pour être validé par Cambridge. Une fois la validation faite, automatiquement le KM devient sujet d'examen pour le A-level.
0: शिक्षा मंत्रालय अब तक SC के लिए 8 विषयों को सब्सिडी प्रदान करता था। अब ये फैसला लिया गया कि जो विद्यार्थी खयोल मोहिसिया को 9वें विषय के रूप में चुनेंगे उन्हें भी ये वित्तीय सहायता दी जाएगी। प्रीतम मोहित राम ने कहा, सरकार ने परीक्षा का सभी दायित्व लेने का फैसला किया जो SC और HSC स्तर पर पहले साल परीक्षा देंगे। वर्तमान में लगभग 100 छात्र HSC स्तर पर खयोल मोहिसिया का अध्ययन कर रहे हैं।
1: देश में हिंदी संस्था, पहली हिंदी संस्था तिलक विद्यालय अपनी शताब्दी मना रही है। उसकी स्थापना को 100 साल हो गए। इस अवसर पर कल मोतालोंग में हिंदी प्रचारणी सभा की सीट पर लोकमान्य तिलक की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कई महानुभाव वहां पर उपस्थित रहे। जरा विस्तार इस खास रिपोर्ट में।
3: 12 जून 1926 को मोतालोंग में हिंदी शिक्षा प्रदान करने वाले पहले विद्यालय की स्थापना हुई थी। तिलक विद्यालय नामक इस संस्था का नाम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के सम्मान में रखा गया था।
4: लिचन गांव फ्रीडम फाइटर एट द सेम टाइम लिचन हिंदी प्रोमोटर वन एंसेस्टर्स कंसिविना जो ची कंटेंट गॉड जो कल्चर जो तीन गादर इन प्लेस जो तीन जे लेस नो वेन लेकोल जो तीन दन जो प्रीमियर लेकोल की इन फेयर इसी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक।
3: एक शताब्दी बाद विद्यालय की विरासत को सम्मानित करने के लिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की प्रतिमा का अनावरण किया गया। हिंदी प्रचारणी सभा द्वारा संचालित इस विद्यालय ने दशकों के दौरान हिंदी भाषा

0: भाषा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि हिंदी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है और युवाओं को इससे जोड़ने के लिए इसके शिक्षण को समय के अनुरूप विकसित किया जाना चाहिए।
1: हिंदी इज लूजिंग ग्राउंड एंड हाउ डू वी मेक श्योर दैट फ्यूचर जनरेशंस अडॉप्ट लर्न हिंदी यूज हिंदी स्पीक हिंदी। How do we simplify Hindi? Because there is so much competition about so many things that people have to learn. So simplify as far as you can. You must think about, not about yourself, but about the child, about the youth, where he is, where she is, and how to take them from there.
2: जिस संस्था ने किसी एक उद्देश्य से एक यात्रा शुरू की थी, आज के दिन 100 वर्ष उसके पूरे हो रहे हैं और वो यात्रा पूरी गरिमा से सफलता की परचम लहरा रही है।
3: अगर ये लोग नहीं होते तो शायद हिंदी का प्रचार इस तरह से ना हो सकते। हम तो सुविधा दे रहे हैं स्कूलों में और स्कूल के बाद भी, जो ब्लूप्रिंट आ रहे हैं एक प्लेजेंट सरप्राइज है उसमें। तमिल, तेलुगु, अनेक भाषा, उन लोगों को कैसे बच्चों को रुचि फिर से इस भाषाओं में दी जाए।
4: एम क्या है, क्या करना है हमको, हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। मैं छोटा था, मुझे याद था, मैं गांव में रहता था, अभी भी वहीं रहता हूँ। मुझे याद है किस तरह से हिंदी की सेवा होती थी। हिंदी प्रचारिणी सभा के अध्यापक गली गली घर घर जाते थे, कितना जोर करके, कितना परिश्रम करके। हर गांव में पाठशालाएं होती थी, सायंकालीन पाठशाला, मैं वहीं पर पढ़ा था।
0: आज हिंदी प्रचारिणी सभा के अंतर्गत देश में 150 से अधिक विद्यालय संचालित हैं। इस अवसर पर प्रतीकात्मक सम्मान भी प्रदान किए गए तथा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

0: विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफिकेशंस का दौर जारी है. नेदरलैंड्स और जापान के बीच खेला गया मैच ड्रॉ रहा और कल भी कई मैच खेले गए थे, जिस पर पेश है ये खास रिपोर्ट.
1: आज सुबह फिलेडेल्फिया में ग्रुप ई के दूसरे मैच में आइवोरी कोस्ट ने अंतिम मिनट में जाकर इक्वाडोर को 1-0 से हराया और ये गोल मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाड़ी अमाद जालो ने स्कोर किया सब्स्टिट्यूट के रूप में आकर. एमबीसी 11 पर यह मैच सीधा प्रसारित किया गया था. अफ्रीका के हाथी कहलाते हैं आइवोरी कोस्ट वाले और इस ऐतिहासिक जीत से ये लोग बेस्ट ऑफ 16 में जाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा पाए. पिछली बार आइवोरी कोस्ट की जीत हुई थी 2014 में. अब जबकि जो टीमें तीसरे स्थान पे आएगी, 12 टीमें, उनमें से 8 टीमें क्वालिफाई होंगी. इस तरह से आइवोरी कोस्ट के लिए अगले राउंड में जाने का रास्ता खुल रहा है. पहली बार के लिए आइवोरी कोस्ट की टीम ग्रुप स्टेज पार करके बेस्ट ऑफ 16 में जा सकती है. इससे पहले ग्रुप ई में जर्मनी की भारी जीत हुई, 7-1 से जर्मनी ने क्वासाओ टीम को हराया. इस प्रकार मानचाफ्ट इस प्रतियोगिता के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने वाली टीम हो गई है, 239, यानी ब्राजील से एक गोल ज्यादा. इस मैच में एन मेचा ने पहला गोल स्कोर किया 6 मिनट पर जर्मनी के लिए और क्वासाओ का गोल स्कोर किया कोमिनेंसिया ने. एक ऐतिहासिक गोल है क्योंकि क्वासाओ पहली बार वर्ल्ड कप में भाग ले रहा है और ये पहला गोल. इसके बाद 23वें मिनट से 28वें मिनट के बीच द नेशनल मैनचाफ्ट 6 गोल स्कोर कर पाया, खासतौर पर शोलोबेक, फिर हैवर्ट्स, पेनाल्टी पर मुसियाला ने गोल स्कोर किया, ब्राउन का एक गोल, उंदव का एक गोल और हैवर्ट्स का डबल. इस भारी जीत से जर्मनी की टीम अब ग्रुप ई में पहले हैं और उसके पीछे हैं आइवोरी कोस्ट. इन दोनों के बीच मैच होगा शनिवार को रात्रि के 12 बजे. वर्ल्ड कप 2026 के अपने पहले मैच में नेदरलैंड्स की टीम को काफी कठिनाई हुई जापान की टीम के खिलाफ. स्कोर रहा 2-2. आर्लिंगटन में

0: मैच खेला गया। सेकंड हाफ में जाकर वान डाइक ने पहला गोल स्कोर किया। 7 मिनट बाद नाकामुरा ने इक्वलाइज किया जापान के लिए। उसके बाद समरविल ने फिर से नेदरलैंड्स की टीम को लीड दिलाई, पर मैच के अंतिम मिनटों में दी ब्लू सामुराई इक्वलाइज करते हैं ओगावा का गोल। नेदरलैंड्स और जापान दोनों के पास एक एक अंक है।
1: और मैच का दौर जारी है। स्पेन खेलेगा काबो वेर्डे के खिलाफ और रात 11 बजे बेल्जियम का सामना होगा इजिप्ट के साथ। इस पर ज्यादा विस्तार आप सुन पाएंगे।
0: यूएसए के मायामी स्टेडियम में आज बेल्जियम और इजिप्ट के बीच आमना सामना होगा। ये ग्रुप जी का पहला मैच है। ये 11 बजे खेला जाएगा। इसमें ले जाबल रूज यानी बेल्जियम की टीम फेवरेट है, पर इजिप्ट की टीम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। रूडी गार्सिया की टीम है बेल्जियम और 26 ऐसे खिलाड़ी लाए गए हैं जो बहुत दूर जाने के बारे में सोच रहे हैं। इसमें जेनो डेबास्ट घायल हैं और रोमेलु लुकाकू, केविन डे ब्रुइन, जेरेमी डोकू इस टीम के मुख्य खिलाड़ी होंगे। बेल्जियम के सामने है मोहम्मद साला की टीम इजिप्ट, जो एक आउटसाइडर के रूप में यहां पर आ रहा है। ले फराओ एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज है, क्योंकि इन दोनों के बीच जब आमना सामना हुआ था वर्ल्ड कप 2022 में तो 2-1 से इजिप्ट की जीत हुई थी। तो ग्रुप जी में ईरान और न्यूजीलैंड भी हैं। फिर कल सुबह 2 बजे दूसरा मैच है ग्रुप एच का, जिसमें यूरुग्वे का मुकाबला सऊदी अरब से होगा। यूरुग्वे की टीम जो फीफा रैंकिंग में 17वें स्थान पे है और सऊदी अरब 62वें स्थान पे, ये हार्ड रॉक स्टेडियम में खेला जाएगा। मार्चेलियो बेल्सा की टीम ला सेलेस्ते इस ग्रुप में फेवरेट है। यूरुग्वे की टीम में वाल्वेर्डे, नूनेस, ओरोयो जैसे खिलाड़ी हैं, बेंताको भी है यहाँ पर। ये लोग चकमा दे सकते हैं। याद होगा आपको 2022 में अर्जेंटीना को हराया था पहले मैच में इस सऊदी अरब की टीम ने।
1: अब चलिए जानते हैं मौसम का हाल। दक्षिण पूर्व से आ रहे सक्रिय बादल स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात और कल सुबह बादल घिरे रहेंगे, खासकर पूर्वी इलाकों, दक्षिणी इलाकों और सेंट्रल प्लेटों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाहरेखा के परे दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठेंगी। कल दोपहर बाद 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर तथा पश्चिमी और दक्षिणी लगूनों में कल दोपहर बाद से न जाने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 18 से 20, अधिकतम 23 से 25 और तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 22 से 24, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। कल सुबह सूर्योदय 6:43 पर, शाम को सूर्यास्त 5:37 पर होगा।

देश विदेश की इन्हीं खबरों के साथ ये बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसको आप तक पहुंचाने में पूरे समाचार विभाग टेक्निकी पर लुडोविक का साथ रहा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। रॉयल रोड नोवेल फ्रांस में रॉयल गेट स्टोर के पास सतहत्तर साल की 77 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती देविका सामल पैराशीनाम बिहारी और जो इंदिरा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 9:30 बजे उनके बेटे कमल सामल के मकान रॉयल रोड नोवेल फ्रांस से उठा

और अंतिम संस्कार के लिए बीगाहा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 9:30 AM। बोन एस्पोर रोड रिविया दे क्रियोल में 82 साल के 82 ईयर्स ओल्ड के श्री राजेंद्र लखन श्री राजेंद्र

0: के लिए तोंबोलेन मेबर्ग की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट नून। कालीचरण लेन काहोलाल यानवाकवा में, कालीचरण लेन काहोलाल यानवाकवा में 42 साल की 42 ईयर्स ओल्ड की कुमारी रितिशा राम साहा, कुमारी रितिशा राम साहा जो अनुषा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके मकान कालीचरण लेन काहोलाल यानवाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। रॉ रोड पालमा में 54 साल के 54 ईयर्स ओल्ड के श्री संजय बोधी जो जीसू के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 12 बजे उनकी पत्नी रीता हिरलाल के मकान रॉ रोड पालमा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट नून। फॉरेस्ट लेन लामारी वाकवा में 56 साल के 56 ईयर्स ओल्ड के श्री स्वराज अपादू जो संजीव मेकानिसियन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 3 बजे उनके मकान फॉरेस्ट लेन लामारी वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ट्वामा मेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 3 PM। नंबर 82 रुतबा 54 में 73 साल के 73 ईयर्स ओल्ड के श्री शाहनन की हृदय जो सागा के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके मकान नंबर 82 रुतबा 54 से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्वामा मेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। एनएचडीसी कॉम्प्लेक्स मॉडल बेया में 73 साल के 73 ईयर्स ओल्ड के श्री महावीर मानिक की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके बेटे विशाल मानिक के मकान एनएचडीसी कॉम्प्लेक्स मॉडल बेया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पिचित बेलिया मेबर्ग की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। सेंट अंतोन कॉन्फुक्रो में 75 साल के 75 ईयर्स ओल्ड के श्री नंद कुमार केदन जो कृष्णा सादव के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल सुपहर 3 बजे उनके मकान सेंट-अंतोन कॉन्फुक्रो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कॉन्फुक्रो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो 8 PM। रेजिडेंस ओटेंसिया CO6 मॉडलबेर में रेजिडेंस ओटेंसिया CO6 मॉडलबेर में 50 साल की 50 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती मीतू देवी अजुदा जो प्रिया के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके पति रामलोल सूरज के मकान रेजिडेंस ओटेंसिया CO6 मॉडल बे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। रॉ रोड पालमा में 54 साल के 54 ईयर्स ओल्ड के श्री संजय बोधी की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के 12 बजे उनकी पत्नी हिरलाल रीता के मकान रॉयल रोड पालमा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट नून। फॉरेस्ट लेन लामारी वाकवा में 56 साल के 56 ईयर्स ओल्ड के श्री स्वराजा पादू जो संजीव मेकानिसियन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुपहर 3 बजे उनके मकान फॉरेस्ट लेन लामारी वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्वामा मेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 3 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी हैं।
1: Your news on NBC Play. NBC Play.

जी बश के 37 मिनट्स हो चुके हैं, टाइम बीता चला जा रहा है। जी हाँ दोस्त, और फिलहाल के लिए आप सभी लोगों का हम स्वागत करना चाहेंगे इन द सेकंड आवर, एक्चुअली द थर्ड आवर ऑफ दिस ब्यूटीफुल शो। दैट्स योर रफ्तार वाइब्स ऑन ऑरेंज रेडियो मैसी विद मेगनिशा।

बिल्कुल सजने संवरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वैसे ही इतने प्यारे लगते हो जैसे भी हो, बस हमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए जी, 6:51 हो चुके हैं, गुड बाय टू यू। आ गई है हमारी प्यारी दिव्या ऑलरेडी हियर इन द स्टूडियो फॉर सम लवली रोमांटिक गाने। सो गेट रेडी टू गेट रोमांटिक टू रोमांस विद सम गुड म्यूजिक टुनाइट एंड हियर वी गो। कल फिर मिलेंगे, टेक केयर, बाय बाय।

आजकल तन्हा में नहीं हूँ, साथ चलता कोई है। शायद आपके साथ आपका प्यार चलता है, शायद आपके साथ ये संगीत चलता है और शायद आपके साथ रेडियो मस्ती भी चलता है। चलिए, जहाँ पर हम गुड म्यूजिक के बारे में बात करते हैं ऑटोमैटिक

0: ऑटोमेटिकली रेडियो मस्ती का नाम जुड़ ही जाता है. थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग अस एज योर नंबर वन रेडियो स्टेशन, जहां पर हमें मौका मिलता है कुछ खूबसूरत रोमांटिक कूल सूदिंग म्यूजिक लेकर आने के लिए आप लोगों के लिए मंडे इवनिंग और संडे के बाद. जब मंडे को लोगों का को काम पर जाना होता है तो दिमाग में यही आता है कि हाय ये मंडे क्यों आता है, लेकिन मंडे का आना तो ज़रूरी है ही, इसलिए तो दिन बीतता जाएगा और धीरे धीरे करके ये वीकेंड एक बार फिर से आ ही जाएगा. तो चलिए इस मंडे से भी आपको प्यार करना है और उम्मीद करते हैं कि अभी के लिए आपने अपना डिनर ले लिया होगा. और इफ़ यू हैविंग योर मील राइट नाउ, आपको हम विश करेंगे बन अपेची शुभाहार. गुड म्यूजिक के साथ कनेक्टेड रहना और साथ में गुड म्यूजिक के साथ साथ कुछ खूबसूरत बातें, कुछ प्यार की बातें करना भी बहुत ही अच्छा होता है. इसलिए तो हमेशा हम आपके मैसेजेस का इंतज़ार करते रहते हैं ताकि आपको मौका मिले इस शो में चार चांद लगाने के लिए. यस, वी आर वेटिंग फॉर योर मैसेजेस एंड डेडिकेशंस ऑन 5499 1294 इज द मैजिकल नंबर जहां पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं. अनफॉर्चुनेटली आज आपसे हम फ़ोन कॉल के ज़रिए बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू हुआ है. तो चलिए आज आपके मैसेजेस ही सही. तो डोंट फॉरगेट, वेटिंग फॉर योर मैसेजेस ऑन 5499 1294. इट्स योर इवनिंग लाउंज जहां पर दिव्या का साथ है अभी से लेकर टिल 9 PM.
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Musti.

0: चांद आसमानों से लापता हो गया, कोई बात नहीं, एक चांद आसमान पे है तो सैकड़ों चांद धरती पर भी हैं और वो चांद आप लोग हैं। शायद इसी वजह से जब आपके मैसेजेस आते हैं ना तो मेरे दिमाग में एक ही गाना चलता है, वो ये है कि मेरा चांद मुझे आया है नज़र। तो थैंक यू सो मच इस शो में और भी प्यार ऐड करने के लिए। एंड चलिए आपके कुछ मैसेजेस की ओर हम ज़रूर बढ़ेंगे। यहाँ पर आप कहते हैं, नमस्ते जी, आप कैसे हो? ओम नमः शिवाय टू ऑल शिव भक्त ऑन दिस स्पेशल मंडे। एंड इस वक्त आप डिनर ले रहे हैं, ये आपने काफ़ी पहले आपने भेज दिया था ये मैसेज। आई एम वेरी श्योर कि आपने शायद डिनर ले लिया होगा, कोई बात नहीं, डिनर ले लेने के बाद शायद आपको किचन को साफ करना होगा। तो चलिए, वाइल क्लीनिंग द किचन आप स्टिल हमारे खूबसूरत गीतों को एंजॉय कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपने हमारी टीम को वो कुहाज विश किया है। एंड नेक्स्ट गाना गुजार फॉर अजय, उनकी मॉम के लिए ऑफों जिसाक फ्रॉम काजल जीतनोव लव ऑन टू। एंड साथ में यहाँ पर अगला गाना खास तौर से हम दरिकेज करेंगे फॉर कुमार देवी चंद, एंजॉइंग द शो। एंड आप म्यूजिक भी प्ले कर रहे हैं इस वक्त, फुल वॉल्यूम रेडियो मस्ती एट होम। नेक्स्ट गाना गुजार फॉर लवली पापा श्याम देवी चंद, लव यू सो मच पापा। एंड चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे कुछ खूबसूरत गीतों की ओर। एंड वंस अगेन आपके मैसेजेस को हम जरूर इंक्लूड करना चाहते हैं। एंड आप अपने मैसेजेस हम तक पहुंचाएं ऑन 5499-1294। कुछ कहना चाहते हैं, आपको मुश्किल आपको कठिनाई हो रही है टू एक्सप्रेस योर फीलिंग टू योर नियर एंड डियर वंस, कोई बात नहीं, आपके ये मुश्किल टास्क को हम और भी आसान कराएंगे बाय सेंडिंग योर मैसेजेस टू योर डियर एंड नियर वंस। यस, आपके जो प्यारे पैगाम है ना आपके अपनों तक बहुत ही प्यार से पहुंचाएंगे, बस मैसेज भेज कर तो देखिए ऑन 5499-1294।
1: इवनिंग लाउंज, इवनिंग लाउंज,
2: RM2
1: रेडियो मस्ती।

बिल्कुल, कोई वाकिफ कैसे होगा जब तक आप अपने प्यार को बयां नहीं करेंगे अल्फाजों में। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हर बार आप अल्फाजों में अपने प्यार को बयां करें, ताकि आपके चाहने वाले को भी पता चले कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। चलिए, प्यार की बातों के साथ साथ खूबसूरत प्यार के गाने भी चला रहे हैं आप लोगों के लिए टिल 9 PM। चलिए, यहाँ पर किसने हमें मैसेज भेजा है, हेलो रेडियो मस्ती जी, आपके साथ जो इवनिंग लाउंज इतना एंजॉय करते हैं क्या बताएं। आज मेरा मैसेज अगर आप पढ़ दें तो मेरी वाइफ के चेहरे पर सच में एक स्माइल आ जाएगा। तो चलिए, आप बस उनसे इतना कहना चाहते हैं कि हैप्पी एनिवर्सरी मेरी जान, तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं, मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत दुआ हो। क्या बात है। स्पेशल डेडिकेशन फ्रॉम फैजान टू हिज ब्यूटिफुल वाइफ, शी इज माई स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लेसिंग एंड माई बिगेस्ट पीस। Please play a soft romantic song for her. Tum Jo Aaye from the movie Once Upon a Time in Mumbai. To chaliye, agar possible hua to ye gana zarur aapke liye hum chalayenge. Aaj aapki shaadi ki salgirah hai, to aapko happy wedding anniversary, and I just hope ki ऐसे ही आप लोग हमेशा एक दूसरे का साथ देते रहें। एंड आई जस्ट होप कि आपका ये प्यार है ना, बस दिन ब दिन बढ़ता रहे और ऐसे ही आप प्यार में डूबे रहे। इट्स वेरी नाइस टू सी पीपल मच इन लव आफ्टर सो मेनी ईयर्स ऑफ मैरिज, क्योंकि ये बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है। कभी कभी क्या होता है, जब किसी की शादी हो जाती है तो हम एक दूसरे के लाइफ पार्टनर को वी टेंड टू टेक ईच अदर फॉर ग्रांटेड। कभी ऐसा होता है ना कि दिमाग में चलता है कि ये तो यहीं पे है, कहाँ पर जाएगा या फिर कहाँ जाएगी, बट वी डोंट रियलाइज कि टुमारो इज़ नेवर प्रोमिस्ड। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जितना पल आपको उस शख्स के साथ मिल रहा है, ट्राई टू मेक इट मेमोरेबल, ताकि एक दिन पलट कर जब वो देखेंगे तो बस उन्हें खूबसूरत यादें ही मिलेंगी एंड उनको इनको संजोने का मौका भी मिलेगा। चलिए, यहाँ पर अगला गाना खासतौर से हम डेडिकेट करेंगे फॉर मीठी निकित जिया।

रियाना भोला शिवांश सुमित अमित श्वेता कुंती सितोहल बहुश पॉपलेमुसेस से कनेक्टेड है। यहाँ पर आप कहते हैं हाय दिव्या जी, एंजॉइंग योर प्रोग्राम विद द सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स, काइंड रिगार्ड्स। आपको बहुत बहुत सारा प्यार, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग द सॉन्ग सिलेक्शन। एंड चलिए अगला गाना खासतौर से आपके नाम भी एंड तमाम आपके फैमिली के नाम, जितने भी सारे लोग इस वक्त कनेक्टेड हैं हमारे साथ, थैंक यू फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। इट्स योर इवनिंग लाउंज जहाँ पर दिव्या का साथ है चिल 9 PM। तो चलिए आपके मैसेजेस एक बार फिर से ऑन 5499 1294।

0: Evening Lounge.
1: Evening Lounge.
2: RM2.
0: Radio Musti.
3: भाई देखिए, जब प्यार होता है ना ही समझने की का टाइम होता है, ना ही समझाने का टाइम होता है, बस कभी कभी फ्लो में बहते चले जाना होता है। इट्स ऑलरेडी 7:42 एंड चलिए यहाँ पर वी हैव दिस ब्यूटीफुल गाना अरिजीत सिंह एंड श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। एंड चलिए ये गाना खासतौर से उन तमाम म्यूजिक लवर्स के लिए हम डेडिकेट करेंगे जो शायद इस वक्त नाइट शिफ्ट कर रहे होंगे। आपको हम विश करेंगे बो कुआज टू ईच एंड एवरी वन वर्किंग राइट नाउ। And keep on sending your messages on 5499-1294. कितना खूबसूरत होता है वो प्यार जहाँ पर आपको पता होता है कि हर इबादत में आपका नाम ही सबसे पहले आता है, दिल के कोरे कागज पे भी आपका ही नाम आता है, हर चाहत में आपका ही नाम आता है। चलिए, अगर आपके पास कोई ऐसा शख्स है तो उनको बिल्कुल संभाल के संजो कर रखिएगा, बिकॉज वी डोंट मेक सच पीपल एनी मोर। प्यार इतना खूबसूरत है, इतना पाक है कि इनके बारे में अगर हम दो अल्फाज भी कहने की कोशिश करेंगे ना तो हमारी आंखों से खुद ब खुद आंसू टपकने पड़ जाती हैं। वो इतना प्योर होता है कि हम इनको दिल से ही महसूस करने लग जाते हैं। और कभी भी अगर आप ऐसा प्यार किसी के लिए महसूस करते हैं तो डू लेट अस नो ऑन 5499-1294, क्योंकि ऐसा प्यार भी आजकल कहाँ देखने को मिलता है।

0: Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Musti.
2: वैसे कभी कभी दिल में यही ख्याल आता है कि एक मुलाकात ज़रूरी है जीने के लिए, और कभी कभी मन में यही ख्याल आता है कि बस शायद प्यार ही ज़रूरी है जीने के लिए, और प्यार ही काफ़ी है इस ज़िंदगी का गुजारा करने के लिए और ज़िंदगी बसर करने के लिए। शाम के 7:55 होने को है, एंड चलिए कुछ ही देर में हम कदम रखने वाले हैं इन द सेकेंड आवर ऑफ इवनिंग लाउंज। अभी के लिए खूबसूरत गीतों का कारवां नॉन स्टॉप जारी है टिल 9 PM। तो चलिए ये गाना खासतौर से उन तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त कनेक्ट रहे हमारे साथ। शायद आप इस वक्त ड्राइव करके घर वापस जा रहे होंगे, या फिर कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपने खाना खा लिया है और आप कहते हैं कि रूटीन को थोड़ा ब्रेक करने के लिए चलो थोड़ा सा आगे हम ड्राइव करके वापस घर चले आते हैं। सो ड्राइव सेफली एंड केयरफुली, एंड हमारा साथ देते रहिएगा। इट्स योर इवनिंग लाउंज जहां पर दिव्या का साथ है टिल 9 PM।

0: बन करके प्यार के बारे में सोचते हैं या फिर प्यार के जज्बातों के बारे में सोचते हैं तो हमारा दिल और हमारी आंखें भर आती हैं। 8:06 हो चुके हैं, मंडे इवनिंग 15 जून 2026। एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात हो रही है ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती, जहां पर हम खूबसूरत गीतों का कारवाली कराए हैं आप लोगों के लिए। ऐसे ही हमारा और आपका साथ रहेगा रात के 9 बजे तक। कुछ आपके मैसेजेस ऑफकोर्स हम वेलकम कर रहे हैं ऑन 549 9 12 9 4। तो हम तक आपके मैसेजेस ज़रूर पहुँचाएं। यहाँ पर किसी ने कहा है, हेलो टीम, लिसनिंग टू रेडियो मस्ती वाइल वर्किंग फ्रॉम होम and you want to dedicate the next romantic song for my husband Akash. Wanted to thank him for being my best friend and greatest support and I love him so much from wife Kriti. Thank you so much hamara saath dene ke liye and ye jo aapne message bheja hai na, इससे मुझे पूरा यकीन है कि आपके पति अगर इस वक्त हमें सुन रहे हैं तो ये जो मुस्कुराहट है ना वो दिन भर कल रहने वाला है, ये सोचने के बाद कि उनकी पत्नी उनसे कितना प्यार करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अ स्मॉल मैसेज, स्मॉल लव का जो एक्सप्रेशन होता है ना, ये अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ रोज़ रोज़ करेंगे, आप इमेजिन कर सकते हैं कि इससे उनकी रात और उनका दिन बन ही जाता है। सो इसीलिए कीप एक्सप्रेसिंग योर लव टू द वन यू लव। यहाँ पर किसने हमें कहा है, थैंक्स फॉर द लवली सॉन्ग्स डियर, मे आई रिक्वेस्ट फॉर द सॉन्ग तुझे सोचता हूँ फ्रॉम द फिल्म जन्नत 2, अगर पॉसिबल हुआ तो हम चलाएंगे। रोशनी जी, आप हैं काटोबोन से एज यूजुअल कनेक्टेड हैं हमारे साथ, थैंक यू सो मच। इसी के साथ वी हैव दिस ब्यूटिफुल गाना टेकन अप फ्रॉम द मूवी किस्मत कनेक्शन।
1: इवनिंग लाउंज,
2: इवनिंग लाउंज,
3: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: तरह की चीज़ें करता है हमारी ज़िंदगी में, कुछ पॉजिटिव चेंजेस लेकर आता है और कभी कभी एक इंसान को ही बदल देता है, इतना बदल देता है कि कभी कभी कोई विश्वास ही नहीं करता है कि प्यार कैसे किसी शख्स को ऐसे ही बदल सकता है। चलिए यहाँ पर अगला गाना ख़ास तौर से हम डेडिकेट करेंगे स्पेशली रिया के लिए, जो इस वक्त कनेक्टेड है हमारे साथ। और रिया, यहाँ पर अगला गाना आप किसी ख़ास के लिए डेडिकेट करना चाहती हैं और स्पेशली आपकी फ्रेंड हैं जना और साथ में उर्वशी के लिए आपने बहुत ही प्यार से ये अगला गाना मांगा है। तो चलिए आपके इस मैसेज के लिए थैंक यू सो मच। एंड वैसे रोशनी जी ने थोड़ी देर पहले मैसेज भेजा था, आपको सुनना है गाना फ्रॉम द मूवी जन्नत तुझे सोचता हूँ। तो चलिए अभी के लिए ये आपका फेवरेट गाना चल पड़ा।
1: Evening Lounge,
2: Evening Lounge,
3: RM2,
4: Radio Masti.

0: रहा है कि अलविदा ना कहें लेकिन क्या कहें क्या करें के चलते हम मजबूर हो रहे हैं और अलविदा कहना पड़ रहा है। हम जा रहे हैं वापस फिर से आने के लिए इन योर नेक्स्ट शो यानी कि कल सेम टाइम मुलाकात होने वाली है। तब तक के लिए दिव्या को दीजिए इजाजत। टेक केयर, कीप स्माइलिंग, शुभ रात्रि, शब आखिर।
1: इवनिंग लाउंज, इवनिंग लाउंज।

0: RM2 रेडियो मस्ती लेट नाइट ग्रूव्स
1: RM2 रेडियो मस्ती

Wishing you all a lovely evening, my dear listeners. प्यार भरा नमस्कार. Once again, आप सबका स्वागत in your late night grooves. नीतू आपके संग till midnight. So wherever you might be, stay well tuned with the best mix of music. और भी अच्छी अच्छी बातें होती रहेंगी, of course, about Bollywood. गाने हैं तो Bollywood की बात ही करेंगे. Just wherever you might be, कुशल मंगल रहिए and just chill.

जैसे बॉलीवुड मेलोडीज की बात हो रही है, सुरों की बात हो रही है, सांस और आवाज की दुनिया के दोस्तों, चलिए जी, बॉलीवुड की मधुर धुनें सिर्फ गीत नहीं होती, ये तो आप ही मानोगे, है ना, बल्कि एहसासों का एक खूबसूरत सफर होती है। ये गीत वक्त के साथ पुराने नहीं होते, बल्कि और भी अनमोल लगने लगते हैं। वैसे कुछ बॉलीवुड मेलोडीज ऐसी हैं जो दिल के हर कोने को छू लेती हैं। जब जिंदगी की भाग दौड़ से थकान महसूस होती है, तब एक मधुर गीत दिल को राहत दे जाता है। ये गाने हमें यादों के उस सफर पर ले जाते हैं जहाँ खुशियाँ, प्यार और मासूमियत बसी होती है। That's why बॉलीवुड मेलोडीज को रूह का मरहम कहा जाता है।

0: एवरग्रीन सरबहार या फिर नए गाने जो बस आपके दिल को अच्छे लगते हो। बॉलीवुड मेलोडीज की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये दर्द को भी सुंदर बना देती है। जुदाई हो, इंतजार या इवन तन्हाई पर बने गीत भी दिल को बोझिल नहीं लगते, बल्कि उसे हल्का कर देती हैं। यू नो, यू फील लाइक अ लाइटर। ऐसा लगता है जैसे कोई अपने सुरों के जरिए हमारे जज्बातों को समझता हो।
1: Late Night Grooves.
2: RM2 Radio Musti.

सो मच लेट नाइट ग्रूव्स में हमारे हम सफर बनने के लिए। एंड ये बॉलीवुड के रोमांटिक गीत प्यार की सबसे खूबसूरत अभिव्यक्ति है। इनमें न सिर्फ मोहब्बत का एहसास होता है बल्कि उसकी पवित्रता और गहराई भी महसूस होती है। जब मधुर धुनें और प्यार के बोल एक साथ मिलते हैं तो दिल खुद ब खुद मुस्कुराने लगता है।

कई बार एक पुराना गीत हमें बचपन, जवानी या फिर किसी खास पल की याद दिला देता है, है ना? झूठ मत बोलिएगा, सच्ची सच्ची। बॉलीवुड मेलोडीज में यादों को जिंदा करने की अद्भुत शक्ति होती है। एक गीत और उससे जुड़ी हजारों यादें पल भर में आंखों के सामने आ जाती हैं।

personalities जो होते हैं हर मौसम के साथ जुड़े होते हैं, चाहे बारिश के रिमझिम हो, सर्दियों की ठंडी शाम हो या गर्मियों की सुहानी रात। बॉलीवुड मेलोडीज हर मौसम को और भी खूबसूरत बना देती हैं। ये गाने नेचर, प्रकृति के रंगों के साथ मिलकर जीवन में मधुरता भर देते हैं।

इन गानों में कुछ मैजिक तो है, हमारे दिल को, हमारे रूहों को, हम सबको समझ लेते हैं और समझा भी जाते हैं, क्योंकि बॉलीवुड के कुछ गीत भी ऐसे होते हैं जो बिना कुछ कहे ही दिल की बात कह देते हैं। जब शब्दों में अपनी फीलिंग्स व्यक्त करना मुश्किल हो, तब एक मधुर गीत हमारी तरफ से बोलने लगता है। आपने कभी महसूस किया है? That's why संगीत को दिल की भाषा कहा गया है।

गाना तो हमको भी बहुत पसंद है, जो दिल से निकले वो है गीत, जिसे सुन के पिघले वो है गीत, जो दिल को छू जाए वो है गीत, जिसे दिल ना भूले वो है गीत। चलिए गानों का सिलसिला लेट नाइट ग्रूव्स नीतू के साथ अप टिल मिडनाइट। थैंक यू सो मच। वैसे काम पर है तो बोकोहाश एंड बॉलीवुड के ये जो मधुर गाने हैं, परिवार हो, दोस्ती हो या फिर प्यार के रिश्तों को और भी गहरा बना देते हैं। कई बार एक गीत पूरे परिवार को एक साथ बैठकर पुरानी याद ताजा करने का मौका देता है ना। संगीत जो है दिलों को जोड़ने का काम करता है, दैट्स व्हाई हमेशा साथ जोड़े रहें।

अभी आप कुछ 90s, कुछ 2000 उससे या फिर लेटेस्ट गाने भी सुन पा रहे हैं इन योर लेट नाइट ग्रूव्स। वैसे 2000 के दौर में बॉलीवुड मेलोडीज ने रोमांस को एक नई पहचान दी। मधुर सुर, खूबसूरत बोल और दिल को छू लेने वाली गायकी ने हर उम्र के लोगों को अपना दीवाना बना दिया। इस दौर के गीत प्यार के एहसास को इतनी खूबसूरती से बयां करते थे कि सुनने वाला भी खुद को उन कहानियों का हिस्सा महसूस करने लगता।

2000 की बात चल पड़ी है, then how can we forget about the 90s? जी हाँ, 90s के आखिरी सालों में खास तौर से बॉलीवुड संगीत एक नए दौर में प्रवेश कर रहा था। इस समय के गीतों में मेलोडी, रोमांस और मासूमियत का अद्भुत संगम देखने को मिलता था। कुमार सानू, उदित नारायण, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति जैसे गायकों की आवाज ने हर दिल को छू लिया। ये वो दौर था जब गीत सिर्फ सुने नहीं जाते थे बल्कि महसूस किए जाते थे। आज भी उन गानों की मधुरता दिल को सुकून और चेहरे पर मुस्कान दे जाती है।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

80s, the 90s हो, the 2000s या फिर latest दौर, सोनू निगम, शान, केके, श्रेया घोषाल, अरिजीत सिंह एंड मेनी मोर, इन कलाकारों ने बॉलीवुड संगीत को नए रंग दिए। इनकी आवाजों में एक अलग ही ताजगी और जज्बा रहा। इन्होंने मेलोडी को मॉडर्न अंदाज दिया, लेकिन उसकी रूह को कभी कमजोर होने नहीं दिया।

Of course, वक्त बदलता गया और स्टाइल भी बदलता गया. एंड रिकॉर्डिंग्स, जब रिकॉर्डिंग की बात हो रही है तो टेक्नोलॉजी काफी आगे भी बढ़ गई, लेकिन इस प्रगति के बावजूद मेलोडीज की मधुरता बरकरार रही. संगीतकारों ने टेक्नोलॉजी का उपयोग गीतों को और भी खूबसूरत बनाने के लिए किया, ना कि मेलोडी को दबाने के लिए. इसी वजह से उस दौर के गाने आज भी ताजा लगते हैं.

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

था या फिर ये युग, हर गीत इंसान के जज्बातों को बयां कर जाते हैं। मोहब्बत, जुदाई, दोस्ती, उम्मीद, सपनों के रंग इन गीतों में साफ नजर आते हैं। इसलिए लोग अपने जिंदगी के हर खास पल को किसी न किसी बॉलीवुड मेलोडी से जोड़ लेते हैं। आप ही ना, बे द 60s, 70s, 80s, 90s या फिर आजकल के ही गाने क्यों ना हो, इनके साथ जुड़े।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

आज के कई युवा और मध्यम उम्र के लोग के लिए लेट 90s एंड 2000s के गीत यादों का अनमोल खजाना है। ये गाने उनके स्कूल, कॉलेज या फिर उनकी जवानी के दिनों की याद दिला जाते हैं। एक गीत और सारी पुरानी यादें आंखों के सामने जिंदा हो जाती है।

मेलोडीज की खूबसूरती यही है कि ये समय की सीमाओं में नहीं बंधती। दशकों पुराने गीत आज भी नए लगते और हर पीढ़ी के लोगों को पसंद आते हैं। जिस तरह शरीर को भोजन की जरूरत होती है, उसी तरह रूह को सुकून और खुशी की। बॉलीवुड की मधुर धुने रूह की वही खुराक है जो इंसान को अंदर से समृद्ध बनाती है। ये गीत हमें जीना, मुस्कुराना और हर पल को महसूस करना सिखाते हैं। इनकी मिठास और जादू हमेशा दिलों को जिंदा रखेगा। दिस मेलोडीज हमें याद दिलाती हैं कि असली संगीत वो ही है जो दिल को छूकर रूह को सुकून दे और जिंदगी को और खूबसूरत बना दे। टेक केयर, बाय बाय, शुभ रात्रि।

0: कुछ होता है राहुल तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: your musty. Feel the musty.
1: Radio Musty.

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: RM2
1: Radio Masti.
0: Feel the Masti.
2: ये क्या? लिफ्ट बीच में क्यों रोक दी?
3: तुम्हारा साथ ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा देर रहने के लिए।
2: ओ माय गॉड, मेरी तो हिंदी कविता की क्लास है।
3: हिंदी कविता है ना?
2: हाँ।
3: वो मैं तुमको टीच करता हूँ।
2: तुम और हिंदी कविता?
3: तुम समझता मैं हिंदी कविता नहीं जानता? मेरे जीवन साथी, प्यार किए जा, जवानी दीवानी, खूबसूरत जिद्दी पड़ोसन, सत्यम शिवम सुंदरम बेनहर। वो इंग्लिश।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

You're listening to RM2, a Radio Masti.

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: कुछ होता है राहुल तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: राहुल, तुम नहीं समझोगे। लड़की बड़ी अनजानी
1: है। रेडियो मस्ती ऑल द वे।
2: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
1: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: are listening to RM2, a Radio Masti.
1: भाई सपना, इतने मेहमानों को छोड़कर कहाँ छुप गई? बाहर कब आओगी? जब हम चले जाएंगे तब?